ढोलकी रोज रात नू खड़के नी मैं मर जानी दा नर्म काल जा तक तक तक तक तड़के नी मैं मर

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

हबीब हक जो करम के मोती लुटा रहा है वो मुस्तफ़ा है, जो बारिश सन में मुजस्सम दुआ बना है वो मुस्तफ़ा है।

खुदा इक वे यानी आहद समद दे ते यालम यली दे ते वालम यूला दे खुदा ते नबी विच शरीयत दी हद दे ना।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

के कुछ मुस्कुरा के सा किया, चूम के कुछ संग के कुछ मुस्कुरा के सा किया, इनकार कर दे पर जरा नजरा मिला के सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, अपने मैं खाने जो कुछ भूल के फड़ा दे सा किया, ते फिर मेरी याद जो भूल जा फड़ा के।

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ दिस इज एवी दिस साइड 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से प्यारी तरह से जारी है इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई विल बी राइट बैक एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू

कोई उसे क्या मारे जिसका रब है रखवाला। वो अपने मददगारों का मुहाफिज है, अल्लाह सब

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ यू हैवन डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

का बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम, इस दिल से क्या नाराज हो तुम।

कोई तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है।

सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कान सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज़, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसीगियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

What a lovely song. क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM. And the next song is also dedicated specially to you.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-7475-043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

भाई ना तो अपनी गल सरकार ने सुनी है ते ना बैंक वाले ने हुण तां झंडा देसी स्टाइल च कटना पऊ आ जा वीर रू ढोलकी ते चक ला भी हार्डिसन।

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: माँ के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है, जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और 100.6 FM पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देती है। अगर आप DAB पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, एलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन, मिल्टन कीन्स में सुन सकते हैं। और अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं, तो आप वेबसाइट पे सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm पर। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले 2 घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक, अब से लेकर 12 बजे तक आपकी डेडिकेशन है। फिर 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ, और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-01.

0: जी दोस्तों, आतिश फिल्म से लिया हुआ गीत साधना सरगम और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में आप दोस्तों के लिए पेश किया। और जब ये गीत प्ले किया तो जनाब हमें फोन आ गया, हमारे प्यारे दोस्त जनाब अयूब चौहान साहब का, और कहने लगे कि यार ये गाना मेरा फेवरेट है और मेरी जानिब से मेरे दोस्तों के नाम कर देना। तो अयूब चौहान साहब आप के नाम किया और आप की जानिब से आपके दोस्तों के नाम किया। तो चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 11:16। तो जनाब हमें फ़ोन आया वाजिद भाई एड्रेसफील्ड से, आपका शुक्रिया फ़ोन करने का, और आपके नाम गीत करेंगे। और उसके बाद जनाब रकीब है ना, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप अपने बच्चों के लिए यासर, साहिल और वारिसा के लिए गीत सुनना चाहती हैं तो उनके नाम करेंगे आने वाला गीत जो कमर्शियल के बाद होगा। उसके बाद ईरा खान साहब फोन करने का, शुक्रिया जनाब आपके नाम भी करेंगे। और उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का, आपके नाम भी करेंगे, आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मजीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

आपके लिए एक और प्यारा सा गीत पेश करने जा रहे हैं और हमें फ़ोन किया इरा खान साहब आपने फिर तो आपके नाम एक बार फिर गीत करेंगे और उसके बाद कुलवंत साहब रीड से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और उसके बाद हमें फ़ोन किया हमें जनाब नदीम मंसूर साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने फ़ोन करके हमारे साथ बहुत प्यार से बात की, अच्छा लगा आपने भाई से बात करके। तो आप जो हैं वो बहुत प्यारे हैं और इसलिए आपने गीत की भी फरमाइश की, तो आपके लिए गीत ज़रूर प्ले करेंगे पौने पे जाके, क्योंकि आपने पुराने गीत की फरमाइश की। तो सभी दोस्तों के नाम ये प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, प्यारी सी शायरी थी। और अब जनाब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी दोस्तों के लिए जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो जनाब चलेंगे कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत दो प्यार भरी आवाज़ों में। और दोस्तों याद रखिए, डेडिकेशन का सिलसिला जो है वो इसी आवर में है, यानी कि 12 बजे तक, 12 और 2 के दरमियान लाइव कॉल का सिलसिला होता है, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा 2 बजे तक, यानी कि प्रोग्राम के आखिर तक। तो अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आप हमें जनाब अभी फ़ोन कर सकते हैं ताकि हम आपकी डेडिकेशन पूरी कर पाएँ या फरमाइश पूरी कर पाएँ, क्योंकि 12 और 2 के दरमियान तो कोई डेडिकेशन और फरमाइश नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ लाइव कॉल्स होती हैं। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने मनहर उदास और अनुदा पडवाल की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और अब जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है और टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:42, यानी कि 42 मिनट्स पास्ट 11। तो अब सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और नदीम मंसूर साहब, आपने कहा था कि आप आमिर भाई, मैं गाना सुनना चाहता हूं, इन तीन शख्सियात में से किसी एक का भी गाना लगा दीजिएगा, रफ़ी साहब की आवाज़ हो या किशोर कुमार की या मुकेश साहब की आवाज़ हो, इनमें से किसी एक की आवाज़ में गीत लगा देना। तो जनाब, मैंने गीत चुना था मुकेश की आवाज़ में, लेकिन कलवंत साहब आपने फ़ोन किया, आपने जिस गीत की फरमाइश की वो हमारे सिस्टम में मौजूद नहीं, लेकिन मैंने सोचा चलिए एक गाना कोई ऐसा आपको भी सुना दूँ कलवंत साहब, कि आप भी खुश हो जाएं और फिर रफ़ी साहब का गाना है तो ज़ाहिर है कि नदीम मंसूर साहब भी खुश हो जाएंगे। ये गाना भी से आप कह सकते हैं और इसे आप जो है वो क्या कहते हैं, तो आप इसे भजन भी कह सकते हैं आप, तो गाने की शक्ल में है, भजन भी के तौर पर भी ये गाना इस्तेमाल होता है। इसके बोल कुछ इस तरह हैं, क्योंकि कलवंत साहब ने जो गीत मुझे कहा था वो थोड़ा मिलता जुलता ही है, तो इसलिए मैंने ये गाना चुना। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद ये प्यारा सा गीत होगा। कलवंत साहब, आपके नाम हीरा खान साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का एक बार फिर। आपके नाम और नदीम मंसूर साहब, आपके नाम चौधरी मुजफ्फर साहब, आपके नाम अयूब चौहान साहब, आपके नाम और तारे जुल्फी साहब, आपके नाम और सफीउल्ला भाई के नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद रफ़ी साहब को सुनते हैं, उसके बाद मिलते हैं।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
5: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत भी कह सकते हैं, भजन है एक्चुअली, और कलवंद साहिबा आपके लिए स्पेशली पेश किया था। और जनाब दोस्तों ने फ़ोन किया, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब ने फ़ोन किया, हीरा ख़ान साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया दोबारा। आपने आज कितनी बार फ़ोन किया हीरा ख़ान साहब, बहुत अच्छा लगा। और अब जो गाना है तो नदीम मंसूर साहब, अब मुकेश की आवाज़ में आप के लिए एक प्यारा सा गीत पेश करता हूं, और आपका शुक्रिया जो आप प्रोग्राम में शामिल हुए और गीतों की फरमाइश की। तो जनाब फरमाइश नहीं, बस ये कहा कि मुकेश या रफ़ी या किशोर कुमार का कोई गाना में सुना दीजिएगा। अगर वक्त मज़ीद बचता, ख़बरें नज़दीक आ रही हैं, अगर ख़बरें नज़दीक ना होती तो जनाब मैं आपको किशोर कुमार का भी गाना सुना देता, ताकि आपने तीन लोगों के नाम लिए थे और तीनों की आवाज़ों में आप गाना सुन लेते। चलिए कोई बात नहीं, अब फिर कभी सही। तो जनाब अब मुकेश की आवाज़ में आप दोस्तों के नाम गीत करता हूं। और चौधरी मुजफ्फर साहब आपने कहा शुक्रिया, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हम यहां बैठते हैं, गाने लगाते हैं, आप दोस्तों के लिए ही प्रोग्राम पेश करते हैं। तो आप दोस्त अगर खुश होते हैं, गाने जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उन्हें इन्जॉय करते हैं, तो हमारे लिए यही बहुत होता है, और इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। हमारा तो काम है आप दोस्तों के लिए गीत प्ले करना। अगर किसी गीत के साथ हम नाम जोड़ देते हैं तो हमारी कोई एनर्जी नहीं ख़त्म होती, फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आप दोस्तों का दिल खुश हो जाता है जब नाम लेते हैं, तो हमें कोई वज़न नहीं उठाना पड़ता, कुछ नहीं खर्चा करना पड़ता। तो नाम लेने से क्या कोई ज़बान जो है हमारी किस थोड़ी जाती है। तो इसलिए जनाब शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, आप गीतों को एंजॉय कीजिएगा। और क्योंकि अब ये आखिरी गीत होगा इस आवर का, क्योंकि फिर जनाब खबरें आ जाएंगी, तो चलते हैं सुनते हैं इस गीत को।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और दोस्तों आप डेडिकेशन का सिलसिला यहीं रुक जाता है। अब लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा 2 बजे तक प्रोग्राम के आखिर तक। हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ गई हैं, ओल्डम से जनाब अयूब चौहान साहब और ब्रैडफोर्ड से एम खान साहब। तो चलते हैं जनाब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना अरशद महमूद की प्यारी सी आवाज में। इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:12, यानी कि 12 मिनट्स पास्ट 12। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे प्यारी सी हस्तियों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जनाब अयूब चौहान साहब और एम खान साहब। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
2: It's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
10: Have you noticed the way fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। जैसे कि वे कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा था कि हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब, जिनमें हैं अयूब चौहान साहब ओल्डम से और फिर एम खान साहब ब्रैडफोर्ड से। तो तालियों की गूंज में चलते हैं जनाब ओल्डम में, जहाँ अयूब चौहान साहब इस लाइन पे मौजूद हैं। अयूब चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम अबर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं?
1: मैं बस जब संडे आता है तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो वो चली जाती है, पता नहीं किधर चली जाती है, पर वो चली जाती है, मंडे तक वापस नहीं आती, लेकिन ठीक ठाक हो जाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन जिस अंदाज से आपने कहा तो मैं सोच रहा था कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर आपने वो अपनी ट्यून बदल ली।
1: नहीं प्रॉब्लम तो मैं ही हूँ सबके लिए।
0: अच्छा
1: आपके लिए भी,
0: अल्लाह ना करे हमें कोई प्रॉब्लम हो। अयूब चौहान साहब इस तरह की बातें ना करें, प्रॉब्लम किसी को ना हो, अल्लाह करे।
1: चलो खैर कोई बात नहीं, आपने अभी जो गाना लगाया, खैर आज तो गाने आपने पहले आवर में बहुत ही खूबसूरत लगाए हैं।
0: अच्छा,
1: हो सके तो मेरा एक काम करो, हर संडे को ऐसे ही गाने प्ले किया करो।
0: भाई क्या बात, क्या बात है यार, आपकी तो, क्या बात है।
1: तो ये जो इस फिल्म का, इस गाने का जो वीडियो था ना, बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो इसका जो है।
0: अच्छा अच्छा, हाँ ये तो, फिल्म का गाना है ना?
1: हाँ फिल्म का गाना है ना, वो दुपट्टा चल रहा है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो उसको पहले भी आपने वो भजन जो लगाया था फिल्म गोपी का,
0: वो भजन क्योंकि वो कोई गाने की फरमाइश आई थी, वो इसी तरह से मिलता जुलता था, तो मैंने सोचा वो गाना है नहीं है तो उसके मतबादल ये लगा देते हैं।
1: हाँ वो तो आपने ठीक ही किया ना, दुनिया में हर तरह की दो चीजें होती है ना, वो फिल्म एक में देख रहा था उसमें बता रहे थे कि दुनिया में शक्ने भी दो किस्म के लोग होते हैं। बारह चलो,
0: सात किस्म के सुना है, दो किस्म के तो नहीं सुना
1: ये?
0: सुना है सात किस्म की लोग होते हैं जैसे दुनिया में।
1: अच्छा सात किस्म के होते हैं, चलो
0: सुना है ऐसे वल्लाह इल्म।
1: चलो मुझे हमारा क्या जाता है, आप कहते हैं सात है तो
0: नहीं, मैं नहीं कहता, मैंने कहा सुना है मैंने।
1: चलो ठीक है, तो मैंने तो आपसे सुना है ना।
0: हाँ लेकिन मैंने कहा मैंने सुना, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी तरफ से के सात होते हैं ना।
1: हाँ नहीं मैं आप, मैंने सुन लिया जो आपने कहा, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। तो आप पता क्यों मेरे साथ, मुझे पता है कि आप बिसे हुए आए हैं।
0: नहीं यार मैंने कोई गलत बात की नहीं है, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपने कहा कि आपने कहा है तो होगा, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने सुना है ऐसे।
1: चलो ठीक है जी,
0: आप पता नहीं बात का बदंगड़ क्यों बना लेते हैं।
1: नहीं मैं इस काबल का, हाँ मैं तो बस वो क्या जी
0: बहाना ढूंढता हूँ ना बहस करने की, बातें आप बुरी जली कट्टी सुनाने की वो बहाना ढूंढते रहते हैं जो मैं देता नहीं हूँ आपको।
1: नहीं आप कैसे दे सकते हैं, आप तो
0: मुझे पता होता है ना, मैं बड़ा कीन हो गया आपसे बात करता हूँ, मुझे पता होता है कोई ऐसी बात मेरे से कोई ऐसे निकल गई तो फिर आप पकड़ लेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं।
1: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सबसे पहले हमारे दोस्त हैं चौधरी फरियाद साहब को मोहब्बत भरा सलाम, चौधरी मुजफ्फर साहब को उनको भी, और एक और मुश्ताक साहब वो भी सुन रहे होंगे शायद, उनको भी मोहब्बत भरा सलाम, और भी जितनी आपकी सनराइज फैमिली की है उनको मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम, और एम खान साहब को भी
0: जी जी,
1: वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं
0: जी जी,
1: तो क्योंकि मैं उनसे दूर रहता हूँ वरना मैं भी उनका सिगरेट बन जाता।
0: दूर रह के भी शागिर्दी में आ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं।
1: हाँ लेकिन वो कुछ सीखना पड़ता है ना।
0: हाँ तो सीखते हैं, आजकल फ्री मिनट्स हैं फोन पे, आप नहीं आ सकते फोन पे ही सीख लें।
1: हाँ ये भी आजकल होता है, चलो कुछ करते हैं फिर, ऐसा कुछ करते हैं।
0: ऐसा करें ना, पर सीखेंगे क्या उनसे,
1: बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाती हैं।
0: मसलन
1: बहुत सी शायरी जो उनको पढ़ते हैं अल्लामा इकबाल की, वो मैं कभी नहीं पढ़ता, वो सीख लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: कुछ और भी चीजें जैसे ये रेडियो का भी मुझे कोई पता नहीं था, मैं तो अनाड़ी हूँ ना, तो ये
0: बहुत बड़े अनाड़ी है आप।
1: मैंने सब कुछ आपसे सीख,
0: गाने सुन के ना तो आप जो है ना बड़े डायलॉग मारने शुरू हो गए।
1: अच्छा, मैं शायरी सुना देता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: अच्छा, इस तरह वसी शाह की है। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको,
0: हुई हुई
1: अंगड़ियां फेर के बालू में सलाह दे मुझको।
0: वाह वाह,
1: किस तरह फालतू गुदान पड़े रहते हैं, अपने घर के किसी कोने से लगा दे मुझको।
0: वाह,
1: याद करके मुझे तकलीफ ही होती होगी, एक किस्सा हूँ पुराना सा बला दे मुझको।
0: वाह,
1: डूबते डूबते आवाज तेरी सुन जाऊं, आखिरी बार तो साहिल से सदा दे मुझको।
0: वाह वाह, क्या बात।
1: मैं तेरे हिजर में चुपचाप ना मर जाऊं कहीं, मैं हो सकता मैं कभी आके रुला दे मुझको।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: देख मैं हो गया बदनाम किताबों की तरह,
0: आहा
1: मेरी ताशीर न कर अब तो जला दे मुझको।

0: मेरे जीवन में क्या कोई कमजोर सा लम्हा हो बला दे मुझको।
1: वाह वाह क्या बात है, बहुत खूब।
0: ये तो शायरी थी, बहुत लतीफे आपको सुनाता हूँ।
1: जी जी
0: ये तरह ठहरे ये मैं बहुत अब ठीक है। एक आदमी अपने दोस्त से कहा आज मैंने तुम्हारी बीवी को देखा था, वह बहुत उदास गमगीन थी और खामोश बैठी थी। उसके दोस्त ने तजब से देखा और फिर बड़े इत्मीनान से कहा वो मेरी बीवी नहीं हो सकती।
1: अच्छा
0: समझिए ना, समझिए।
1: जी जी बिल्कुल समझ गए, आप कुछ कहें तो हम ना समझिए कैसे हो सकता है।
0: एक बूढ़ा स्कूल गया और उस्ताद से कहा मेरा पोता खरम यहाँ पढ़ता है इसलिए मिलने आया हूँ। उस्ताद जनाब वो तो अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे पर गया है।
1: अच्छा
0: तो ठीक है जी, सबको हमारी तरफ से
1: मोहब्बत
0: भरा सलाम इंशाल्लाह।
1: ठीक है सर, सलाम दे रहे हैं, थैंक यू।
0: वालेकुम सलाम, जिंदगी ने वफा की तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा।
1: जरूर जी जरूर इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब अय्यूब चौहान साहब के लिए और तालियों की गूंज में खुश आमदीद वेलकम जी इन कहेंगे एम खान साहब को। एम खान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हज़रत मेरी तरफ से आपको आपके साथ को मिलाद मुस्तफा के महीने की दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको।
1: खैर मुबारक आपको भी।
2: खैर मुबारक। मैं एक शेर आपके लिए जो नजर करना चाहता पिछले हफ्ते वो याद आ गया।
1: अच्छा
2: वो फिर भूल गया हूँ।
1: मैं इतने खुशी से अच्छा कहा था वो काम खराब हो गया। फिर
2: काम खराब हो गया। पूरा हफ्ता याद करता रहा वक्त पर फिर भूल गया।
1: ये कभी कभी हो जाता है ऐसा, आप कोई बात होती है और आप सोचते हैं कि ऐसा कहेंगे ये होगा वो और थोड़ी देर के बाद बंदा भूल जाता है। ये आज भूलने की आज बंदे को आजकल बीमारी लगी हुई है। ये मुल्क ही ऐसा है, टेंशन ही होती है इतनी ज्यादा बंदे को।
2: किसी
1: आ गया
2: सहर का वक्त है लेकिन सहर नहीं होती।
1: हाय हाय हाय हाय।
2: सहर का वक्त है लेकिन सहर नहीं होती। अगला फिर भूल गया हूँ, यानी हम इंतजार करते रहे आपके लिए कि वो वक्त कब आएगा जब आप आएंगे।
1: अच्छा।
2: मैंने समझा शायद आप कोई कश्मीर में किसी मुहिम में यानी मुबारक कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तुसी
2: सदर बनने या वजीर आजम कश्मीर बनना चाहते हैं।
1: अब जो वाला आते हैं ना, आप लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगता मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सोच रहे हैं कि ये वहाँ जाए पंगा ले और फिर जाए। हमारी कौन सुनता है यहाँ, वहाँ के लोगों को कुछ सुनाई नहीं है तो हमारी कौन सुनता है सर।
2: और मैं फैक्ट्री में काम करता था, मुझे मैनेजर कहने लगा अगर तू ब्रेडफोर्ड का कंसल्टेंट बनना चाहे तो मैं सारा तुझे बनाने तक या तेरा नाम आ जाएगा उसको कंसल्टेंट के ऑफिस से बाहर निकलूंगा, तू सिर्फ यस कर।
1: अच्छा।
2: वो एक आदमी इसका लड़का बहुत अमीर तीन आदमी था, उसने कहा कि मैं उस दिन ब्रेडफोर्ड से आऊंगा जिस दिन कौंसलर का ऐलान हो चुका तू कौंसलर बन गया है।
1: अच्छा।
2: ये दोनों आदमी ने एक अंग्रेज था एक पाकिस्तानी बहुत मालदार बिजनेस मैन स्टफ था, उसने कहा तो मैंने कहा कि मुझे दिलचस्पी नहीं है। बड़ा अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ता हूँ।
1: जी जरूर।
2: दर्द इश्क है गहरे आबो दार तू ना महरमू में देख ना हो आशकारा तू तनाते नकाब तेरी जलवा गा है।
1: वाह वाह क्या बात।
2: जाहिर परस्त महफले नुआ की नगाह है।
1: वाह वाह बहुत खूब।
2: आई नई हवा चमन से हंसो बूंद में।
1: बहुत खूब।
2: ऐ दर्द इश्क अब नहीं लज्जत नमूद में।
1: बहुत खूब।
2: हाँ खुद

0: नमाइयों की तुझे जस्तजू न हो, मेहनत वजीर नालाए बुलबुल का तू न हो। आगे मियां साहब का एक अपना मकाम है, मियां साहब इरशाद फरमांदे
1: जी जी,
0: मियां साहब फरमांदे सादा सलामत राज उस दर सब सलामी, आदम जिन मलाइक हर शह जियो जिए जून तमामी। आगे इरशाद फरमाते हैं
1: जी जी,
0: वो जिस सदर नशीन दीवान हशरदा, अफसर अफसर बिच इमामा, कुल नबी मोहताज उना दे, ओ नफरों वांग गुलामा, इज्जत कुरब माफी जाना इज्जत कुरब तो साडा वेखन, उरा मालक प्यारे नाले रू नबियां दी सुन दे, ओवन सलामी सारे, ओ पाक जमाल तो साडे कारण, हर दी जान तरसदी, की कुछ नात की कुछ दूसरा पहला शेर
1: जी,
0: सब किसे थी गे अगेरे चा चा चा पढ़े नूरी, काबा काउ सैन आउ अदना ताई पया शान हुजूरी, ज्ञानी नाल मिले दर दिल जानी वत न रिया जर्रा, खिलगत खिलकात तोहफे हदिये लेके आए फेरो मुकर्रा, ओ की कुछ नात तू साडी आखां, ओ खिलगत दे सरदारा, ओ लख सलात सलाम तेरे ते लख दुरूद हजारा, ओ आल औलाद तेरी दा मंगता, ओ मैं कंगाल जियानी, ओ पाओ खैर मुहम्मद ताई, ओ सदका शाए जेलानी। अदर बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन नहीं रहे थे तो अय्यूब चौहान साहब ने कहा था कि मैं ब्रेडफर्ड में होता तो एम खान साहब से शागिर्दी, उनकी शागिर्दी में जाता, तो मैंने कहा आजकल फ्री मिनट है, फ़ोन पे भी बात हो सकती है, आप कुछ सीखना चाहते हैं उनसे तो बोलते हैं। हाँ, तो आप तैयार रहिएगा, वो आपकी शागिर्दी में आने वाले।
0: अच्छा जी, वो बहुत ऊँचे आदमी हैं, बड़े सुलझे हुए, वो आपसे बड़ी मोहब्बत रखते
1: हैं। नहीं, उन्होंने कहा ना मैं एम खान साहब से गुजारिश करूंगा वो मुझे शागिर्दी में लें। मैंने बोला क्यों लें, क्या बात है? बोलते हैं मैं सीखना चाहता हूँ ना, वो अल्लामा इकबाल साहब की शायरी करते हैं और ये इस मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ज़रूरी आप ब्रेडफोर्ड में नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आप सब आपसे कोई रब्ता करेंगे।
0: आपकी मोहब्बत बड़ी दुआओं की पीक है, वो इतने साहिब इल्म आदमी है, आपसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, आप उनको बहुत छेड़ते रहते हैं।
1: वो तो हमारा दोस्ताना है ना, तो इसलिए किसी और के साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं ना, तो दोस्त हैं तो इसलिए वो मुझे पता है माइंड नहीं करते हैं, तो दिल लगी कर लेता हूँ थोड़ी सी उनके साथ।
0: ये उनके बड़ेपन का
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे एम खान साहब जनाब, बहुत सारी तालियां उनके लिए। और अब दोस्तों वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद जनाब हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, जनाब नदीम मंसूर साहब और जावेद मीर भाई, तो मिलते हैं उनसे कमर्शियल के बाद।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनलाइट रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने कहा था हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब नदीम मंसूर साहब और जावेद मीर भाई। तो चलते हैं पहले तालियों की गूंज में नदीम मंसूर साहब को खुश आमदीद वेलकम जी उन्हें कहेंगे। जी नदीम मंसूर भाई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं और जो गाने आपके लिए प्ले किए थे आपको अच्छे लगे वो या फिर?
1: नहीं नहीं हर गाना प्यारा था।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
1: क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इतनी प्यारी प्यारी आवाजें दी हैं, जब भी उनको सुने तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है।
0: सही है सही। तो आज आप क्या लेकर आए हैं? किस
1: मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना ये पेश कर दिया जाए, चन जी गड्डी रोज चलान दे और ताजे हैं जख्मां दे।
0: ओए होए होए होए होए होए होए होए ओए कोई छोड़े ना कोई छोड़े।
1: आज ए सामने पे आती मैं इसी करना था आज यही पेश करा।
0: चलो ठीक है, अच्छी गल जरूर।
1: ये थोड़ी हाथर स्पेशल थे।
0: थैंक यू सर,
1: नो प्रॉब्लम।
0: थैंक यू सर।
1: ओ चन्नी

चन जी हर जाइवे बोर्ड लगे ओ बदनामी दे।

ओ चन जी, ओ चन जी, लावा सुर मसलाइया नाल हफ की मुका माया।

माल हफगी मका माया। ओ चन जी तुदा रोज उड़ी का मैं जद

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह क्या बात है नदीम मंसूर भाई, ओए होए सदके जाऊं, खुश कर देता है जनाब, क्या बात, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही प्यारा, बहुत शुक्रिया सर। अगले घंटे के में इंतजार करेंगे आपका। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जनाब नदीम मंसूर साहब के लिए, क्या माया इन्होंने सुनाया जनाब, और तालियों की गूंज में ही खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे जावेद मीर भाई। जावेद मीर भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं जनाब, ठीक हैं आप?
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी भाईजान,
2: मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: जिनमें आमिर शहजाद साहब हैं, गुलसफीना साहब हैं, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, तौकीर शाह, तारिक भट्ट, आसिफ रियासत, अमजद हकीम भट्टी, महबूब इलाही, कामरान शहजाद, सलीम भाई हैं, अब्दुल कयूम, परवेज साहब, मगवर सफी उल्लाह, खालिद भट्टी, रफीन भाई हैं, तारिक जुल्फी भाई हैं, छोटे पीर हैं, शकील साहब हैं, चौधरी महमूद साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर, चौधरी फरियाद साहब हैं, और चौधरी सॉरी हमीदा साहब हैं, सादिया बहन है, गजाल साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, अतीका साहब हैं, चौधरी तारिक साहब, आजी अयूब, और
1: चौधरी फरियाद साहब भी ओल्ड पे हैं।
2: चौधरी फरियाद, हाँ।
1: मजे की बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर से फोन कर रहे हैं, लिखा फ्रांस है
2: जी,
1: लिखा फ्रांस है ऊपर, क्या सिमें मिलती है पाकिस्तान में,
2: बात सही है पाकिस्तान,
1: हाँ सही है जी, फरमाइए।

बेरहम आसमां जा रहे हैं न जाने किधर, देख सकती नहीं कुछ नजर, छोड़ दी नाव मझदार में इस किनारे लगे क्या खबर, क्या कहें दूर तक रोशनी का नहीं है निशान।

मुझसे किस्मत ने धोखा किया, हर कदम पर नया गम दिया। ऐ खुशी की कसम के यहाँ चैन का सांस तक ना लिया। बुझ गया दिल मेरा, रास आया ना तेरा जहां, तेरे हम आसमां।

0: खत्म कर दे मेरी दास्तां, बेरहम आसमां मेरी मंजिल बता है कहाँ, बेरहम आसमां।
1: जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब जावेद मीर भाई, बहुत अच्छा गीत तलत महमूद का आपने गाया, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया, बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अगले घंटे में इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां जावेद मीर भाई के लिए, क्या गीत उन्होंने तलत महमूद का गाया, सभी ने पसंद किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब चौधरी फिराज साहब, लेकिन क्या है कि वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का हो गया है, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियों के मुताबिक टाइम हुआ है 12:49, यानी कि 49 minutes past 12, तो यूं गए और यूं वापस आए।
3: 24 hours a day. Sunrise Radio. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है और जैसा कि कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से जनाब चौधरी फरियाज साहब। तो चौधरी फरियाज साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी
0: बिस्मिल्लाह करा, वालेकुम सलाम जी करा। बिस्मिल्लाह करा, सुनियो मखना मलाई दे पेड़ियो, की हाल जे?
1: ठीक
0: ठाक, तुसा सुनाओ बाबा वालो। बस ही वाल सुनो, तुसी सुनाओ, बस तुसी ठीक रहो ते भाभी दा की हाल है हुन? ठीक ने?
1: नहीं कोई नहीं,
0: मसला
1: थोड़ा
0: अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, सी दुआ कर दे अल्लाह उन्हें जल्द से जियाब करे। जी जी
1: चलो ते उन्हें सांस सांस टाइम ना जया करने के सलाम दुआ करां ते फिर चंदे शहर तो सानी मैं अपनी नजर कर सांस ते सब से पहले अतिका बाजी ने, नशीन जी ने, गजला बाजी ने, सीमा जी ने, ना मेरा बहुत बहुत सलाम, और परवेज भाई ने, महबूब लाई साहब ने, दसर साहब ने, जसलीम साहब ने, चौधरी मनीर सिंह चक्की अली ने, शकील साहब ने, हीरा साहब ने, आवाजल भाई ने, अयूब चौहान साहब, जावेद मीर भाई, अब्दुल किशन भाई, नवीद राणा साहब ने, और जनाब तारिक बट साहब ने, जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब ने, सारे दोस्त, और चौधरी आसिफ रियासत साहब ने, और चौधरी रुखसार साहब ने, एम खान साहब ने, नजीम मंसूर साहब, और सिकंदर अली ने, बशारत अली, आरफ अली, सब दोस्तों ने मेरा बहुत बहुत सलाम
0: जी।
1: बिस्मिल्लाह करा, लिखने ने के मौला राजी हैं तेरी रजा हो,
0: हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह।
1: मौला राजी हैं तेरी रजा उते, सदा दर तेरे सर खम रहंदा,
0: वाह सुभान अल्लाह।
1: मिल जांदी मंजिल उसनु, मिल जांदी मंजिल मकसूद उसनु, करदा याद जो तेनु हर दम रहंदा,
0: वाह सुभान अल्लाह।
1: जिसनु तेरी कुर्बत नसीब होवे, कदों उसनु जमाने दा गम रहंदा,
0: आहा
1: होवे दिल विच जे खौफ शबरेद रब दा, अपने गनावा बंदा अपने गनावा दे सदा नदम रहंदा,
0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
1: के लिखने ने के हाथ उठावा ते वो दवा मंगा,
0: वाह
1: हाथ उठावा ते वो दवा मंगा, कर नेकी दी तौफीक अता मौला, जेड़े मर्द ने, जेड़े मरीज ने कुल जहान अंदर, जल्द उन्हां नूं दे शफा मौला,
0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
1: तू ते तेरा रसूल राजी, ऐसा कम तू असां तों करा मौला, ऐसी आरज़ू आजज अबरेज दिए, बुरी सोबत तो सानू बचा मौला,
0: वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह।
1: ते मजाल ने रंगे चाहने ने के चंद दिना दा आख के गया से,
0: आहा
1: चंद दिना दा आख के गया से, गे साल वछोड़े विच लंग दिलवर,
0: ओए होए होए
1: जाके विच परदेस फला देता है, मैंने सूली ते गया है टंग दिलवर,
0: वाह वाह क्या बात।
1: शब अख्तर शमारी विच गुजर जांदी, मारे नाग वछोड़े दंग दिल बार, एक बार मुड़ा जा हबीब अमृत,
0: वाह
1: पैर रमा रा मंग दिल बार,
0: वाह जी वाह क्या बात है।
1: अख्या परदेस विच जान वालिया,
0: वाह
1: परदेस विच टुर जान वालिया, नाल लै के गया है मेरिया मेरे हाथियां नू,
0: वादी
1: आज दे कल दे नित करी जाना है, करना क्या मैं तेरिया गलासियां नू,
0: वाह वाह वाह।
1: मुझदा गुजरिया तेरे फराक अंदर, ये जदीद नैना पे आसियां नू, अल्लाह वास्ते आख्या भी अमृत, कोई आस दे जा आसियां नू,
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: आख्या कदी आ दिल, कदी आ दिल मेरा भी चैन पावे, कदी हा दिल मेरा भी चैन पावे, पूरा किता फराक ने आल दिल बार, मिसल तीर दे चुबे है दर्द सीने, सदा वस्ता जो नालो नाल दिल बार,
0: वाह वाह।
1: मेरे दिल विच इको अरमान आ जा, तेरे बिन गुजरन औखे सार दिल बार, अजे तक मैं रखिया संभाल अमृत, और तेरा रेशमी दे सुवा रुमाल आ जा,
0: वाह क्या बात है बहुत खूब।
1: आख्या चेती आवन और तरफा नहीं, छेती आ हूं होर तड़पा नहीं, दादा किता फराक ने हार, दादा किता फराक ने तंग दिल भर, चढ़िया रेंदा बखार प्रेम वाला, जिसने तोड़ दिता है अंग अंग दिल भर,
0: वाह वाह।
1: सखियां सारियां रोज नित देन ताने, रुड़ गियां रकीब ले संग दिल भर, वखरे दिल मेरे बुरा, दुखरे दिल मेरा बुरा हाल, अमृत हिजर आन किता है पीला रंग दिल भर। अमर भाई
0: जी सुनियो,
1: थोड़ी देरी बाद
0: जरूर जनाब, जरूर बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब चौधरी फरियाद साहब, पाकिस्तान कश्मीर जोई से फ़ोन कर रहे थे। शुक्रिया इनका, ढेर सारी तालियों उनके लिए। और दोस्तों आपको छोटा सा एक गीत सुनाते हैं, इन्जॉय कीजिएगा इस गीत को।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे مخاطब है और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे कोशिश होगी इस आवर में भी अगर कोई मौका मिला आपके लिए अच्छा और प्यारा सा गीत पेश करने की कोशिश करेंगे और जो दोस्त आते हैं वो तो आपको पता ही है अपना रंग जमाते हैं और एंजॉय करते हैं हम उनको सुन के तो जनाब चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और हिट ऑफ द आवर का गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को जुड़ रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हमारे जनाब नदीम मंसूर साहब भी तो हिट ऑफ द आवर के बाद कमर्शियल होगी कमर्शियल के बाद फिर नदीम मंसूर साहब को सुनेंगे तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं हिट ऑफ द आवर उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं सुनते रहिएगा संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग
1: हिट ऑफ द आवर Brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आप बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा, और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद दोस्तों हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, जावेद मीर भाई और नसीम मंसूर साहब। तो चलते हैं, पहले कमर्शियल सुनते हैं, उसके बाद इन दो शख्सियात से मिलते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: तो साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों जैसा कि कमर्शियल पे जाने से पहले हमने कहा था, हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब नदीम मंसूर साहब और जावेद मीर भाई। तो चलते हैं तालियों की गूंज में वेलकम जी अनुसत बिस्मिल्लाह कहेंगे नदीम मंसूर साहब को। नदीम मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: ओ क्या माया सुनाया था जनाब पिछले आवर में, वही कानू में रस घोल रहा है। तो आप क्या लेकर आए हैं आप?
1: अभी रफी साहब महरूम का एक गीत है।
0: अच्छा
1: ये जो चिलमन है।
0: ओ हो क्या बात है, क्या बात है,
1: कितनी शर्मीली
0: है
1: हमारे।
0: हाय हाय क्या बात है।
1: तो ये आपकी नजर, साहब की नजर।
0: थैंक यू सर।

कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, हो कैसे दीदार आशिक।

रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा, उफ ये कमबख्त दिल क्यों धड़कने

0: बरोबर।
1: ओए होए होए क्या बात क्या बात, महबूब की मेहंदी फिल्म से लिया हुआ गीत, मोहम्मद रफी मरहूम की आवाज़ में आपने ये गाया, बहुत अच्छा। हमारे सिस्टम में नहीं है ऐसे ऐसे गाने जो अच्छे अच्छे हैं, वो है नहीं है। चलिए क्या हो सकता है, आप सुनाते जाएं और हम सुनते जाएंगे जो गाने मिस,
0: जो उस सिस्टम में ना होगा नदीम के सिस्टम में आ जाएगा।
1: हाँ सिस्टम में आ जाएगा, सही है, बहुत अच्छा लगा। और आयु चौहान साहब आपकी तारीफ कर रहे हैं, बोलते हैं मजा आ गया गीत सुन के, तो बोलते हैं बहुत शुक्रिया जो ये गीत आपने चुना।

0: जब इन्होंने की चौधरी फिराज साहब ने, और अब इटली का लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ये चौधरी फिराज साहब ही होंगे इस लाइन पे। जावेद मीर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: सुना गाना आपने नदीम मंसूर साहब का?
1: हाँ जी,
0: रफी का गाना। क्या गाना गाया उन्होंने जनाब?
1: जबरदस्त महबूब की मेहंदी का गाना।
0: हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो आप क्या लेकर आए हैं सर?
1: पता नहीं, फिल्म शहनाई है मेरा ख्याल।
0: अच्छा अच्छा,
1: मोहम्मद रफी साहब की।
0: रफी का गाना। जी जी जी,
1: तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: ना जट को जुल

0: न झट को जुल्फ से पानी। ये मेरा
1: वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ये भी हमारे सिस्टम में गाना।

नहीं है जो अच्छे गाने हैं बहुत तो चलिए कोई बात नहीं, आप दोस्त सुना देते हैं ना तो दिल ताज़ा हो जाता है ये गाने सुन के। तो बहुत अच्छा गाना चुना आपने भी, क्या गीत था जो नदीम मंसूर साहब ने गाया और क्या गीत आपने गाया, हाय हाय क्या बात है, सोने पे सुहागा हो गया जनाब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया मेरी जान, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ढेर सारी तालियां जावेद मीर भाई के लिए, क्या गीत इन्होंने गुनगुनाया जनाब, बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं दोस्तों अब कमर्शियल की जानिब, कमर्शियल के बाद जैसा कि मैंने कहा था जुड़े हुए हमारे साथ चौधरी फरियाद साहब, उन्हें सुनेंगे।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों लाइव कॉल का सिलसिला है, जैसा कि कमर्शियल पे जाने पे हमने कहा था, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से जनाब चौधरी फरियाद साहब, और आप जुड़ गए हमारे साथ महबूब लाई साहब भी। तो पहले तालियों की गूंज में खुश हमदीद वेलकम जी एन कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे एक बार फिर चौधरी फरियाद साहब को। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वंस अगेन।
1: एक दो शेर तो महफिल नजर करता बड़े खूबसूरत जे सर लिखने ने के अजब यार इतफाक होया,
0: वाह
1: अजब यार इतफाक होया, किसा नाल मेरे दर्दनाक होया, रुखे यार तू पर्दा हट गया, उसमें वे के जिगर भी फट गया, अरे या नहीं हो इतबार काबल,
0: हाय हाय
1: उसने मिलन दी जदों भी चाह की उस जुलम दी अगो इंतहा की ठोकर मार के उस टकरा दिता, साफ साफ है नाले फरमा दिता, वापस मुड़ जा नहीं दीदार काबल, हाथ जोड़ के अगो इंतजा की दसो भाव में केरी फता की बुआ मार के छिड़का वो देने लगा, फिर तलक सलामी नाल कहने लगा, तेरी जात नहीं मेरे प्यार काबल,
0: हाय हाय
1: अली हमजा रख कोल गल बातें अपने मैनु वेख के वेख औकात अपने, मैं उच्चा सुचिया विच बहन वाला, तू गरीब है झुगिया विच रहने वाला, तेरा मेयार नहीं मेरे मेयार काबल,
0: वाह वाह वाह।
1: अच्छा फिर मारा दिल है नाजुक जलाई किंतु, मारा दिल है नाजुक जलाई किंतु, रज रज के सितम कमाई किंतु, असरत दिले ने सारी मचाई किन तू, तो जेकर मुंह ते बोला ते गिला कर,
0: हाय हाय
1: सितम तेरे कलेजे नाल लाई रखता, सितम तेरे कलेजे नाल लाई रखता, राज अंदर ने अंदर छपाई रखता, पर्दा तेरी बेरुखी ते पाई रखता, जे इक राज भी खोलना ते गिला कर,
0: हाय हाय
1: अके हम इक दुखा विच पावे ते चूर कर दे, एक एक जख्म तो मेरा नासूर कर दे, मैनु मरण पे पावे मजबूर कर दे, तो माला रेम ने रोला से खिला करिया, अच्छा गल कोई ना बेअसूल करसा, जुलम तेरा मैं हर कबूल करसा, अली हमजा पर याद ना मोल करसा, तो कीते कोला तो डोला से खिला करिया,
0: हाय हाय
1: अमर भाई
0: जी
1: अगले
0: हफ्ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जनाब जरूर जरूर होसी, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी।
1: एक शेर तुसाने नजर
0: जी जी जरूर जरूर,
1: एक पल ना गुजरे बगैर तेरे,
0: हाय हाय
1: एक पल ना गुजरे बगैर तेरे, दादा दिल रहंदा है बेकरार सजना,
0: हां
1: ना तू आवे ना बुलावे ना कोले अपने, मैं कर कर सके आप कार सजना,
0: वाह वाह
1: पैरा चक ते ला रकीब बैठे, कदम कदम ते खतरे हजार सजना,
0: देखो
1: सोच सोच सोचा में अली हमजा,
0: वाह
1: देखो सोच सोच सोचा में अली हमजा, करा किस तरह तेरा दीदार सजना,
0: वाह वाह चौधरी साहब चलो अल्लाह रहम करे सारे, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, अपना ढेर सारा ख्याल रखे, दुआओं याद रखे, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थे जनाब पाकिस्तान कश्मीर जड़ोई से जनाब चौधरी फरियाद साहब, क्या शायरी करते हैं जनाब, दिल के तारों को हिला के झंझोड़ के रख देते हैं, बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा मज़ा आता है जब ये वीर आता है, तो बड़ा सुकून आता है इन्हें सुन के, और कभी प्रोग्राम में शामिल ना हो पाए तो बड़ा मलाल सा होता है। तो चलिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप चलते हैं तालियों की गूंज में जनाब महबूब लाई साहब इस लाइन पे मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद वेलकम जी हमें कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू महबूब लाई भाई।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं सदके जान सुनियो, की हाल जी?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह दा। चौधरी साहब दी शायरी सुन रहे थे, जबरदस्त।
0: बड़ी जबरदस्त सर, बड़ी जबरदस्त जी जी।
2: तो भाई जुवेद मीर से भी गीत भी सुना, वो भी कमाल कर दें आपको पता है।
0: आज प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में शुरू में ही नदीम मंसूर आए, क्या गाना उन्होंने गाया, ऊपर से वो जावेद मीर बार आए भाई आगे, ओए होए सदके जाऊं, कमाल कर गए। फिर आपने चौधरी फरियाद साहब आगे, क्या शायरी करके गए, और उसके बाद एक द मैन विद द गोल्डन वॉइस वो आगे, तो आप देखते हैं क्या होता है जनाब।
2: जी तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जो है नाम करना चाहेंगे शायरी है थोड़ी सी, तारिक दुलती है, महमूद सुल्तान कराची वाले, चौधरी रखसार हैं, चौधरी मुजफ्फर हैं, चौधरी जुवेद मीर है, पापा शफीक है, नवीद भाई है, मंसूर भाई है, और हमीदा जी है, अतीका जी है, और आप सब सभी के नाम, और भाई सफीउल्लाह साहब, भाई शकील है उनका नाम,
0: भाई सफीउल्लाह सुन रहे हैं आज आपको सुन रहे हैं।
2: अच्छा, जबरदस्त। उनके नाम करना चाहेंगे, शायद लिखता है
0: जी जी।
2: बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो, बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो।
0: बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात।
2: कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो, यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा, यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा, तुम अक्सर गुनगुनाते हो।
0: वाह बहुत खूब।
2: तुम अक्सर गुनगुनाते हो, दुराने गुफ्तगू यूं ही मिले नजरों नजरों से जब नजरें, दुराने गुफ्तगू यूं ही मिले नजरों से जब नजरें, तो बातें भूल जाते हो।
0: वाह बहुत खूब, बहुत खूब।
2: तो बातें भूल जाते हो किसी गुमसुम सी हालत में या फिर बारिश के मौसम में।
0: वाह वाह क्या कहने,
2: किसी गुमसुम सी हालत में या फिर बारिश के मौसम में, फकत इतना ही कहते हो। फकत इतना ही कहते हो, उदासी बेवजह सी है, बहुत बोझल तबीयत है। उदासी बेवजह सी है, बहुत बोझल तबीयत है, भला सच क्यों नहीं कहते, भला सच क्यों नहीं कहते कि किसको याद करते हो।
0: हाय हाय,
2: भला सच क्यों नहीं कहते कि किसको याद करते हो, बहुत मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो।
0: वाह वाह क्या बात, क्या बात।
2: मुद्दत से ऐसा है कि तुम खामोश रहते हो, क्यों ये गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो।
0: वाह वाह बहुत खूब,
2: जिसे चुपचाप
0: सहते हो।
2: आज के लिए इतना ही था।
0: वाह जी, जो था कमाल का था जनाब, कमाल का था। और आप माशाल्लाह, आपको सलीका है, शायरी का अंदाज कैसे होता है, तो ऊपर से आवाज़ भी बहुत प्यारी है, तो बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मज़ा आया, और मन नहीं कर रहा था कि ये शायरी अभी आप ख़त्म कर दे, अभी तो हमें सुकून आ रहा था सुनने में, और ऊपर से आपने छोटी सी शायरी चुनी आज के प्रोग्राम में, तो एनीवे महबूब अलाई साहब बहुत शुक्रिया, आप आए प्रोग्राम को रौनक बख्शी, आप जैसे दोस्तों की वजह से प्रोग्राम में रौनक होती है और दिल खुश हो जाता है, हमारा मन भी करता है प्रोग्राम करने का, तो आप दोस्तों का प्यार और खलूस मोहब्बत, शुक्रिया आप दोस्तों का, तो बहुत सा ख्याल रखिए अपना जी, अपना बहुत सारा जी जी सारा ख्याल रखिए, और दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे महबूब इलाही साहब, बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक, और बहुत ही प्यारी शायरी और गुफ्तगू उनकी, तो बड़ी जो है वो प्यारी होती है, क्योंकि हमेशा ये सेंटेंस जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं, और बड़े प्यारे खूबसूरत लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे दोस्तों से बात करके और उनसे कुछ सुन के बंदा सीखता ही है। तो जनाब महबूब अलाई साहब बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी, क्यों हमारे प्रोग्राम जो लाइव हैं ये लाइव कॉल्स में दो होते हैं जनाब, संडे का होता है जो 12 और 2 के दरमियान यानी कि 2 आवर का प्रोग्राम लाइव कॉल्स का होता है सिर्फ पहला आवर जो है 11 से 12 वो उसमें डेडिकेशन होती है उसके बाद फिर मेरा वेंसडे का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी लाइव कॉल्स होती है ट्यूसडे अपने ट्यूसडे मंडे और ट्यूसडे गाने ही प्ले करते हैं हम लोग प्रोग्राम में तो लाइव कॉल्स नहीं लेते हैं और थर्सडे के प्रोग्राम में भी लाइव कॉल्स नहीं लेते हैं यानी कि मैं प्रोग्राम 5 करता हूं संडे से लेकर थर्सडे तक सभी का टाइम एक ही है 11 से 2 और फिर संडे का प्रोग्राम जो होता है ये 2 घंटे लाइव कॉल्स का होता है जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुनाते हैं और फिर वेंसडे का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आखिरी जो आवर होता है 1 से लेकर 2 बजे तक उसमें भी लाइव कॉल्स होती हैं अगर आप अपनी पसंद का शायरी पसंद की शायरी शेयर करना चाहें या फिर कोई गीत गुनगुनाना चाहें तो ये 2 प्रोग्रामों में अपॉर्चुनिटी है मंडे ट्यूसडे और थर्सडे के प्रोग्रामों में नहीं है वहाँ सिर्फ हम डेडिकेशन लेते हैं तो चलते हैं दोस्तों अब वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं सुनते रहिएगा संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और अभी आपने जोहर की आजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:45, यानी कि 1:45। तो जनाब, कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद फिर सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और मेरा और आपका साथ तकरीबन 15 मिनटों से भी कम रह गया है। और मेरे बाद आपको पता है कि कौन आ रहे हैं जनाब, काशिफ आ रहे हैं। हल्ला गुल्ला होगा, खूब हल्ला गुल्ला होगा और मज़े मज़े की बातें सुनेंगे, मज़े मज़े के गीत सुनेंगे। तो आई कांट वेट। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, लुत्फ आता है काशिफ का प्रोग्राम सुनने में। तो उम्मीद रखता हूँ आप दोस्त भी उनका साथ निभाएंगे और उन्हें उतना ही प्यार देंगे जिसके वो काबिल हैं, क्योंकि आप दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। आपका जो जहन है उसको ये टेंशनें जो होती हैं उनसे दूर रखते, वो 3 घंटों का जो सफर होता है उनका, उनकी कोशिश होती है कि आप दोस्तों को कोई टेंशन ना आने दें और अपनी बातों में उलझाए रखते हैं और साथ में ऐसे ऐसे प्यारे गीत पेश करते हैं और गीत जो होते हैं वो उनमें ध्यान बंदे का चला जाता है और 3 घंटों का जो उनका सफर होता है और लाजवाब होता है। और यकीनन आप दोस्त जरूर उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Favourite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move

जी दोस्तों, अभी आपने कभी कभी फिल्म से लिया हुआ गीत लता जी और किशोर कुमार की प्यारी सी आवाजों में आपने सुना, जो है वो गोल्डन ओल्डी की शक्ल में। जैसा कि मैंने कहा था कि जनाब अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अख्ताम पसीर हुआ जाता है। मेरे बाद यहाँ आपके लिए काशिफ प्रोग्राम पेश करेंगे, उनका ज़रूर साथ दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर मज़े मज़े की बातें सुननी हैं और मज़े मज़े की गीत सुनने हैं तो काशिफ का प्रोग्राम ज़रूर जो है वो आप जो है उसको सुनिएगा, ताकि आपका 3 घंटों का सफ़र अच्छा गुजर जाए, काशिफ का भी अच्छा गुजरे और आपका भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, अब मेरे प्रोग्राम का जैसे कि मैंने कहा कि वक्त जो है इख्तिताम पसीर हुआ जाता है, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह होगी 11 बजे। तो जनाब, उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा, और उन दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए, लाइव कॉल्स में आए और अपनी प्यारी आवाज़ों में गीत गुनगुनाए और शायरी की, और उन दोस्तों का भी जो हमें सुनते रहे, हमारा साथ निभाते रहे और 3 घंटों का जो सफ़र है उसका भरपूर साथ दिया। तो दोस्तों, मुझे अमर शराद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

मौजूद हैं आप गैरों के आसपास कहीं या बैठे हैं हमारी तरह अपनों के दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आइनो, वेलकम, खुशामदीद, कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ, आपके अपने सनराइज रेडियो पे मौजूद, हस्बे वादा हस्बे मामूल। ठीक 3 घंटे का साथ होगा, सफर होगा, अंग्रेजी वाला सफर नहीं जनाब, सुहाना सा उर्दू वाला, हिंदी वाला सफर। और 103.2 FM के जरिए आप वेस्ट यॉर्कशायर में और इसके गिर्द और निवाह में सुन रहे हैं ना, बताए ना, हाथ खड़ा करें। नहीं, गाड़ी अगर चला रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं हाथ खड़ा करने की। दिल ही दिल में जनाब कह दे, हां जी सुन रहे हैं, कह दे, मैं अपने दिल से सुनूंगा। चले अब मैं पूछता हूं दोबारा, आपने दिल में एक बार कहना है, क्या कहना है? हां जी सुन रहे हैं जनाब, आप हमें सुन रहे हैं ना। हाय, आवाज आ गई मुझे, आपने दिल में कहा, सरगोशी में कहा कि सुन रहे हैं जनाब। मुझसे पहले आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई आमिर शहजाद भाई को जनाब, उन्होंने खूबसूरत सा सावा बांधते हैं, हमेशा महफिल सजाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी बताते हैं, जब जब आते हैं जनाब छा जाते हैं। और हमारी तो मौजें लगी हुई हैं, आप उनको खाली सुनते हैं, हम तो उनसे जफ्फी लगाते हैं। हमारा तो जनाब रदीफ काफिया बनता जा रहा है, इससे पहले अगर लंबी हो जाए गजल उनकी शान में क्या कहें जनाब। उनके नाम खूबसूरत सा पहला गीत, और आ उनके जितने भी जिन्होंने भी साथ निभाया, उनका खूब निभाया, आप सबके नाम ये गीत। अब बारी हमारी है इस बेचारे काशिफ की, हकीर फकीर सा, सीधा सादा सा, आपका अपना काशिफ, हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। अगर आपका दिल चाहे, मन चाहे, मर्जी हो, कोई बड़ा ही वेला सा मोमेंट, वेला सा टाइम आपके पास हो तो कॉल कीजिएगा जनाब, वरना हाय मजे से सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा क्या है, हम तो डूब के आते हैं जनाब कॉफी के नशे में। आज तो अमर भाई को भी खुशबू आई होगी कॉफी की, कहते हैं देर क्यों होगी, मैंने कहा कॉफी गर्म थी तो आप। उन्होंने कहा कि इतनी देर क्यों लगा दी, मैं तुम्हें फोन कर रहा था कि आज कहीं नागा तो नहीं करना। मैंने कहा नहीं भाई, असल में ना कॉफी बहुत गर्म थी, वो उसको ठंडी कर करके पीते पीते देर हो गई, तो मैंने कहा अब कॉफी मुका के जाना पड़ेगा, तो इसलिए जनाब सेकंड्स के फर्क से मैं यहां स्टूडियो में पहुंचा। तो जनाब अगर आप 20 वक्त एक कप कॉफी का, एक कप चाय का, एक कप दूध पत्ती का कड़क वाला बना रहे हैं, रही हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो जनाब यहां अगर इस वक्त अभी आपने चाय बनाई नहीं है ना, तो मेरा मशवरा माने प्लीज, 3-4 सब्ज इलायचियां तोड़ के, बिल्कुल उसके अंदर जो काले दाने हैं उस समेत, बिल्कुल उसको 5-7 वो जो है ना दफा बॉयल करें, फिर आप मुझे याद करेंगे और मुझे आएंगी ढेर सारी छींकें। लेकिन याद करने से याद आया, हमने आपको याद किया, क्या आपने हमें याद किया या भुला दिया, कुछ तो किया होगा।
भाई हमने तो कभी बुलाया आपको, कभी याद किया।

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक टाइम हो चुका है दिन के 2:19।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: Across our region, the Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

करते हैं ब्रेक के बाद, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं काशिफ को। जनाब ये गीत हमने लगाना है, होते हैं ना कोई आपके अपने, वो जनाब आपसे दूर रहते हैं, पता नहीं क्यों आपको तरसाते हैं, तड़पाते हैं, उनको मजा आता है। अब हम इस

और हमने बातें सीखी आप सबसे और कुछ बातें हमें करनी सिखाई। जी जनाब, ये जो हीले बहाने हैं ना, ये मुनीर भाई आपकी बात कर रहा हूं। लोग मारते हैं, सुनने में आया है, अपने पांव पे कोलाड़ी, आज मैंने जान की बाजी लगा दी और छेड़छाड़ कर दी उस बंदे से, जनाब जिससे बड़े कम लोग छेड़छाड़ करते हैं, हमने जनाब कुलाड़ी पे ही पैर मार दिया। जाओ जे देखते हैं आज क्या होगा। तो मुनीर भाई आप बस दूरों दूरों असां की तरसाने हो, कदा कदा खलते पानी च पत्थर मारने हो, ते फिर आने भी पानी विच लहरां उठन, ते तुसां की तकी कै ओ लहरां स्वाद अछना, इनकी पता ना बड़ा। कोई गल नहीं, अल्लाह पूछ सी।

0: जी जनाब, वेलकम बैक। आपको कहते हैं, आप सुन रहे हैं काशिफ को, मेरा और आपका साथ। गपशप चल निकली है जनाब। कॉल्स आप कर रहे हैं 01274306666 के जरिए, और अगर आपको टाइम मिले तो कॉल कीजिएगा, वरना आराम से सुनते रहिए 01274306666 पे हम मौजूद हैं पूरे 3 घंटे आपके लिए। जनाब हमारे साथ शामिल हुई सामिया। अच्छा जनाब, कुछ कॉलर्स होते हैं मेरे दिमाग में ना, उनकी एक प्रोफाइल बन जाती है जो रेगुलर कॉल्स करते हैं। एक कुदरती बात है, एक कैटेगरी में हम उनको डाल देते हैं। लोगों से भी आप मिलते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, दोस्तों से भी, आपके ढेर सारे दोस्त होंगे तो कोई ना कोई वो एक कैटेगरी होती है ना, एक आप उनको उसमें रखते हैं कि ये बड़ा वफादार है, ये बड़ा फनी है, या ये रिश्तेदार बड़े मतलब ना बड़ी चुगलियाँ लगाते हैं, और ये रिश्तेदार जरा जो है ना, जब भी आते हैं ये हर वक्त मॉर्निंग करते रहते हैं, अच्छा भला दिन भी होगा तो कोई ना कोई नेगेटिव बात करते हैं। अच्छा ये जो दोस्त हैं ये बड़े पॉजिटिव हैं, आपकी बैंड बजी होगी जनाब किसी न किसी वजह से, आपकी वाट लगी होगी, लेकिन जनाब वो फिर भी पॉजिटिव उसमें से ना कोई पॉजिटिविटी निकाल लेंगे। तो आपको पता होता है कि ये दोस्त आए हैं ना तो अभी माहौल पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोस्त आए हैं तो माहौल फनी हो जाएगा, इन्होंने सांस आ के जनाब हमारे टिड में वट पड़ जाएंगे। फिर आपको पता होता है कैटेगरी होती है ना दिमाग में कुदरती तौर पे, कभी सोचिएगा इस बारे में। इस तरह जब मेरे साथ जब जो रेगुलर कॉलर्स आते हैं ना, तो वो उनको ना वो कुदरती तौर पे मुझे पता होता है कि ये आए हैं तो इन्होंने कोई ना कोई शिकवा करना है, ये आए हैं तो इन्होंने कोई ना कोई शुगल वाली बात करनी है, ये आई हैं तो इन्होंने कोई ना कोई खाने पीने की बातें करनी है, और ये आई हैं तो इन्होंने सिर्फ आके ना मुझसे सवाल ही करने हैं, अपनी कोई नहीं राज की बात बताते, मेरी बातें पूछते हैं। तो जनाब आयशा आपसे स्टार्ट करते हैं, आपकी कॉल आई, बड़ा अच्छा लगा। आप ऐसी कॉलर हैं जिसको मैंने confuse.com अपने दिमाग में ना मुझे कंफ्यूज करके जाती हैं आप कभी आती हैं हंसा के जाती हैं। अच्छा मुझे पता होता है कि अब आप आई हैं तो कोई ना कोई शुगल होगा, या कोई ना कोई लड़ाई होगी, या कोई ना कोई आप कंफ्यूज करके जाएंगी, या किसी ना किसी सवाल को छोड़ के जाती हैं आप, तो बड़ा ही चैलेंजिंग आपका होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग कैटेगरी। तो आज आपने शायरी बड़ी मेहनत से आप सुनाती हैं, बनाती हैं, पहले उसको लिखती हैं खुद, फिर मुझे सुनाती हैं। आज आपकी शायरी में हम इस कदर खो गए कि जनाब ब्रेक मुक गई और जनाब चंद चढ़ गया। इंसान हूँ ना, क्या करूँ, इंसान खता का पुतला है। तो आप कोई AI या रोबोट तो कोई इस वक्त आपके लिए शो पेश नहीं कर रहा, ऑटोमेशन तो है नहीं है, ये जीता जागता एक इंसान है, बादाम कितने भी खा लूँ लेकिन फिर भी इंसान तो इंसान है ना भाई साहब। अच्छा वो आई और आज मैंने उनसे पूछा, इतनी प्यारी उन्होंने 3 गज़लें सुनाई, तो मैंने कहा अच्छा आज आपका इनाम बनता है आप कोई गाना बताएं जो मैं प्ले करूं आपके लिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आपके दिल की कोई बात बताएं जिस पे ना मैं कोई गाना सुनाऊं, आपके दिल में कौन सा गाना है। दोनों ने कहा कि हमारा दिल तो काशिफ, हमारा दिल, यही जुमला था आपका। अब वो हंस रही, उनको पता है काशिफ बात करेगा, तो उन्होंने कहा काशिफ हमारा दिल तो पाटा हुआ है। हमारे दिल को छोड़ो, तुम अपने दिल की बात करो, वो गाना लगाओ जो तुम्हारे दिल में है। मैंने कहा जी हमारा दिल तो बच्चा है, वो किड वाला बच्चा नहीं, मतलब बच्चा बचा के रखा हुआ है, अभी तक हमारा दिल बच्चा हुआ है जी, तो हमारा दिल पाटा नहीं अभी बचा हुआ है। तो आयशा जी आप उम्मीद है कि हंस रही होंगी और अपने माथे पे आपने हाथ यकीनन रखा होगा कि किस पागल को, किस सीधे साधे को क्या बात मैंने बता दी। अच्छा इसके बाद हमारे साथ एक और कैटेगरी होती है जिसको हम फनी कैटेगरी कहते हैं और उन्होंने हमेशा हमारा साथ निभाया। मैं बात कर रहा हूँ सामिया की। सामिया से हमारी क्या बात हुई आज वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले जनाब जिस जिसका दिल अभी तक पाटा नहीं और बचा हुआ है, आपने हिफाजत से रखा है, बचा बचा के रखा है, तो बाकी सबको बताने के लिए कि जी हमारा दिल अभी बचा हुआ है। इस पे नजर ना रखें, इसको बचा हुआ रहने दें।
1: दांत से रेशमी डोर कटती
0: और आपके नाम भी जनाब, क्योंकि आपके सीने में भी एक दिल है।
1: उम्र का
0: बच्चा है या नहीं,
1: कैसे
0: दिल तो है ना।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 2:45, और हमारे साथ रही कशिश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही फिल्मी सा नाम आपका, और आप हंस रही थी और हमें शक हुआ कि आपने ऐसे ही हमारी फिरकी ली है, लेकिन आपका असल नाम है या फिल्मी नाम है, जो भी है जनाब, आपकी बातें बड़ी पुरकशिश थी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप पुराने गाने पसंद करती हैं, तो जनाब जितना पुराना मैं सोच सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए जो जितने भी आज क्लासिक हिट ऑफ द आवर में फ्लैशबैक के गीत लगेंगे, वो सब तीनों आवर्स में आपके नाम होंगे। और आप, मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही हंसते हंसते आया करें, मुस्कुराते हुए, ऐसे ही ना वो गिगलिंग करते हुए आप अच्छी लगी मुझे। आपकी आवाज़ में एक पॉजिटिविटी थी, एक एनर्जी थी, तो सच में आप होप कि आप आखिरी बार हमें कॉल नहीं कर रही, पहली बार हो, और आपको खुश करने के लिए, जैसे आप खुश खुश आई ना और हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी दे के चली गई, तो अब हम आपको खुश करने के लिए जनाब पुराने जितना मेरे से मुमकिन होगा वो तीनों आवर्स में मैं गीत लगाऊंगा जो फ्लैशबैक के, वो आपके नाम होंगे, ठीक है ना? क्या याद करेंगे आप, तो सुनिएगा ये गाना तो ख़ास तौर पे आपके लिए होगा। हमने गाना कोई और लगाना था लेकिन चेंज कर दिया, हमने सामिया का गाना लगाना था जो मेला देखने जा रही थी, तो वो हमने फ्लैशबैक पे अबरारुल हक का गाना, बड़ा पुराना गाना था, आपको याद होगा, अज मेला वेखण आई कुड़ियां लोर दियां, तो वो हमने चूज किया था, लेकिन सामिया का दिल भाई साहब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और वो हमारा साथ खूब निभाती हैं, और इसी बहाने से हम चाहते थे कि सामिया का नाम 3-4 बार रिपीट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जाना है जनाब मिडिल्सब्रो में कोई मेला है, तो उन्होंने कहा हम जाने वाले हैं बस मेला देखने के लिए, तो उन्होंने खास तौर पर कहा था कि अबरारुल हक का कोई भी गाना लगाओ, तो फिर हम तो हम है ना जनाब, बादाम हमारे खाए हुए हमारे काम आ जाते हैं, तो अबरारुल हक का गाना हमारे जहन में फटक करके आया, अजमेला वेखण आईयां कुड़ियां लोर दियां, ते जनाब उस तो पहले असी गाना लावांगे कशिश ताडे वास्ते, ये साडी तरफों तोहफा होएगा, क्योंकि तुसी पहली बारी कॉल की है सानू, तो फिर तोहफा तो बनता है ना, तो फिर दस्यो सानू बाद कॉल करके जे ये तोहफा थानू पसंद आया।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ, ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ, उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you?

तोहफा जनाब आपके लिए लाया और आपको अच्छा लगा। कशिश आपकी कॉल आई दोबारा, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि ये आपका मोस्ट फेवरेट गीत था और बिल्कुल जनाब, तोहफे का तो नाम है, असल तो बात मोहब्बत का पैगाम है जो हम यहाँ पे लेके आते हैं आपके लिए। जनाब मुझे कहते हैं काशिफ। अब जनाब थोड़ा सा चलते हैं मिडिल्सब्रो की तरफ। मिडिल्सब्रो में है सामिया। इससे पहले कि वो मेले की तरफ निकल जाए हमें छोड़ के, कोई बात नहीं सामिया, हम आपके लिए आते हैं यहां और आप मेले पे, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा लगता है जनाब आपके ख्यालात जान के, आपकी बातें, आपको मैंने फनी वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। बड़ी मस्ती करती हैं, बड़ी ही मस्ती करती हैं, हंसमुख हैं। रब आपको इसी तरह हंसमुख, खुश मिजाज, पॉजिटिव रखे। और आज मेला वेखण जाएगी सामिया। सामिया आप बाखों, आपके पेरेंट्स लाहौर से तो नहीं है, ये नहीं बताया कभी, आप तो ब्रिटिश बोर्न है मुझे पता है, आज बताइएगा। बोला जनाब आप बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा मेले को लेके हम भी बड़े एक्साइटेड होते थे जब हम छोटे थे, अभी थोड़े से बड़े हो गए, इतने बड़े भी नहीं हुए। आपको याद है आपकी फेवरेट मेले में हम जाते थे, या मेले के बगैर भी फेवरेट आपकी नंबर वन चॉकलेट कौन सी थी, मुझे जरूर बताइएगा कॉल करके। बचपन में सबसे फेवरेट चॉकलेट और सबसे फेवरेट टॉफी नंबर वन पे, उसका नाम बताएं। और सबसे फेवरेट नंबर वन वाले बिस्किट, बड़ी मुश्किल से मैंने उन बिस्किट्स का नाम जुबान रोक के रखी है, उन्हें हम नाम नहीं ले सकते हैं, पब्लिसिटी हो जाएगी। आए खाए खाए खाए खाए, याद है ना बचपन वाले वो जो बिस्किट, वो जो पैकेट, शाइनी पैकेट, उसको देख के आंखों में चमक आ जाती थी। और वो टॉफी का रैपर जरूर बताइएगा अगर आज भी आपको याद है वो टॉफी। और चॉकलेट आपकी नंबर वन कौन सी होती थी, बस वो ही चॉकलेट खानी है हमने और कोई नहीं। गोरे मुख नू लशका के, कम नू जरा चाके,

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जनाब, Sunrise Radio के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है दिन के 3:05।

जनाब मैं हूं आपका अपना, सिर्फ आपका और किसी का नहीं, कसमें जनाब आपका अपना काशी वाप के लिए यहां पे मौजूद। हर संडे आपकी और हमारी मुलाकात होती है, सावन आए या ना आए, आपको हमारी याद सताए या ना सताए, हम आपको याद करते हैं हर पल, पर आपको किसी वजह से चींके आए या ना आए, क्या करें क्या ना करें, ठंडा पानी पी पी के आपका काशिफ जा मरे, क्या करे क्या ना करे। जनाब ऐसी ही बातें आती हैं हमें टूटी फूटी, बिल्कुल ऐसी वैसी। और आजकल दुनिया में सियाने बड़े हैं, हमें सियानी बातें नहीं आती हैं। आजकल दुनिया में अच्छे बड़े हैं, हमें अच्छा नहीं बनना। आजकल दुनिया में सलीके वाले बड़े हैं, हमें सलीके वाला नहीं बनना। आजकल दुनिया में पढ़े लिखे बड़े हैं और उनमें एक अनपढ़ आपका काशिफ, हकीर फकीर। दुनिया में शो ऑफ पड़ी है, दिखावा बड़ा है, हमें नहीं करना दिखावा। जाओ जो करना है कर लो, हमें कोई नहीं शोक जनाब। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल आई बड़ा अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम कॉलर। और जनाब आपने कहा आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं, दिल को लगती हैं, और जो आगाज किया हमने इस आवर का, ये आपके दिल की बातें जो आपने हमारे लिए कही, ये महेश भाई के ख्यालात थे हमारे लिए। महेश भाई उम्मीद है आइंदा भी आप हमें ऐसे ही हवा में लेके उड़ जाएंगे। कसम से आप हमारे साथ ही ऐसे बातें करते हैं या और भी लोगों को उनकी पैरों तले से जमीन खींचने का काम आपको, हुनर आपको आता है। हम ऐसे ही बदनाम हैं, असल फन तो आपके पास है हजूर, बातों का लेके उड़ गए जनाब महेश भाई। हमें कहते हैं जनाब एक सेकंड के लिए भी आपका शो मिस नहीं कर पा रहा हूं, सारे काम दौड़ धूप मसरूफ भी हूं, लेकिन एडिक्शन सी होगी आपको सुनना छोड़ नहीं पा रहा, पता नहीं लगता कि अगले पल में आप क्या कह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए। अरिजीत सिंह के आप बहुत बड़े फैन हैं और हमें हवा में ऐसे ही ले लेके उड़ रहे हैं कि जनाब आपकी क्या बात है, आपकी बातें आए हाय, आपका अंदाज कमाल। और एंड में जब आपने कहा कि आप फैन हैं अरिजीत सिंह के, बेड़ा ही गर्क कर दिया आपने। चलें कोई बात नहीं, हम भी फैन हैं जनाब अरिजीत सिंह के भी, आपके भी, सबसे पहले आपके जनाब। और खूबसूरत सा गीत आपके लिए, और जनाब बहुत सारा उधार बाकी है, क्या करूं। आप कह रहे होंगे गाना नहीं लगा रहा, जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे कभी आप बैठे होते ना तो आपके 14 नहीं 28 तबक रोशन हो जाते हजूर। बड़ी जिम्मेवारियां हैं, बड़े बंदों के साथ पूरियां डालनियां हैं, पूरी पानियां जनाब इत्थे बह के खाला जी दकार कोई नहीं जे कसम। आयशा जी दोबारा आप आई और आपने आते जात ही हम पे चढ़ाई कर दी, बच्चा देख के जनाब हर कोई चढ़ाई करता है, आप क्यों पीछे रहेंगे, कर लें कर लें भाई। काशिफ जैसे सीधे साधे बंदे पे जोर अगर आप नहीं चलाएंगी तो किस पे चलाएंगी। आप अपना शौक पूरा करें, तुझी अपना रंजा राजी रखो, साड़ी खैर है, साड़ा की है, संत आदत होगी जनाब जड़ा आंदा चढ़ाई करता है। एनीवेज आयशा जी तारीफ उस रब की जिसने आपको बनाया, और आपके दिमाग के अंदर इतनी सारी खराफात बनाई, कमाल है। खराफात जो दिमाग में होती है ना उसके लिए एक चाहिए होता है दिमाग, और दिमाग का चलना बड़ा जरूरी है।
आपका दिमाग चलता है जनाब 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, मैं नहीं पूरी डाल सकता उसके साथ। मीन टाइम आपने कहा धूम धड़क्के वाला गाना लगाओगे या फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूं लिस्टर पार्क में आके। ये लिस्टर पार्क में क्यों, मतलब आपने धमकी लगाई? मैं लिस्टर पार्क में तो नहीं रहता। आपको जो खबरें देते हैं ना उनको बोले खबरें सही दे, या आपने उनको जो खबरी अपना चेंज करें, आपका खबरी ठीक नहीं है जो आपने मेरे पीछे लगाया। एनीवेज, आयशा जी के बाद है सोनिया। सोनिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको हमने जिस कैटेगरी में रखा है ना, आप हैं जनाब वफादार कॉलर। यानी कि आप कोई शो ऐसा नहीं होता, मैं शो में आता हूं तो आपका जो स्क्रीन पे नाम आता है, आप टाइम पास नहीं है जनाब, बिल्कुल कहना पड़ेगा। कभी आए कभी नहीं आए, कभी साथ दिया कभी नहीं दिया, टाइम मिला कॉल की, कॉल मिले ना मिले और गिव अप कर गए, ना जी ना, सोनिया गिव अप नहीं करती हैं। सोनिया डट जाती हैं जब तक बात ना हो, फिर बात होती है, फिर बाद में से बात निकालती हैं, फिर मेरी हर बात का जवाब देती हैं और मेरे साथ साथ रहती हैं शो, पूरे शो में 3 से 4 बार उनकी कॉल आती है और बड़े मजे की कॉल होती है। और सोनिया ने आज बनाए हैं गोश्त और करेले। भाई साहब तुसी सड़ना है तो सड़ो, क्योंकि उन्होंने बनाए ने गोश्त करेले, और कहती हैं फिर सेपरेट भी करेले बनाए हैं एक्स्ट्रा। अब इसकी साइंस मुझे समझ नहीं आती है, गोश्त करेले तो बनाए आपने, एक्स्ट्रा करेले साथ क्यों बनाए? की करा ते की ना करा। यूसुफ भाई साहब आप अभी रिटायर नहीं हुए हैं जनाब, हमारे कागजों में आप कहते हैं आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सरकार आपकी बातें, आपकी बातों की मस्तियां, आपके बातों में एनर्जी, वो रिटायर नहीं हुई है। और आपके बातों में जो हमारे लिए एक पॉजिटिव जज्बा है, जो प्यार मोहब्बत है, वो भी रिटायर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई करने के लिए। सरकार कहते हैं बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको कॉल मिलाते हैं हमेशा, कभी बात होती है कभी नहीं होती है। तो जनाब मौसम आज ऐसा है, दिल करता है कि सावन, बारिश खुल के बरसे। गर्मी बहुत सारी रही पिछले चंद वीक से, बारिश का नामो निशान नहीं था, आज थोड़ी थोड़ी कुछ कनियां पड़ी हैं, कड़ियां कहते हैं ना पंजाबी च, थोड़ी थोड़ी कड़ियां पईयां ने, ते दिल करदा के अज खुल के सावन वरसे, एडा वरसे मोहब्बत वरसा देना तू सावन ना के पूछो ही ना। अभी हमारे प्यार का सावन आप पे खुल के बरस रहा है।

0: आप तो दीवाना कर गए, पागल कर गए, चल्ला कर गए, आगे हम दीवाने पागल चले हैं। और नवीद शहजाद भाई, बड़े ही मुद्दतों बाद, जमानों बाद और बड़े ही अरसे के बाद कमाल किया आपने, दमाल किया, हमारी जान का वबाल किया आपने, बहुत ही अच्छा काम किया, अपनी प्यारी सी आवाज सुनवाई और आपका खूबसूरत सा चेहरा, आपकी तस्वीर हमारी आंखों में जनाब, इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसी की वैसी, कमाल है जनाब। हमें नहीं पता था कि आपकी तस्वीर अभी भी हमारी आंखों में बिल्कुल वैसी ही होगी, और कभी कभी वक्त आजमाइश लेता है आपकी, इतने जमानों बाद आपको बताता है कि कोई आपके लिए कितना खास और कितना प्यारा सालों पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो बड़ा अच्छा लगा नवीद शहजाद भाई, आने वाला गीत आपकी और हमारी एक खूबसूरत सी एक जर्नी रही, हमने इकट्ठे एक जगह पे काम किया और जनाब बहुत ही अच्छे इखलाक के बंदे आप, और आप जैसे बंदों के लिए जनाब अल्फाज कम पड़ जाते हैं। ढेर सारी दुआएं आपने ली, हमें भी दी, मेरा दिल आपने आज गार्डन गार्डन कर दिया, सच में दिन बना दिया आपने। और कुछ कॉलर्स आते हैं ना तो वो कॉल नहीं होती है, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे रब की तरफ से कोई तोहफा मिला है मुझे, सच में। और आपकी कॉल, आपकी आवाज़, आपसे गुफ्तगू मेरे लिए आज के दिन का बेस्ट तोहफा रहा, और दुआओं में आप हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। आबद भाई भी हैं, होते हैं हमारे, रफीक भाई भी दुआओं में होते हैं, और सारी जितनी भी हमारी बहनें भाई हम इकट्ठे वहाँ पे एक जगह पे बहुत सालों पहले, वो आजमाइश के दिन थे हमारे भी, आपको याद होगा, और हम भी सीख रहे थे ज़िंदगी की राह में कैसे कदम उठाते हैं, उसमें आपने हमारा साथ दिया, आबद भाई ने, रफीक भाई ने, हमारी सारी बहनें वहाँ पे, भाई सारे मिल के जनाब हम एक जगह पे बहुत सारी यादें हैं, खाते थे, पीते थे, उठते बैठते थे, और बड़ी इत्तफाक मोहब्बत का वो टाइम था, और वो टाइम याद रहेगा हमेशा मुझे ज़िंदगी में। वो इंसान ही नहीं जो अपनी आजमाइश के दिन, अपनी वो कड़े दिन जो मुश्किल दिन होते हैं, और जो लोग उस मुश्किल में आपके साथ होते थे, उस टाइम को जो लोग भूल जाते हैं, अपनी हकीकत को, अपनी असलियत को, या अपने वो स्टार्टिंग पॉइंट को, वो जो जर्नी है ज़िंदगी की, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको जो लोग भूल जाते हैं ना, मैं कहता हूँ वो इंसान ही नहीं होते हैं। तो आप जितने भी अमीर कबीर और पैसे वाले बन जाएं ज़िंदगी की दौड़ में, कितने भी आगे निकल जाएं दूसरों से, कामयाब हो जाएं, असल कामयाबी आपकी अपनी जड़ों को ना भूलना, और अपने उन लोगों को ना भूलना जो लोग कड़े दिनों में, मुश्किल के दिनों में, आजमाइश के दिनों में आपसे प्यार मोहब्बत से, मीठे बोलों के साथ मुस्कुरा के बोलते थे। और आज आपके पास शायद पैसा हो, कामयाबियां हो, आज सब लोग आपसे बेशक मुस्कुरा के बोलें, आपको बाहें खोल के गले से लगाएं, लेकिन वो लोग, असल लोग वही थे जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आजमाइश के दिनों में आपके लिए बाहें खोल के रखते थे, आपको गले से लगाते थे, आपसे मुस्कुरा के बात करते थे, वो लोग डायमंड हैं। आय हाय हाय, उनके लिए कुछ ना बोलूं और तो भी काफ़ी है, उनके लिए बहुत कुछ भी बोलूं तो भी ना काफ़ी है। ये था सब कुछ हमारे उन दोस्तों के नाम, और ख़ास तौर पे नवीद शहजाद भाई के नाम, जो हमें इमोशनल कर गए जनाब। और खूबसूरत गीत, ये गीत मेरे भाई, मेरे उन दोस्तों के नाम, मेरे उन प्यारों के नाम, जो मुझे आज बड़े याद आए हमारे इस दोस्त की बातें सुन के, या आपको भी याद आएंगे जो बातें मैंने की, कि जो ज़िंदगी की राह में चलते चलते जनाब आपसे बिछड़ तो गए, लेकिन फिर भी आपकी यादों में, आपकी दुआओं में उनकी जगह हमेशा रही और रहेगी। तो ये गीत ज़रूर सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ और बहुत कुछ बल्कि याद आएगा।
1: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: तेरी गलियां गलियां
5: गलियां गलियां कुमीत
4: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
4: चाचा केड़ा चाचा?
5: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
5: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
6: क्लास इट्स बीन रिपोर्टेड दैट इफ वी कीप यूजिंग वाटर लाइक वी are now. By 2055, we could be short by 5 billion liters a day.
7: Hold on, miss. 2055, we'll be grown up by

जी फातिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और आपने आपने कहा जी आप बारबेक्यू कर रही हैं। जी बारबेक्यू, ओ खुदा दा वास्ता, जब हमने ये कहा तो हंसी। नितिन जनाब घर के अंदर बारबेक्यू कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं और गार्डन में बैठ के खाएंगे, हमें पता है सेफ्टी का। जनाब जितने भी लोग कोई बारबेक्यू का प्लान करते हैं, खुदा का वास्ता है हमें बिल्कुल खतरे में ना डालिएगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके लिए मैसेज यही है कि बारबेक्यू वगैरह और जो भी आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ है ना वो ना करिएगा। और बाकी फातिमा ने हमें यकीन दिलाया, हमारे तो पैरों थले से ज़मीन निकल गई जब उन्होंने बारबेक्यू का नाम लिया कि बारबेक्यू कर रहे हैं। तो फिर वो बहुत हंसी और कहती है नहीं नहीं नहीं, घर के अंदर तैयार कर रहे हैं काशिफ, हमें पता है सेफ्टी, लेकिन गार्डन में बैठ के हम उसको एंजॉय करेंगे। और हमारे गार्डन में बिल्कुल वो जब बारिश भी आती है ना तो हमारे आगे वो सिस्टम है कि हमारे बारिश भी नहीं पड़ती है। तो बड़ा खूबसूरत सा आपका गार्डन है, आपने जो नक्शा खींचा है, आप इंजॉय करें जनाब अपने गार्डन में जो भी आपका प्लान है, लेकिन हमें खतरे में ना डालिएगा हम सबको प्लीज़। बाहर बारबेक्यू जो भी आउटडोर करने का सोच रहे हैं, खुदा का वास्ता है कि ये ना करिएगा बिल्कुल। और घर के अंदर आप ग्रिल वगैरह करें जैसे फातिमा कर रही हैं।

0: है। और फातिमा आपने कहा जी कोई भी रोमांटिक गाना लगाएं, हम इंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी जनाब हमें सुनती है, लेकिन आपने पहली बार कॉल की और हमें इनवाइट भी किया आपने कि आप आ जाएं जी। बिल्कुल हम ज़रूर पहुंचेंगे जनाब शो के बाद आपकी दुआओं में, ठीक है ना। आप खाएं और रब आपके रिजक में ढेर सारा इजाफा करे, बरकत डाले। सभी सुनने वाले जो काम काज पे हैं या फातिमा जी की तरह जनाब आज आप अपनी फैमिली के साथ कोई स्पेशल कुकिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं या खा पी रहे हैं घर में या किसी आउटडोर एक्टिविटीज़ में हैं, तो जनाब ज़रूर आप इंजॉय करें, रब आपके रिजक में इजाफा करे, आमीन। लेकिन आउटडोर बारबेक्यू नहीं करना तुसी, प्लीज़ गार्डन दे विच भी खुदा दा वास्ता, जे बार बार वास्ते पा रहे हैं मैं तुहानू अपने वास्ते नहीं, मैं सारियां दे वास्ते पा रहे हैं तुहानू वास्ते कि जनाब आप अपनी गली महल्ले अपने नेबर्स अपने शहर का और बाकी लोगों का ख्याल जब करते हैं ना तो रब आपका भी ख्याल करता है। तो इसलिए जनाब दूसरों के लिए आसानियाँ मैं हमेशा पैगाम देता हूँ, तो इसलिए आजकल सेफ्टी रीजंस की वजह से प्लीज़ कोई भी आउटडोर जो है ना इस तरह का ग्रिल का या कुकिंग का कोई भी बारबेक्यू का प्रोग्राम वो अभी ना करें। तो ये एक पैगाम फातिमा आपकी वजह से हमें देना पड़ा सबको, और ये बहाने बहाने से गपशप होती है, आप सबको भी इसका वो अजर मिलता है क्योंकि आप वजह हैं, आपने जो कॉल की और अपनी जो बातें हमसे शेयर की कि आप कहाँ कैसे हमें सुन रही हैं, तो जनाब आप को भी इस अच्छे काम का कार्य खैर का जो हमने पैगाम दिया तो उसमें आपका भी हिस्सा बनता है। बाकी जनाब हमें यकीन है कि आप बारबेक्यू या ग्रिल जो भी आप कर रही हैं अपनी कुकिंग वो इंडोर कर रही हैं, पक्की बात है ना।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
5: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
0: जनाब आयशा जी ने नाराज़गी का इजहार किया, हमने उनका नाम तो लिया लेकिन उन्होंने छोटी सी कॉल की, उन्होंने कहा जी सबका नाम ले दिया मेरा नाम नहीं लिया। तो मैंने कहा जनाब आप रेडियो को बंद करके दोबारा से आप रीस्टार्ट करें, अगर ऐप पे सुन रही हैं गूगल पे सुन रही हैं या जैसे भी, तो फिर आप मिस नहीं करेंगे, हमने आपका नाम लिया था इसलिए लड़ाई डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपका लड़ाई का मूड है तो जनाब हम जेंटलमैन सो आप जोर जमाई कर सकती हैं, लड़ाई कर सकती हैं, हम सी भी नहीं करेंगे, उफ भी नहीं करेंगे, हाय भी नहीं डालेंगे। बिल्कुल जनाब, और ये खूबसूरत से गीत आशा आपके लिए भी और फातिमा आपके लिए जो इस वक्त अपना खाना पीना इंजॉय कर रही हैं लेकिन रोमांटिक गीत सुनना चाहती थी, तो ये गीत खास तौर पे आपके लिए। मीन टाइम हमारे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूं आपने ऐसे ग्रिल श्रिल किया हुआ है, खुशबुएं उठ रही हैं, चिकन है या जो भी है, काशिफ बाज आ जा।
6: जब तेरे पास मैं आया
0: 01274306666 के जरिए सनराइज रेडियो पे आपका काशिफ आपके पास आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है, बस मेरी आवाज दस्तक दे रही है आपके दिल पे।

जी जनाब अमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आप कहते हैं कल एक शादी पे हमने आपको याद किया, आपके कुछ दोस्त बैठे हुए थे और वहाँ कुछ बातें हुई और हमारा जिक्र भी आया। बहुत शुक्रिया जनाब आपके दोस्तों का जिन्होंने हमें अच्छे अल्फाज में याद किया और हमने उनको बताया कि मुझे कल फलां टाइम पे बड़े चींकें आई थी, तो इस टाइम पे तो नहीं आप शादी पे थे और हमें याद किया, तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल तकरीबन यही टाइम था। बहरहाल जनाब अच्छे अल्फाज में आपने हमें याद किया वहां पे और आपके दोस्तों ने हमारी बात हुई, वो भी हमें सुनते हैं, याद करते हैं और तारीफ रब की जनाब जिसने आपको इतना अच्छा बनाया, आपके दोस्तों को बल्कि आप सबको जो हमें कभी ना कभी याद करते हैं। बहरहाल हमारा बुरा हाल हो जाता है छींके मार मार के। अच्छा जनाब नाम नहीं लेंगे उनका, उन्होंने पहली कॉल आज शो में की थी क्योंकि उन्होंने नाम लेने से मना किया था, उनको पता है वो कौन है, तो इसलिए मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। हाय हूँ मैंने याद आया कि जनाब ये तो ज्यादती है ना, तो जनाब जिन्होंने हमें नाम लेने से मना किया, जिनका नाम हमें पता है लेकिन वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो रब के सिवा भी बाकी लोगों से डरते हैं, दुनिया वालों से, दुनिया वालों का उनको डर होता है, हम तो नहीं डरते हैं भाई दुनिया वालों से। मैं हमेशा कहता हूं हमारे अब्बा जी ने हमें एक ही बात सिखाई थी बचपन में, यार काशिफ लोगों को लू के डरना, और लोग महीने का राशन पा के देंदे ने सानू। तो ये मेरी बात बड़ी मशहूर हो चुकी है मेरे दोस्तों में, मेरे जानने वालों में, क्योंकि अक्सर मैं फिट करता हूँ ये जो अब्बा जी का मुहावरा था ना, बिल्कुल उनके छोटे छोटे जो मुहावरे हैं ना वो मेरी जिंदगी में बड़े काम आते हैं। और इस बात में बड़ी गहराई है जो मेरी इससे उम्र में बड़े हैं, सियाने हैं, जिन्होंने जिंदगी की दौड़ में हमसे बहुत आगे का सफर तय कर चुके हैं, उनको हमारी अब्बा जी की बात की गहराई समझ आई होगी कि क्यों काशिफ के काम ये काम वाली बात आती है और इस तरह की और बातें क्यों हम बुजुर्ग किया करते थे। छोटे छोटे वन लाइनर होता था लेकिन उसमें पूरी जिंदगी की वो एक ना गाइडेंस होती थी कि भाई साहब लोग तो महीने का राशन पा के देंगे ने, महीने का राशन तो तुम आपे कमाते हो ना जनाब मेहनत कर करके, लोग तो नहीं तुम्हें बिल देंगे महीने के पे करते, या आपकी ग्रोसरी की बिल वो तो नहीं देते हैं ना, तो फिर लोगों की क्यों परवाह करते हो, लोग ऐ कहे तो वह कहे, लोग ऐ सोचे, रब का सोचा करो। कसम से मेरा दिल आज टोटे टोटे हो गया जब आपने कहा ना काशिव मेरा नाम ना लेना, किरची किरची टोटे तो रहन दो ना, टोटे तो जब दिल होता है तो बंदा टोटे गिन सकता है, इस काशिव बेचारे का दिल आज आपने किरची किरची कर दिया, गिन भी नहीं सकता इतनी किरचियां की आपने। मेरा गाना आपके नाम, गुस्से से आपकी बात से मेरा दिल टोटे टोटे हुआ है। आप भी डरते हैं रब के सिवा लोगों से कि लोग ये सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोचते हैं ना।

0: जनाब टोटे टोटे हो गया हमारा दिल आपकी बात सुन के आसम भाई जान। कहते हैं जनाब मैं आपको इस वक्त कॉल पता कहाँ से कर रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से? कहते हैं बाथरूम से। मैंने कहा वो क्यों भाई जान? कहते हैं जनाब 4 दिन पहले आपकी भाभी ने, मैं वॉशरूम में नहाने के लिए गया तो आपकी भाभी ने बाहर से आवाज लगाई जल्दी बाहर निकले, मुझे कुछ आपसे बात करनी है आपके मोबाइल के बारे में। कहते हैं 4 दिन हो गए हैं मैं डर के मारे नहा ही रहा हूं, अभी तक बाहर नहीं निकल रहा।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: जनाब सनराइज रेडियो में टाइम हो चुका है 3:46 और आसम भाई आप डरे नहीं और मुझे नहीं लगता कि आपके मोबाइल में कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है। आप अच्छे खासे बातों से तो शरीफ लगते हैं और कि मुझे नहीं लगता कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसा वैसा मिलेगा हमारी भाभी को, तो आप बाहर निकल आए। ये ना हो कि आप जनाब नहा नहा के बिल्कुल ही वो साबुन की चक्की की तरह बिल्कुल आप खुर जाएं और घिस जाएं और हमें बिल्कुल आप देखने को मिले ही नहीं। तो घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझे कॉल कीजिएगा, एक अदद चारपाई का बंदोबस्त हम आपके लिए कर देंगे।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं
4: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपकी कॉल था और आपने गिला किया, शिकवा किया। आपका शिकवा गिला बिल्कुल जायज है भाई। गिला शिकवा अपनों के साथ होता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि आप सिर्फ आके तारीफें करें, हमारी मीठी मीठी बातें करें। आप गिले शिकवे भी कर सकते हैं। तो आपने शिकवा किया कि जनाब आप पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने या पाकिस्तानी सॉन्ग्स नहीं लगाते हैं। जनाब जब कोई आएगा आके हमें ये दिखाएगा या फरमाइश डालेगा तो फिर हमें पता लगेगा ना कि जनाब किस तरह की लिसनरशिप है या किस तरह के सुनने वाले का मजाज क्या है, आज आपका दिल क्या है, क्या सुनने को। तो जब जब आप हमें कॉल्स करेंगे, बॉलीवुड के सॉन्ग्स हों, लॉलीवुड के हों, हिंदी हों, पाकिस्तानी गाने हों, जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आएंगी हम वैसे वैसे अपने सिस्टम को आपके मजाज के मुताबिक ऑपरेट करते जाएंगे, उसको डाल देंगे आपके मजाज के बिल्कुल मुताबिक। आपको तस्वीर हवा पे बखेर के दिखा देंगे कि ये आपके मजाज और आपके दिल की अक्कासी है हमारी बातों में, हमारे गीतों में। ठीक हो गया भाई साहब? देखिए कितने पढ़े लिखे तरीके से मुझ जैसे अनपढ़ जाहिल बंदे ने भी आपको बात समझा दी। तो गल ही कोई नहीं जनाब, तुसा क्या कि जनाब उर्दू या पाकिस्तानी यही कहा ना आपने, जनाब आ गया गाना, ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए। और जनाब हमें बर्मिंघम वालों ने कहा कि जी एक मेरी बाबी यानी उनकी बाबी और एक आप जदू भी टिकटाकान करने हैं ते तुसा ना स्टेटस ते स्टोरी लगी होनी है।
1: हम साथ थे
0: हाय
1: जिसे
0: ये चंगा लगा पता कि तुसा कोई ता टिकटॉक मारी तकना ना ये गीत बर्मिंघम वालों आपकी सादगी के नाम। उमर भाई आप

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जनाब सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 4:06। जनाब गला खुश हो गया आपसे बातें करते करते, की करिए, पानी भी स्टूडियो में नहीं ला सकते क्योंकि हमारा जो सिस्टम होता है ना वो हर जगह की एक वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे या जहाँ पे भी ज़मीन पे जैसे भी, तो वो दस्तरखान के भी एक आदाब होते हैं। आप इज्जत देते हैं खाने को, आप आदाब के साथ खाना खाते हैं। इसी तरह जब हम स्टूडियो में आते हैं तो एक कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है, तो इसलिए हम पानी स्टूडियो के बाहर छोड़ के आते हैं। तो जब आपसे गपशप लगती है, कुछ ज़्यादा कॉल्स आती हैं, तो आपको तो लगता है कि खाली ओनियर ही बातें करता है काशिफ, और वो भी इतनी, लेकिन ओ फिर इससे दो गुना बल्कि तीन गुना ज़्यादा बातें होती हैं। और कभी कभी एंड टाइम पे जब हमें बोलना होता है तो हमारा गला खुश्क हो चुका होता है और पानी पड़ा होता है स्टूडियो के बाहर। तो अभी थोड़ा सा आपने नज़ारा चेक किया खुश्क गले का। हमारी बेचैन सी खंग में, मतलब के गला। जनाब आप कहता है कि हुन बस कर दे, तो इसलिए जनाब आप बस होने वाली है हमारी, लेकिन इससे पहले कि हम ये बस वाली बस पकड़ें, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, गपशप होगी आप दोस्तों के साथ। जनाब हमें बड़ी प्यारी बात किसी ने कही और उनको लगा कि हम उनकी बातों में आ जाएंगे। बातों से तो सादे लगते हैं ना। उन्होंने कहा कि काशिफ, मनपसंद शख्स में खुदा ने बड़ी शफा रखी है। मैंने कहा ठीक हो गया जनाब। कहते मनपसंद शख्स में खुदा ने बड़ी शफा रखी है, सिर्फ कुछ देर उससे बात करने से सारी उदासी दूर हो जाती है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहते हैं लेकिन आपको पता है हमारे वो मनपसंद शख्स आप हैं। हाय, आपको लगा हम आपकी बातों में आ गए, आपने हमें शीशे में उतार लिया। ले ये खाली आपको गलत फहमी नहीं, ये आधे ब्रेडफ्रूट को गलत फहमी है कि आपने काशिफ को शीशे में उतारा हुआ है। यही तो कमाल है काशिफ का। आपको लगता है कि मैं आपकी बातों में आया हुआ हूं, लेकिन हर बात के अंदर एक बात होती है और उस बात के अंदर एक और बात होती है, असल में वही सारी बात होती है, वो वाली बात। लेकिन जनाब आप ऐसे ही एवे चस्के ना लगाएं, हमें शीशे में ना उतारें, हम पहले ही उतरे हुए हैं। आपको ये सारी खेड मनपसंद शख्स और ये सारे टाइटल देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी कहेंगे हम आपकी बातों में आने को तैयार बैठे हैं, बगैर छुरी के जनाब हलाल होने को तैयार बैठे हैं आपके हाथों।

0: हमने कुछ दोस्तों से वादा किया था कि पुराना गाना लगाएंगे, उन्होंने कुछ गाने बताए थे। यूसुफ भाई, किसी मीना को जानते हैं आप?
1: अरे कहाँ है तेरा ठिकाना?
0: बिल्कुल जी, आप बताइएगा आपका ठिकाना कहाँ है। हीरा ने बताया उनका ठिकाना है गुजरात में। बहुत बहुत शुक्रिया हीरा। और आपने आपने कहा काशिफ आप टिकटॉक पे जवाब भी नहीं देते हैं, हम इतने आपको वहां पे मैसेजेस करते हैं। तो मैंने कहा जनाब मुझे क्या पता कि आप हैं हीरा, ढेर सारे मैसेजेस आते हैं वहां पे, तो हमें पता होगा ना। कहते हैं हमने आपको इतने मैसेज किए, पता नहीं आइस कॉफी के बारे में आपने लास्ट शो में बात की थी, तो उसके बारे में हमने आपको बताया कि आइस कॉफी तो गुजरात में भी मिलती है, आप कैसे वलायत में रहते हैं कि आपके वलायत में आपने अभी तक आइस कॉफी नहीं पी है। मैंने कहा आपने पिछले वीक की बातें हमारे दिल पे ले ली, कमाल है भाई, हमें तो ये याद नहीं रहेगा कि हमने पिछले आवर में आपसे क्या बातें की। बहरहाल जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: बंदे हैं
0: तो ये गाना आपके नाम भी होगा, और जरूर आपके गुजरात में अगर आइस कॉफी मिलती है तो इंग्लैंड वालों ने तो आइस कॉफी हमें कोई नहीं पिलाई किसी ने। मिसेस शर्मा ने भी बस दावत ही दी थी, मुड़ के आज उन्होंने कॉल ही नहीं की ताकि हमें पता लगता कि उन्होंने दिल से कॉल की थी आइस कॉफी की। उन्होंने हमें दावत दी थी कि आए आपको आइस कॉफी पिलाएंगे फलां जगह पे, लेकिन जरूर गुजरात में आएंगे तो हम जरूर आइस कॉफी वहां से पियेंगे। लेकिन यूसुफ भाई आपने दो गाने बताए थे जिस दौर के, उस दौर के हमें गाने वो नहीं मिले, लेकिन ये गाना आपको जरूर कुछ हलचल मचाएगा, आपके दिल की रफ्तार बढ़ाएगा। मतलूब भाई ये गाना आपके लिए भी है।

0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: नफसेन ज़ायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300
3: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
4: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6pm to 8pm. And Sunday 13th September, 3pm to 5pm. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
5: जनाब आप जाने का टाइम आस पास है, आपकी जान छूट जाएगी हमसे और जो उदास हो रहे हैं हमारे जुदाई के टाइम से उनके लिए कहेंगे कि जनाब आप कमाल हैं।

और मतलूब कालिया जी हैं, कोई कालिया या कारिया, कालिया है मेरे ख्याल में, तो उनके लिए ना गाना होगा और नवीद भाई के लिए होगा और उसके अलावा आसम भाई के लिए होगा, ख़ास तौर में ओल्डम में, ब्लैकबर में, रॉचडेल में, जनाब इन तीनों वादियों में जनाब वो घूम रहे होते हैं। हिरा आपके लिए, गुजरात वालों आपके लिए ख़ास तौर पे, और टिकटॉक पे आपको जवाब देंगे लाजमी जनाब। आइस कॉफ़ी भी तो गुजरात की पीनी है ना आखिर। यूके वालों का क्या भरोसा, मौसम की तरह 3 W's बड़े मशहूर हैं यूके वालों के लिए, वर्क वेदर एंड आहो, तो इसलिए हम गुजरात वालों पे भरोसा करेंगे, वो उनकी आइस कॉफी जरूर ट्राई करेंगे। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि शायद यूके से कोई कॉल आ जाए। मीन टाइम आयशा एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करूंगा मैं ज़रूर, लेकिन पहले आपको बताएंगे हलीमा हमारे साथ रहीं, साथ साथ रहती हैं हमेशा। हलीमा जिंदगी एक आजमाइश का है, कभी कभी हम दूसरों को देखते हैं, सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी खामी, जस्ट रिमेंबर दैट हलीमा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड माई उर्दू, बिकॉज यू ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश एंड आई एम श्योर योर उर्दू इज रियली गुड बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द सॉन्ग्स, सो एज फार एज आई नो दैट यू डू अंडरस्टैंड वट एवर आई एम सेइंग इन माई शो, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑलवेज हेयर विद मी इन माई शोज, यू ऑलवेज रिंग मी फ्यू टाइम्स, सो जस्ट रिमेंबर दैट इन द लाइफ Never ever compare your life with others. That's the biggest mistake we do in our life when we compare ourselves with others. कि बाकी सबके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। बाकी सब की जिंदगी आसान है देखने में, मेरी जिंदगी मुश्किल क्यों है? बाकी सब इस टेस्ट से, इस तरह से मुश्किल में नहीं गुजर रहे, मैं क्यों गुजर रही हूँ?

सोशल मीडिया और या टिकटॉक की ये चंद मोमेंट्स की वो जो वीडियोस में आप देखते हैं ना, लोग बड़े खुश खुर्रम हैं, दिखावा करते हैं, मैं भी करता हूं, सिर्फ आपको खुश करने के लिए हम वीडियोस लगाते हैं टिकटॉक पे, और वो भी टाइम मिलता है तो लगा देते हैं, या शेड्यूल वीडियोस में कर देता हूँ पूरे पूरे हफ्ते की, वो खुद ब खुद लगती रहती हैं। अगर आपको नहीं बताया टिकटॉक का इस्तेमाल करने का, तो आप एडवांस में, आप बैठे यूके में हों तो पाकिस्तान की वीडियोज़, आप पाकिस्तान बैठे हों तो सऊदीया की वीडियोज़, अपनी पास्ट की मेमोरीज, आप जिम में बैठे हों तो घर की वीडियो, घर में बैठे हों तो जिम की वीडियोज, ट्रैवल की वीडियोज, हॉलीडेज की वीडियोज, आप काम पे होंगे, दिहाड़ी लगा रहे होंगे, वीडियोज आप हॉलीडेज की लगा रहे होंगे, लग रही होंगी खुद ब खुद। तो ये सारा कुछ आजकल ऑटोमेशन पे होता है, अगर आपको नहीं पता तो ये सब दिखावा होता है आप दूसरों की, क्योंकि आजकल मैं सोशल मीडिया की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग और उनकी जिंदगियां आजकल इन्फ्लुएंस्ड हैं सोशल मीडिया से, वो देखते हैं अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, या मेरी वीडियोस जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, या दूसरे जिन लोगों को फॉलो करते हैं अपने प्यारों को, वो आप देखते हैं उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट्स, तो वो उनके वो जिंदगी के बेस्ट मोमेंट्स वो शेयर करते हैं आपके साथ। पता है आपको, डे टू डे की मेरी जिंदगी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। अब मैं हर टाइम हर वक्त 24 घंटे में क्या करता हूँ, किस आजमाइश से गुजरता हूँ, अगर वो भी मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँ ना रियलिटी, या बाकी सब भी अपनी जिंदगियां शेयर करें रियल एवरी सेकंड, तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और कहेंगे कि हम बहुत बेहतर हैं काशिफ से और बाकी सब लोगों से। तो इसलिए आप जनाब सोशल मीडिया से जो दिखावे की दुनिया है उससे इन्फ्लुएंस्ड मत हों और कंपेयर मत करें मेरी लाइफ के साथ या बाकी लोगों की लाइफ के साथ। प्लीज, सब लोग किसी ना किसी आजमाइश में है, दिखाता कोई कोई है, ठीक है। मेरी जिंदगी में भी आजमाइशें होंगी बहुत सारी, आपको लगे पता तो आप कहें कि ओह हिम्मत है काशिफ की, रब ने इसको क्या कमाल हिम्मत दी हुई है, कैसे काशिफ मैनेज करता है, हाउ इज इट पॉसिबल। इसी तरह बाकी सब लोग भी अगर रियलिटी हकीकत दिखाएं, पर्दा हटाएं, तो आपको आप कहेंगे कि हम सजदे से नहीं उठे रब के बारगाह में इतना शुक्र अदा करें कि हम तो बहुत बेहतर जगह पे हैं, रब ने हमें बड़ी अच्छी जगह पे और कम आजमाइश डाली है। हलीमा, ये मैं आपके लिए बातें कर रहा हूं, आपकी आंखों से निकले हुए आंसू, आपने अपना समझ के जो मुझसे बातें करती हैं, ये कोई अपना ही अपनों के साथ बिना कोई रख रखाव, बिना कोई दिखावा, कोई अपना समझ के बात शेयर करता है, और मैंने ये आपको बहाना रख के इससे पता नहीं कितनी मेरी सुनने वाली बहनें, कितनी माएं, कितने भाई, कितने दोस्त, कितने बुजुर्ग, कितने छोटे, कितने जेंजी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इस बात से अगर सुन रहे होंगे तो वो हिम्मत पकड़ेंगे और हकीकत को, रियलिटी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे दूसरों को, ये दिखावा और शो ऑफ का पर्दा हटा के आप देखेंगे ना, तो आप सजदे से नहीं उठेंगे, कहीं कहीं दिन, कहीं कहीं घंटे, कहीं कहीं मिनट तक आप सजदे में गिरे रहेंगे रब के बारगाह में, आप थैंकफुल हो जाएंगे, ग्रेटिट्यूड आप में आएगा, आप हम्बल हो जाएंगे। सो नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ और योर लाइव्स विद अदर्स, ठीक है ना, ट्रस्ट मी अलीमा, और यही बात आप सबके लिए भी होगी। ये बहुत बड़ी बात मैंने की है, जो समझने वाले हैं, जिन्होंने जिंदगी को करीब से देखा है, वो इस मेरी बात की कीमत समझेंगे कि ये बात, इसकी कोई कीमत नहीं अदा कर सकता कोई बंदा, ये अनमोल बात है। लोग आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ दे देंगे, पैसा भी दे देंगे, लेकिन कोई काम की बात जिससे आपकी जिंदगियां बन सकें, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कम हो, आपकी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड शामिल हो, हम्बल हो, आप थैंकफुल हो जाएं, आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी आ जाए, ये बहुत कम लोग आपको बातें बताएंगे। मेरी इस बात को आप जिंदगी में अपने पल्ले से बांध लें, फिर देखें मोजे मोजे आपकी। मीन टाइम जनाब, आपके लिए इसलिए इतना रगड़ा खाते हैं, अपने दिमाग को रगड़ दे के आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए बातें करते हैं, क्योंकि आप पत्थर की तरह एक लकीर बन के
हमारे दिलों

दिमाग में जनाब बस चुके हैं। आप हमारे जिंदगी में एक प्यार की कहानी है, दुआ है, आस है, उम्मीद है, दुआओं का जरिया है, वसीला है, हमें लगता है।

0: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
5: तो जनाब, गड़ियान पहुंची, अब जुदाइयों की वच्छोड़ों की आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की गड़ियान पहुंची। आंटी दीपा जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप कहीं पे आज अब घर से बाहर हैं, किसी के घर पे मेहमान बन के गई हैं किसी जगह पे, और फिर भी आप कहती हैं मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारी कोई बात मिस ना हो। किसी ना किसी तरह मैनेज कर रही हूँ, तुम्हें सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आयशा, आपने खुदा हाफिज कहने के लिए कॉल की, कहा सुना माफ करने की गुजारिश की। आपका हुक्म, गुजारिश नहीं। आप हमेशा, मैंने कहा ना, दिल से बात करती हैं, कोई फेक बनावट नहीं होती। ये आपका कमाल है, रब आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। हमने कभी किसी की बात का बुरा माना ही नहीं। यहाँ पे आपको एंटरटेन करने आते हैं, आपका दिल बहलाने आते हैं। आपके दिल के बोझ सुन के हल्का करने आते हैं। आपकी बहुत सारी सोचें और स्ट्रेस, उसको आपसे बहुत दूर, मीलों दूर भगाने आते हैं। आपके दिल में जगह बनाने आते हैं, और आपकी दुआओं में कोशिश करते हैं कि आपकी दुआओं में भी जगह मिल जाए, तो बड़ी बात है। बाकी सब कुछ रब का करम है। जनाब, हमेशा कहता हूं जाने से पहले एक बात कि सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस भी अंदाज में, जिस भी तरह से मैनेज किया, टाइम निकाला, मुझे कॉल्स की, मेरा हौसला बढ़ाया, रब आपको आपकी नियत के मुताबिक 10 गुना ज्यादा उसका फल दे, इनाम दे, अजर दे। किसी की हौसला अफजाई करना, कोई मेरी तरह डिजर्व ना भी करता हो इज्जत, मान, हौसला, मैं कहां डिजर्व करता, फिर भी उसको हौसला देना, ये आपका बड़ापन है। उसको इज्जत देना जैसे आपने मुझे इज्जत दी, कॉल्स करके या कॉल किए बगैर मेरी तरफ अपना ध्यान रखा, मुझे सुनते रहे, मेरी टूटी फूटी बातों को बर्दाश्त करते रहे, ये भी बड़ी बात है। तो रब आपको इसका 10 गुना ज्यादा अजर दे। और मैंने जिस नीयत और जिस अंदाज के साथ दिल लगा के, वो नीयत मेरा रब जानता है, आपको एंटरटेन करने की जिस नीयत के साथ यहाँ पे आके कोशिश की, मेरा रब उसका मुझे मेरी नीयत के मुताबिक अजर दे, आमीन। और एक और बात कहता हूं, कोशिश कीजिएगा कि दूसरों की जिंदगी में आपकी वजह से मुस्कुराहटें आए, किसी की आंख में आंसू ना आए, आपकी वजह से। कोशिश कीजिएगा, मैं भी खुद कोशिश करता हूं। ये मेरा एक चैलेंज होता है, हर बार मैं शो के एंड में चैलेंज करता हूँ, गारंटी दे के जाता हूँ, सिर्फ इस एक बात की, खुल्लम खुला सरेआम सबके सामने, कोई आजकल गारंटी नहीं देता है, इस बात की गारंटी है कि आप दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करने की कोशिश करें, वसीला बने आसानियों का। अपने पड़ोसी, अपने मोहल्लेदार, अपने रिश्तेदार, अपने खून के रिश्ते, अपने दोस्त अहबाब, अपने जानने वाले, अपने कोलीग्स, अजनबी राह चलते किसी को रास्ता देना, बेजबान परिंदों को जानवरों को खाना देना, पानी पिलाना इस गर्मी में किसी को, परिंदों को जानवरों को इंसानों को किसी प्यासे को, किसी भी प्यासे को पानी पिलाने का कोई अच्छा काम, कोई आसानी पैदा करना, किसी भूखे को खाना खिलाना या उसका वसीला बनना, उसके रिजक का देने वाला तो रब है, किसी की जिंदगी में आसानी पैदा करना, कोई मजबूर, कोई रिश्तेदार, कोई आपका अपना मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, आप मजे में हैं, रब पे आपका बड़ा करम है और आप फिर भी उस करम पे बस बैठे हैं, उस करम को बांटने की कोशिश करें, बांटने वालों में रब भी बांटने वाला है, ये रब की खूबी है, वो बांटने वाला है, देने वाला है। अगर रब ने आपको अपनी उस खूबी में शामिल किया और आपको इतना दिया है कि आप देने वालों में शामिल हो सकते हैं, बांटने वालों में शामिल हो सकते हैं, तो आसानियां बांटें, किसी भी तरह से माली इमोशनल खैर बांटें, शर ना बांटें, तकलीफ ना बांटें, दुख ना बांटें, दूसरों की जिंदगी में स्ट्रेस का सबब ना बने, दूसरों की जिंदगी में मुश्किलात की खड़ा करने की वजह मत बने, आसानियां बांटे। मेरा चैलेंज, मेरी गारंटी, रब मौजज़े दिखाएगा आपको आपकी जिंदगी में, रब आसानियां पैदा करेगा वहां वहां से जहां से आपने सोचा भी नहीं, आपकी जिंदगी में, आपके अपनों की जिंदगी में वो आसानियां पैदा करेगा, आपको मौजज़े दिखाएगा, सिर्फ आप कोशिश करें दूसरों की जिंदगी में आसानियां पैदा करने का वसीला बने, वजह बने। बस जनाब यही गुजारिश है, दिल से गुजारिश है, कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं होती है, रब जानता है। मेरा रब आपको आसानियां बांटने की तौफीक दे, आप कोशिश करके देखिएगा मेरी तरह। तो लीजिए जनाब, आपकी जान छूटने का वक्त आ गया, यानी कि घड़ी आन पहुंची जुदाइयों की, वछोड़ों की, आपसे दूर जाके आपके बिल्कुल पास, आपके दिल में, आपकी दुआओं में रहने की घड़ी आन पहुंची। अपनी यादों, बातों और चाहतों में, और सबसे बढ़ के हजूर जनाब अपनी दुआओं में, बिल्कुल अपनी दुआओं में मुझे काशिफ को, अपने काशिफ को जरूर याद रखिएगा। अगली मुलाकात बशर्ते जिंदगानी, बशर्ते सेहत, आपके साथ एक बार फिर से होगी। जी जनाब, नेक्स्ट हफ्ते, तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा। चलता हूं अब मैं, जाऊं चले, आपका और मेरा, मेरा और आपका।

0: जुतियां भी कसी गई पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: फ्री कोर्सेज एट शिपली कॉलेज। Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446। Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026, three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org. or www.guruma.com.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043

0: hottest sounds. Let's go.
1: On Sunrise Radio.
2: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
3: Salam and namaste. Salam and namaste.
4: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा हुआ
5: है खान।
6: हम शरीफ क्या हुए
7: मैं वापस
6: पूरी दुनिया ही बदमाश
7: देखो मैं हूँ कहाँ
0: खान।

0: Assalamu alaikum and namaste. Sayyidul Kush Ahmedid. Welcome to Sunrise Radio 103.2 FM. और यहाँ मैं हाजिर हूँ, परवेज खान मेरा नाम है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्तों बाबे अजीज हैं. एंड टुडे इज अमेजिंग डे एज यू नो टुडे संडे इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल एंड योर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड 100.6 FM अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अकिंटन, मिल्टन कीन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है. वेरी वेरी सून वी गोइंग टू बी लॉन्चिंग इन डर्बी इन मिडलैंड में एंड वेरी वेरी वेरी वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग इन लंदन एंड वी गोना बी देयर नियर यू एंड होल ऑफ द एरिया ऑफ इन लंदन. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. आई एम ईगली वेटिंग एंड सो आर यू एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सनराइज अप ऑन एप्पल प्ले स्टोर एंड गूगल प्ले store on www.sunriseradio.fm www.sunrise.radio. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. mujhe umeed hai yakeen hai ki aap sab khairiyat se honge, theek thaak honge, first class honge aur apni zindagi ko enjoy karne wale honge aur kar chuke honge aur karne wale honge. aur wahi baat ho rahi hai, zindagi khoobsurat hai. it's all depend on you aur kaise aapko dekhne ko milti hai aur kaisi aapki soch hai. soch ko acha rakhe, soch acha kare aur वही बात हो रही है. और कीप ए लॉकडाउन, कीप ए लॉकडाउन विद परवेज़ खान ऑन सुनर रेडियो 103.2 एफएम. और बहुत बहुत शुक्रिया. और आज सबसे पहले कॉल आ रही है, हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. मनीष साहब चक्की वाले सोने तो मनमोनियो, ओ की हाल चाल है? ठीक है, से ठीक है? किधर फिर रहे हो और किधर जा रहे हो? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. सुहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ देने. थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं. वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. और यहाँ पे लाइनें चमक रही हैं, दमक रही हैं. एंड थैंक यू वेरी मच आप सबका भी. वाजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर. आई होप यू कैन एंजॉय द ट्रैक एज वेल. और जो मुझे फ्लश करने वाले हैं, कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका भी. अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए नंबर वही है 01274306 पे. ये ना हो कि देर हो जाए. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अतिका साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सिमी जी हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पे मेला हो रहा है, और मेला हो रहा है यहाँ पे सुन रहे रेडियो में, और सुन रहे रेडियो में मेला हो रहा है कि आप सब आ रहे हैं. नदीम मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप ही हमें फ्लश कर रहे हैं. और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. और आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ. ममनून ऑल द होमोस्ट लिसनर्स, नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वेल. एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून. एंजॉय
1: सनराइज रेडियो. Hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: Right, and that was the hit of the hour. और आपने enjoy किया और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Well, right, the time in the studio is 16 minutes past the 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the power of Iskan. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का लाने यहाँ पे चमक रही हैं, दमक रही हैं. गिदन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सुमित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी. आप आए बाहर आ गई है, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. हमारा साथ दे रहे हमारे रुखसार भाई हैं, वन एंड ओनली वन चौधरी रुखसार भाई. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने, याली मदद, पीर मौलाली मदद, और क्या कहने. बहुत बहुत शुक्रिया. और आपने मुझे फोन किया और माशाल्लाह फ्लश किया है और 5 दफा, माशाल्लाह क्या कहने. दिस इज व्हाट यू कॉल अ ब्यूटीफुल, माशाल्लाह. और हमें अच्छा लगा. वाजिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आप ही हमारा साथ हैं. थैंक यू वेरी मच. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे और ब्रेक के फौरन बाद आई विल मेंशन यू ऑल योर नेम्स, और आप सबके लिए गीत भी होंगे और खूबसूरत गीत आप सबके लिए होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन जो मुझे फोन कर रहे हैं और अफजाई कर रहे हैं. और चौधरी फ़रियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं और हम आपके लिए दुआ गो हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का. नौशीन जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा. शाहपरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके लिए गीत होगा और आपकी तरफ से चौधरी फ़रियाज़ साहब के लिए होगा. और आपने काफ़ी गिले शिकवे कर रहे हैं और चौधरी फ़रियाज़ साहब को पैगाम दे रहे हैं कहाँ पे हैं और क्या कहने जी, क्या कहने. और उनके लिए हम दुआ गो हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आपको भी दुख हो रहा है, मिलाल हो रहा है कि हमारे भाई कहाँ चले. शुएब भाई काफ़ी दिनों के बाद आपने हमें याद करें, अल्लाह खैर ही करे. और अजय शुएब भाई वो भी आ गए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गई है, बहुत ही अच्छा लगा. और यहाँ पर हम छोटे से ब्रेक करेंगे. ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर यू अमेजिंग गीत होंगे, आप सब दोस्तों के लिए गीत होंगे और जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं और करने वाले हैं, कर चुके हैं, उन सब के लिए गीत होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे
2: Like we are now. By 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops. And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
6: it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू लिसनर रेडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाला गीत मैं पेश करूंगा रजत शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी तरफ से होगा, चौधरी फरियाज साहब के लिए होगा और उनकी पूरी टीम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें याद किया और आपने हॉलीडे को इन्जॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और आपने हॉलीडे इन्जॉय किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, कहते हमने कोई प्रोग्राम को मिस नहीं किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत आपके लिए होगा और यही गीत मैं पेश करूंगा। और गिदन भाई हैं हमारे, पवित्र स्मिता जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, थैंक यू वेरी मच गिदन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया। चौधरी रुखार भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका, और थैंक यू वेरी मच, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑलवेज। वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अतिका साहब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम सुहेल भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। चौधरी मनीष साहब चक्की वाले हैं, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद यकीन का, और सबके लिए फर्द फर्द गीत होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा, मुझे उम्मीद यकीन का आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और विद द हेल नंबर बहुत बहुत शुक्रिया, और नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, और आपने पैगाम दिया है हमारे चौधरी फरियाज साहब को, और बहुत बहुत शुक्रिया, वो जब आएंगे उनको हम पैगाम देंगे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा साथ दें। नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला, फ़ोन किया, हौसला अफजाई किया, और हमारा देखो आपकी आवाज़, देखो आपकी, अभी मैंने मेंशन किया आपका नाम, तो हमारे चौधरी फरियाज साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चौधरी फरियाज साहब, मैं काश मैं यहाँ पे, मैं आवा के दोष में भी आपको लेके जाऊं, और आपके लिए गिल्ला भी हुआ, शिकवा भी है, क्या करें यहाँ पे आपके लिए। और रजत शुएब साहब ने गिल्ला किया, शिकवा किया, उन्हें कहा कि यार क्या वजह है, हमारे भाई को क्या हुआ, कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कहाँ चले, वो आ गए जी आ गए। और ये गीत आप दोस्तों के लिए,

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

0: Wow, that was a wonderful tune, one of my favorite tune. Bob, shukriya aap sabhi doston jo bhi mere behan bhai hain, khati dost mein baba aziz hain, chori chori chupke chupke listen, bob shukriya aapka bhi. Aur yahan mein chori se break karenge, break ke foran baad aane wala geet hoga aur wo geet main pesh karunga thodi der ke baad, aur aapko mention name karunga. Bob shukriya ke aap hamara saath de rahe hain aur bade dinon ke baad ye main gana pesh kar raha hu aur thodi der ke baad gana hoga aur bada hi khoobsurat geet hoga, bada hi pyara, bada hi nayab geet, one of my favorite tune है. और वाजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने सब दोस्तों के लिए गाना सुनने की फरमाइश की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आज की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच कि आपका भी नाम लूंगा, आपके दोस्तों के नाम लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सलाम पेश किया है. तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. और जो मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त अहबाब हैं, जिन्होंने आज बारबेक्यू किया है, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे अच्छा लगा कि आपने भी हमें भी दावत दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी. मैं एक पार्टी छोड़ के आया हूँ आप सब दोस्तों के लिए, बिलीव करें कि आपके लिए मैं छोड़ के आऊँ, और एक बहुत बड़ा सा एक शो हो रहा है, और माशाल्लाह क्या कहने, और बहुत अच्छा लगा. सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, उनके साथ मुलाकात करके मुझे अच्छा लगा. और ये आप दोस्तों का प्यार है, मोहब्बत, चाहत, खलूस है कि आप हमेशा हमें इन्वाइट करते हैं और जरा अफजाई करते हैं. और यस्टरडेज़ वेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू. और जो आने वाले दिन हैं वहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फ़ौरन बाद गीत आने वाला है, और वो खूबसूरत गीत होगा आप दोस्तों के लिए होगा. और मुदस्सर के अनुसार बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमारा साथ देने, थैंक यू वेरी मच. आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, आपके दोस्तों के नाम होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमोश लिसनर्स, नो फॉरगेटिंग, चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स, कीप इट लॉक्ड.
1: ऋषि's Vision presents आनंद उत्सव with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है, और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है. यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात, और मजीद इलाकों में बहुत जल्द. हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043.
0: Right, welcome back, listener. And moving on to the track that which I'm going to play for Wajib Bhai. आपकी तरफ से गीत होगा, सब सुनने वालों के लिए होगा, और आपके दोस्त अहबाब अजीज हैं उनके लिए गीत होगा. मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो एंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं.

बहुत बहुत शुक्रिया आने वाला गीत आपके लिए गया, और यही गीत मैं पेश करूंगा। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए गया और आपकी पूरी टीम के गया, स्पेशली हमारे चौधरी फ्रियाज साहब के लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन के वो इन्जॉय करेंगे। नशीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी तरफ से गीत आने वाला है, और अतिका साहब ये गीत आपके लिए होगा, उनकी तरफ से होगा, नशीन साहब की तरफ से होगा, और उनकी फरमाइश पर यह गीत है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और अतिका साहब ये गीत आपके लिए, और गिदन भाई और सुमित्रा जी उनके आपने सलाम पेश किया है, और नशीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आने वाला गीत आपके लिए। सिमी जी को आपने सलाम पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं चौधरी फरियाज साहब, उनको सलाम पेश कर लें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यह आने वाला गीत आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे। और आपने खासूस सलाम पेश किया है हमारे चौधरी रुखसार भाई को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और मैं अच्छा लगा, और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे, और यही गीत मैं पेश करूँगा, मैं नीलिश चक्की वाला सोने दो मनमोनियो, ये गीत आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। नदीम मंसूर साहब हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा, और यही गीत मैं पेश करूँगा। यासमिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। और यही गीत मैं पेश करूंगा, हमारे मोहतरम हैं मदसर कियानी साहब हैं, आपके लिए होगा और आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे, और आने वाला गीत आपकी तरफ से आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे और आपके दोस्त भी इन्जॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और ये गीत स्पेशली आप दोस्तों के लिए, आपने काम करना है, दिल लगा के काम करना है, हरकत नाल बरकत होनी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल कयूम फ्राइजिंग और से गीत आपके लिए होगा, आई होप यू कैन एंजॉय द वंडरफुल ट्यून एज वेल, बहुत खूबसूरत गीत है, इस गीत को आपने इंजॉय करना है, और ऑल दोज लिसनर जो हमारा साथ दे रहे हैं, ये गीत आपके लिए, एंजॉय द ट्रैक।

Wow, that was a beautiful attack. One of my all-time favorite गीत आपने सुना है और enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए था और आपने enjoy किया. फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया, थैंक यू वेरी मच. और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं और मुझे माशाल्लाह मेरे हेडफोन में मुझे आवाज़ आ रही है क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पर बंद करना है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर UK में ब्रेडफोन में और अजान का टाइम होने वाला है. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ हम अजान सुनेंगे. मगरबी अजान अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल देख के सुन के आपने नमाज अदा करेंगे. मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी है, स्पेशली हमारे जो मोहतरम बीमार हैं उनके लिए खसूस दुआ करनी. वाजिद भाई हमारे बीमार हैं, मोहम्मद हनीफ साहब वो बीमार हैं लीज में, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए खसूस दुआ करनी है. और हमारे पापी जान हैं वो बीमार हैं, यानी कि हमारी जो मिसिज़ हैं उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो बीमार हैं और उनके लिए दुआ करनी है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और जो हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं और उनकी जो मिसिज़ हैं हमारी पापी जान हैं उनके लिए खसूस दुआ करनी है. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और यहाँ भी हमने अजान पेश करनी है. खेप लगती है सुन रेडियो.

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी हैं, दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, जज़ाकअल्लाह खैर कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आप सब दोस्तों के लिए यहाँ पे टाइम चेक करूँगा और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और थैंक यू वंस अगेन टू ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स। आप हमारे सब अपने हैं, हमारी फैमिलीज हैं माशाल्लाह, और हमें अच्छा लग रहा है। और एक मनोरंजन का प्रोग्राम है, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, आप इसमें प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक।
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: My time in the studio is 44 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown and keep a lockdown with the Parviz Khan. यहाँ पे निक्की जी ब्रेक, छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी। ब्रेक के फौरन बाद I'm going to be playing for you a flashback गीत होगा, और बहुत ही खूबसूरत गीत होगा, आप सब दोस्तों के लिए होगा, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त बाबा अजीज हैं, उनके लिए गीत होगा। स्पेशली हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं जो हम आज पार्टी वगैरह कर रहे हैं, उनके खसूस उनके लिए गीत होगा। And if you're driving, and drive with a care. If you're out and about, make sure stick around with the Sunrise Radio. And if you're doing a barbecue, I believe it's going to be raining any minute now, and probably already raining. You never know as well, because कि आपको पता है मौसम चेंज होने वाला है, और चेंज हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डेफिनेटली बारिश तो होने वाली है। और आई होप यू हैव अ फंटास्टिक डे, ठीक है ना। आपको बारबेक्यू को उसको रब करें, उसको बंद कर दें, ठीक है, क्योंकि बारिश आने वाली है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। And did you enjoy the barbecue, by the way? Did you enjoy the fun today? Did you enjoy that one? Anyway, I will definitely play for you the track that I wanted to play, and for all the beautiful listeners. Aur yahan pe nikki ji break hogi, keep it locked.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: Looking for a quality home to rent?
4: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62, or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust. Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
5: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard?

मैं वोज इब्राहिम अल हक और उनसे मुलाकात आज हुई है और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमारा साथ दे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और थैंक यू वेरी मच। मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच। और सुहेल भाई ये गीत आपके लिए भी होगा, वाजिब भाई ये गीत आपके लिए, मनीष साहब चक्की वाले आपके लिए भी होगा, सुहेल भाई और नोट फॉरगेटिंग अतिका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, चौधरी रुखसार भाई, गिदन भाई और हमारे पापी जान सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और चौधरी रुखसार भाई, चौधरी फरियाज साहब और नदीम मंसूर साहब और नोट फॉरगेटिंग सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सिमी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच कि आपने, राजा शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, राना नवीर साहब आपका शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं आपका हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आने वाला गीत आप सब दोस्तों के लिए होगा और नशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपकी पूरी टीम के लिए, वाजिद भाई आपने हमें याद किया, आपने सब सुनने वाले को सलाम पेश किया है, तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम आपने सब सुनने वालों के लिए, जो भी मेरे बहन भाई साथी दोस्त बाबा अजीज़ हैं जो रेगुलर आते हैं आ रहे हैं उनके लिए आपने गाने की रिक्वेस्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने सलाम भी पेश किया है और आपने सब सुनने वाले को सलाम पेश किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो गीत मैं पेश कर रहा हूँ बड़े दिनों के बाद, मैं गाना पेश कर रहा हूँ बड़े हफ्तों के बाद, बड़े महीनों के बाद है, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत मौसम था तो आज जो ना मैंने सोचा क्यों ना ये गीत होना चाहिए, क्योंकि मुझे खबर मिली है बारिश हो रही है, हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है और बारिश का मौसम हो और ये गीत ना हो, आए हाय हाय सदके जावा कुर्बान जावा, और ये वो गीत है, एंजॉय द ट्रैक।

0: right, and that was the hit of the hour. आपने enjoy किया and one of my favorite tune. और बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब दोस्तों का जो गाना को पसंद करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunrise Radio clock, it's 10 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the power of Vizcon. यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा आपसे लेके 11 o'clock तक. बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारा साथ दे रहे हैं और कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं.

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे हम प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं, हमारा साथ दे रहे हैं अतिका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह, कैसी तबीयत? ठीक ठाक? ठीक है आपकी?
1: बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र है, और ये हमारी तरफ से आपके लिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का शुक्र, करम है, करम
1: इंशाल्लाह हमेशा करम ही अल्लाह पाक रखे सब।
0: आमीन आमीन सुम आमीन।
1: और पता भी चल रहा है कि आप बड़ी खुशगवार मूड में
0: हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब आ रहे हैं, आप सब दोस्तों शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं आपका कि आप मुझे कीमती वक्त दे रहे हैं माशाल्लाह। और जब आप अपने हैं और अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए, यहां पे एक रौनक है माशाल्लाह, एक बैठक है, और यहां पे बैठ के हम एक दूसरे के साथ हम कलाम हो रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है और एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है।
1: ये तो है, मैं यही तो कह रही हूँ कि इसलिए ये इतनी हसीन नगमे जो लगाए हैं आपने
0: जी जी,
1: तो इससे पता चलता है कि मौसम कितना हसीन है और
0: मौसम नौजवान है, मौसम हसीन है, क्या कहते
1: हैं। ये महफिल भी इसीलिए फिर हसीन रहती है क्योंकि इसका आगाज ही इतना हसीन नगमे से होता है।
0: वाह जी वाह, क्या कहते हैं,
1: बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप सॉन्ग सुनाते हैं
0: जी,
1: और ये सब आपकी वजह से।
0: थैंक यू जाकिरा खैर, बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपका, बहुत शुक्रिया
0: आपका, शुक्रिया सुनने वालों का शुक्रिया अदा करना की आपकी सुनाते अच्छी हैं, तो आप खुद अच्छे हैं तो हमें अच्छा कह रहे हैं माशाल्लाह जी।
1: बहुत शुक्रिया आपका, सबको सलाम करते हैं
0: जी जी।
1: इस रंगे महफिल के जितने चांद और सितारे हैं सबको सलाम अर्ज है।
0: वालेकुम सलाम।
1: और ये हमारी सखी सहेलियां हैं, मित्रा जी हैं
0: जी जी,
1: और रेखा जी हैं, और गिदर भाई हैं, रीना जी हैं, आसिया जी हैं, रुसाना अफजल जी हैं
0: जी जी,
1: चौधरी फरियाद जी हैं, सितारा जी हैं
0: जी जी,
1: चौधरी फरियाद साहब आएंगे इंशाल्लाह।
0: उन्होंने हमें फोन किया माशाल्लाह, और बहुत अच्छी गपशप हुई है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पाकिस्तान से याद कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, और हम उनके लिए गिला शिकवा भी कर रहे हैं कि वो गैर हाजिर थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर इंटरनेट जो है ना कनेक्शन उन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए उन्होंने गैर हाजिरी हुई है, और पूरे हफ्ते के लिए हमने इंतज़ार किया आज के दिन के लिए जी
1: जी। वो उनको अल्लाह पाक से मुसी रखे, और वो बस उनके लिए दुआएं हैं, उनकी फैमिली के लिए बहुत
0: जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी जी, जी।
1: वो आएंगे और खूब अच्छी खूबसूरत अपनी पोएट्री सुनाएंगे
0: जी,
1: हमेशा की तरह
0: जी।
1: नदीम मंसूर साहब हैं
0: जी,
1: वो भी आके माइये
0: टपे, वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। वाह
1: अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा कि वो तैयार हो रहे हैं
0: जी जी।
1: तो पापा जी हैं
0: जी
1: हैं, उनकी खूबसूरत पोएट्री होती है, बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह वो जब भी आते हैं
0: और महफिल को लूट के चले जाते हैं, और वो आज
1: सारी महफिल
0: लूट के चले जाते हैं, और वो उनकी खूबसूरती है, वो एक बार से इंसान है माशाल्लाह, क्या कहेंगे। वाह जी वाह,
1: उनकी एक बात की भी बहुत अच्छी आती है, एक दिन उन्होंने कहा था क्या मैं लुटेरा हूँ
0: क्या मैं लुटेरा हूँ। वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने, ये उनके साथ एक बहुत प्यारा है माशाल्लाह, एक बहुत प्यारा रिश्ता है हमारा साथ उनके साथ है, और किसी की नजर न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए,
1: हमेशा उनको सलामत रखे।
0: आमीन,
1: बहुत बहुत सलाम। अब्दुल कयूम साहब हैं, उनको बहुत बहुत सलाम, खूबसूरत पोएट्री और नगमे सुनाते हैं
0: जी,
1: और इंशाल्लाह वो भी आएंगे
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: कियानी साहब हैं, सजाद साहब हैं, वाजिद भाई हैं, एफ ए रहमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, उनकी भी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। नबीद राना साहब हैं, तारिक भट्ट साहब हैं, शुक्रान भाई हैं, एहसान भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब हैं, राव अजहर हुसैन साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और राना नबीद साहब ड्राइव कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और किसी जर्नी में हैं, और अल्लाह पाक उनको जहाँ पे जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको खैर खरी से लेके जाएँ और खैर खरी से वापस लेके आए
1: जी। आमीन आमीन
0: जी।
1: तो 14 अगस्त थी, और फिर दूसरे दिन इंडिया के 15 अगस्त
0: जी।
1: तो थोड़ा सा दो तीन लाइनें हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं,
0: जी जी
1: आप इजाजत दें तो।
0: जी जी जी अरशाद, जी जी अरशाद,
1: लाइनें हम पढ़ेंगे तो उसके बाद शायरी
0: जी।
1: हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, दुनिया के दाव पेच से रखना नवास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना नवास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
0: बहुत खूबसूरत,
1: मुझे ये लाइनें बहुत पसंद है।
0: बहुत खूबसूरत, वाह क्या कहने, वाह,
1: इसलिए मैंने पढ़ी।
0: बहुत ही खूबसूरत और कमाल कर दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने खूबसूरत अल्फाज यूज किए हैं और उस खूबसूरत हमारी मिट्टी के लिए, और क्या कहने जी, क्या कहने जी,
1: बहुत ही खूबसूरत हमारी देश की मिट्टी है,
0: माशाल्लाह। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने,
1: कहते हैं ये शायरी है सबके नाम करेंगे
0: जी जी।
1: जब कभी सावन की बूंदें रिमझिम बरसाती होंगी,
0: वाह,
1: तेरे दिल में मेरी याद की बूंदें आग लगाती
0: होंगी, वाह क्या कहने,
1: यादें माजी के परिंदे जब पर तोलते होंगे,
0: वाह,
1: बंद कमरे में पुराने दुख बोलते होंगे, बस कमरे में पुराने दुख बोलते होंगे, जब कभी ठंडी हवा रुत का पता देती होंगी,
0: वाह,
1: कोई सरगोशी तुम्हें मेरा पता देती होगी, पहरों तकती हुई आंखों में जो नम सा होगा, पहरों तकती हुई आंखों में जो नम सा होगा, वही माजी का कोई जख्म भी मरहम सा होगा,
0: वाह जी वाह,
1: फिजाए घुटन के सताए हुए दिल जब जब मेहरबान हवाओं में उड़ान भरते होंगे, कुछ अनकही बातों के सिताए हुए लम्हे चुपके से कोई फरियाद तो करते होंगे,
0: क्या कहने,
1: बारिश की पहली बूंद जब मट्टी से टकराती होगी, ना महसूस सी एक चोट तो दिल पे लग जाती होगी,
0: वाह क्या कहने,
1: एक नादान सी तितली जो पलकों पर ठहरती होगी,
0: वाह,
1: एक नादान सी तितली जो पलकों पर ठहरती होगी, वहीं अपनी उदासी में वो भी घबराती होगी,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: वहीं कहीं किसी एक पल तुम्हें मेरी याद तो आती होगी,
0: बहुत खूब,
1: तुम्हें मेरी याद आती तो होगी, फिर मेरे शहर से गुजरा है वो बादल की तरह,
0: वाह,
1: फिर मेरे शहर से गुजरा है वो बादल की तरह,
0: वाह क्या कहने,
1: दस्ते गुल फैला हुआ है मेरे आंचल की तरह, कह रहा है किसी मौसम की कहानी अब तक, कह रहा है किसी मौसम की कहानी अब तक, जिस्म बरसात में भीगे हुए जंगल की तरह,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: ऊंची आवाज में इसने तो कभी बात ना की, खफगियों में भी वो लहजा रहा कोमल की तरह,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: मिलके इस शख्स से मैं लाख खामोशी से चलूं, बोल उठती है नजर पाऊंगी छागल की तरह,
0: वाह वाह वाह,
1: पास जब तक वो रहे दर्द थमा रहता है, पास जब तक वो रहे दर्द थमा रहता है, फैलता जाता है फिर आंख से काजल की तरह,
0: वाह,
1: अब किसी तौर से घर जाने की सूरत ही नहीं,
0: वाह,
1: अब किसी तौर से घर जाने की सूरत ही नहीं, रास्ते मेरे लिए होंगे दलदल की तरह,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: जिस्म के तेरों आसाब जदा मंदिर में, दिल सरे शाम सुलग उठता है संदल की तरह,
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: फिर वो मेरे शहर से गुजरा है बादल की
0: तरह, वाह जी वाह क्या कहने,
1: दस्ते गुल फैला हुआ है मेरे आंचल की तरह,
0: बहुत खूब,
1: यादों का एक झोंका आया हमसे मिलने बरसों बाद, पहले इतना रोए नहीं थे जितना रोए बरसों बाद,
0: वाह क्या कहने,
1: पहले इतना रोए नहीं थे जितना रोए बरसों बाद,
0: वाह,
1: लम्हा लम्हा घर उजड़ा है मगर कल से एहसास हुआ, पत्थर आए बरसों पहले शीशे टूटे बरसों बाद,
0: वाह,
1: आज हमारी खाक में दुनिया रोए,
0: वाह,
1: रोए धोने बैठी है फूल हुए हैं जाने कैसे इतने सस्ते बरसों बाद,
0: वाह,
1: भूल भी जाऊं किसने तोड़ा कैसे तोड़ा क्यों तोड़ा, ढूंढ रहे हो क्या गलियों में दिल के टुकड़े बरसों बाद,
0: वाह वाह वाह,
1: दस्तक की उम्मीद लगाए कब तक जीते हम, दस्तक की उम्मीद लगाए कब तक जीते हम, कल का वादा करने वाले मिलने आए बरसों बाद,
0: वाह वाह वाह,
1: यादों का एक जोंका आया हमसे मिलने बरसों
0: बाद, वाह क्या कहने,
1: कभी कभी खुद से मिलने को दिल करता है, क्या माजरा क्या उलझन है पूछने को दिल करता
0: है, वाह
1: जो शख्स मेरे अंदर कहीं अभी जिंदा है, इसी के सामने एक बार बैठने को दिल करता है,
0: वाह जी वाह क्या कहने,
1: तमाम उम्र जिसे दूसरों में ढूंढते रहे वो अक्से खुदी खुद में देखने को दिल करता है, ये दिल भी कितना अजीब शय है दोस्त,
0: वाह
1: ये दिल भी कितना अजीब शय है दोस्त, टूट जाए तो फिर टूटने को दिल करता
0: है, वाह जी वाह,
1: न जाने कौन सी वहशत है मेरे अंदर की,
0: वाह
1: न जाने कौन सी वहशत है मेरे अंदर की कि हंसते हंसते अचानक रोने को दिल करता है,
0: वाह
1: जो बात कह ना सके हम तमाम उम्र से,
0: वाह
1: किसी खामोश नजर से कहने को दिल करता है,
0: वाह
1: बहुत करीब है मंजिल मगर ये क्या कम है,
0: वाह
1: कि अब कहीं रुक के सोचने को दिल करता है,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: ये जिंदगी भी अजब कर्ज है कि हर लम्हा किसी गुजरे हुए लम्हे का होने को दिल करता
0: है, वाह वाह वाह,
1: हम अपने आप से आखिर कहाँ तक भागे, हम अपने आप से आखिर कहाँ तक भागे, अब अपने गिरेबान में झांकने को दिल करता है,
0: वाह
1: कभी कभी खुद से मिलने को दिल
0: करता है, वाह जी वाह,
1: क्या माजरा क्या उलझन है पूछने को
0: दिल करता है, वाह जी वाह,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये इतनी खूबसूरत शायरी करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत अच्छा लगा, और आपको सबको सलाम पेश करें, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका आपने हमें टाइम दिया, जो कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, वाह That was amazing शायरी, और बहुत खूबसूरत शायरी की इन्होंने, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज़ बहुत प्यार करने वाले माशाल्लाह नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारी खुश नसीबी है वो हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
0: माशाल्लाह कैसी तबीयत है मेरे भाई की,
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, करम, और आप एंजॉय कर रहे हैं दिन को आज, और माशाल्लाह आपको छुट्टी भी है माशाल्लाह, और क्या कहने जी, वाह वाह, आपने मौसम को भी एंजॉय किया होगा,
2: जी जी जी जी बिल्कुल,
0: माशाल्लाह क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे टाइम दिया, जी
2: चले आज आपके लिए और सबके लिए गीत लेके आया हूँ,
0: जी जी जी,
2: हम तुम्हें चाहते हैं,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या गीत आपने चुना मेरे भाई, क्या कहने, वाह
2: मरने वाला कोई जिंदगी
0: चाहता है, हाय हाय, बड़ा ही मशहूर मकबूल गीत है, क्या कहने जी,
2: ऐसा ही है, सही है, तो ये आपकी नजर और सबकी नजर,
0: जी जी,
2: ओ हो
0: हाय हाय, हाय हाय,
2: ओ
0: वाह,
2: ओ नसीब इंसान का
0: क्या कहनी,

नसीबिन ताने का क्या हत से ही संवरता है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाह वाह क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने भाई, वाह। ये मूवी जब रिलीज हुई थी और 1980 की मूवी थी, क्या कहने, और ये जो गीत है बहुत ही मशहूर मकबूल गीत है, और आपने गाना गुनगुनाया और मेमोरी आपने रिफ्रेश कर दी। और 1980 में ये गाना रिलीज हुआ था और मेरे ख्याल में 46 ईयर हो चुके हैं, और यस डेफिनेटली 46 ईयर हो चुके हैं। क्या कहने मेरे भाई, और क्या आवाज़ उनकी थी और आपकी खूबसूरत आवाज़, बिलीव करें ऐसा लग रहा था कि फिल्म में आप ही गाना गा रहे हैं। बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, वाह क्या कहने। मैं तो गाने में बिलीव करने के मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं गाने में खो गया, बिलीव करें। और मुझे वो नज़र आ रहा था, वो विनोद खन्ना साहब और वो जो गुनगुना रहे हैं वहाँ, वो जो सीन में है जिनत अमान साहिबा और आपकी आवाज़ में, ओए होए होए, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, आहा बहुत खूबसूरत। और जितनी भी तारीफ करूँ कम है मेरे भाई। और हम गाना सुनेंगे, एक और गाना सुनेंगे नेक्स्ट आवर में, क्योंकि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है मेरे भाई, क्या करें क्या करें, और वाह क्या कहने, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और नेक्स्ट आवर में हम इंतज़ार करेंगे, कुछ और गीत लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, छुट्टी वैसे भी छुट्टी है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह और बहुत अच्छा लगा, और हमारा साथ देने बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिन्हाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा दे बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
5: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303।

0: That's Bradford 723030.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: राइट, वेलकम बैक लिसनर, योर लिसनर सुनर रेडियो। और यहाँ पे हमारा साथ है चौधरी फरियाज साहब, क्योंकि उनकी जो क्रेडिट जाएँ होती है माशाल्लाह, और हम यहाँ पे हमारा साथ है रहे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको जल्दी जल्दी लेके जाऊँ। और यहाँ पे हमारा साथ है रहे चौधरी फरियाज साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्ते के बाद आवाज सुनने को मिली है तो बड़ा ही अच्छा लगा। साडे जो लिसनर है साडे घबरा गए, उन्होंने कहा किधर गए, चले किधर गए, और पूरे मैं ना यॉर्कशायर पूरे यूके च रोला पड़ गया। उन्हें चौधरी साहब किधर गए, वेनिस दे प्रोग्राम ही तो शिकर नहीं की है, तो इतना रोला ही रोले पे गए, क्या करें। पिछले हफ्ते वेनिसले प्रोग्राम च पूरे प्रोग्राम ही जिक्र करने रहे। चौधरी साहब कुधर गए, चौधरी साहब कुधर गए, उधर मुदस्सर कियानी साहब फोन किया, उन्हें क्या खैर होनी चाहिए, किधर गए, क्या खैर होनी चाहिए। अब्दुल कयूम साहब सारे भाइयों अगर पिछले तुमने याद किया तो सारे कोई बात नहीं, चलो तुम आई गए हफ्ते के बाद आवाज सुनी तो बड़ा चंगा लगा जी। बिस्मिल्लाह करें,
6: यकीन करो जरा मैं आपको बड़ा दुख सी के आज मैं तुसाना मुलाकात नहीं हुई सकने या
5: अच्छा
6: सुनी ना सकना या आपको तुसाना सुनाई ना सकना। मैं इतना दुख लगा, मैं सारे फिरिया को कि 10 समय दिखाना परोलिया ने।
5: तुम्हें पता है तुम्हारे गिदन भाई, साढ़े गिदन भाई है हमेशा याद करने ने, गिदन भाई याद करने हमेशा ही, और उन्होंने वैसे तुम्हें ना रखे लाडला तो बड़ा प्यार तुम करने, बड़ी खूबसूरत उनकी भी आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है। उन्होंने पूछा चौधरी साहब क्या कुदर गया, खैर होनी चाहिए।
6: चलो जी मैं सब को मैं माजरत माफ,
5: वो मेरे वो हमारा साथ दे रहे माशाल्लाह, वो हमारा साथ दे रहे। जी जी
6: जी
5: जी
6: आप
5: यहाँ पे सब जो है एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, हलूस मोहब्बत, और हमें दुख होता है कि जो कोई बंदा ना आए, अल्लाह खैर करे, तो परेशान हो जाने की अल्लाह खैर करे कि बंदा किधर गया, इसलिए हाजिरी लगाने, तो हाजिरी लगी है पता है ना, गैर हाजिरी लगी है तो नहीं।
6: जी
5: जी गैर आदमी
6: चलो
5: मैं
6: सब तो पहले अतिका बाजी ने नसीम जी ने सिमी जी ने जरा तो याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया
5: जी।
6: तो इन्होंने गजाला बाजी ने
5: कुम
6: जी ने सीमा जी ने
5: जी
6: शाहपरी जी ने जुलेखा जी ने
5: जी
6: सारा जी ने और पापी साहिबा ने गिजर भाई ने फरजाना जी ने सहमा जी ने सहबहादुर जी ने सोनिया जी सोनिया जी तुसा याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया
5: जी जी।
6: और जेडे सारे मतलब भाई दोस्त ने
5: जी
6: मोहतरम अमर भाई ने और महबूब लाई साहब ने मुदसर साहब ने उन्होंने याद किया, शकील साहब हीरा भाई वाजिद भाई अयूब चौहान साहब ने जावेद मीर भाई अब्दुल भाई नवीद राणा साहब और जनाब तारक पर साहब चौधरी मुजफ्फर साहब चौधरी आसफ रियासत साहब डॉक्टर चौधरी मालिक साहब ने चौधरी रुखसार साहब ने खान साहब ने
5: नजीर
6: साहब ने राजा वकार साहब ने राजा विकमैन चौधरी मनीर मेरा भरा और जफर अली हीरो साहब महमूद साहब राजा शोहेल साहब और अपने शमरेज भाई ने इरफान
5: भाई माशाल्लाह जी जी
6: भाई ने
5: जी
6: जी और अल्लाह अल्लाह रहमान जेशान अकबर मेरी बख्शिश दी क्या क्या सामान दिता करके पैदा मोहम्मद दी विच उम्मत मेनू नबियां दा नबी सुल्तान दिता
5: माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
6: कलमा हज नमाज ज़कात रोजा रहबरी दी नाल कुरान दिता लख लख शुक्र उस फेर खामोश मुड़के वो मेनू जिंदगी भी जमाए रमजान
5: दिता माशाल्लाह सुभान अल्लाह
6: नाम खादमा विच मशहूर रखना नबी वली दे मंगदे खामोश गुजर रही सी तेरे बगैर दस किवें गुजर रही सी तेरे बगैर दस देख गम उदास कर जाने वाले किस दे अगे हुन करां फरियाद जारी वो मेरिया आसा ने दीप बजाने वाले
5: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब
6: एक एक लम्हा प्या गुजरदा वांग सदिया मेरा चैन सुकून चुराने वाले
5: वाह
6: जिला राकब नु दर्शन दा दान दे जा ओ जाम इजर फराक दा फलाने
5: वाले वाह जी वाह बहुत खूब
6: अच्छा फिर दिल होया बेताब में की दसा
5: वाह
6: दिल होया बेताब में की दसा घुमन केरिया वेख ख्याल दिया
5: वाह
6: एक एक कर आईया ने याद मुड़ के ਕਰੀਆਂ ਸਾਵਾ ਰੂ ਜੋ ਜ਼ਵਾਲ ਦੀਆਂ
5: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਨੇ
6: ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਗਰਦਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਾਤੀ
5: ਵਾਹ
6: ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਗਰਦਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਾਤੀ ਨਿਕਲ ਪਾਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ
5: ਵਾਹ
6: ਰਾਕਬ ਰਵਾਂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਸਲ
5: ਵਾਹ
6: ਰਾਕਬ ਰਵਾਂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁਣ ਤੇ ਆਸਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵਸਾਲ ਦੀਆਂ
5: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
6: ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਫਗਾਨ ਨਾਲੇ कमले दिल नो मानो से याद ते सी नहीं सी खबर के इतना खवार करते खादा तो खा परे बे इस बार ते सी
5: हाय हाय हाय हाय क्या के
6: होया राख नहीं होया राख नहीं मंद हर दिन का जालम गिरी आज बरसे गुलजार ते सी इधर राकब जी जान से लबा होते उधर मेहरबान यार अब यार ते
5: सी वाह जी वाह वाह वाह वाह
6: अच्छा फिर तेरे फराक भी आ गंदर तेरे फराग दी आग अंदर जलदा जिगर ते कमदा शरीर रहा दुख दे दखम जद लेंदा कोई नाम तेरा पर्दा विच कलेजे दे तीर रहा
5: तीर तीर हाय हाय क्या के
6: बात की आया है कोई दसो नागन जुल्फ गल जिस ते जंजीर रहा राकब मरकज बन गया है बर्बादियां दा फिर भी इश्क मेरे दामन गिर रहा
5: हाय हाय हाय वाह जी वाह
6: अखिया फिर मिलदा नहीं किधरे सुकून दिल नो मिलदा नहीं किधरे सुकून दिल नो दीवाने बेचैन फिर दे ओके दर्दों डाडे कमले ओके दर्दों डाडे लाचार कमले और रोंदे कुक दे कर दे वेन फिर दे
5: वाह वाह वाह वाह वाह
6: खुलिया सारे विच खाक पाके जुल्फा खुलिया सारे विच खाक पाके नाले ताने शरीका ने सैन फिर दे अर्जो फलक क्या बैरो सरार आकब और इंदे तेरी तलाश विच नैन फिर दे
5: वाह चलिका वाह क्या कहनी
6: ਅਖਿਆ ਸੰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਖਵਾਰ ਰਿਹਾ ਲਈ ਉਸ ਬੇਕਦਰ ਨੇ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬੇਕਰਾਰ ਰਿਹਾ
5: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਨੇ
6: ਭੁੱਲੇ ਦਰੋ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਕੂਕਦਾ ਦਾਰੋ ਦਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਕਬ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਵਾਗ ਮੋੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ
5: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਕਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬ
6: ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ
5: ਜੀ ਜੀ
6: ਨਾ ਸੀ ਖਬਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਫਰਾਕ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੀ ਖਬਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਫਰਾਕ ਅੰਦਰ ਮੈਨ ਖੂਨ ਦੇ ਆਸੂ ਬਹਾਨੇ ਪਿਆ ਸਨ ਉਸੇ ਜ਼ੁਲਮਤ ਸ਼ਬੇ ਇਜਰਾਨ ਵਾਲੀ ਦੀਵੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਲਾਨੇ ਪਿਆ
5: ਵਾਹ ਚਲੀ ਵਾਹ
6: ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
5: ਵਾਹ चौधरी साहब, आपकी लाइन खामोश हो गई है। खैर होने
6: राकिब जफा वाले वाहिद्रोता ने शरीका ने खाने
5: वाह वा, वा, जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
6: जनाब एक शेर आखिरी
5: जी जी
6: के तुसे ने पूरी महफिल ने नजर
5: जी जी
6: और नशीन जी की नजर और जनाब डॉक्टर साहब की नजर
5: जी
6: और जितने भी तुसने मेहमान ने सब आने नजर,
5: बहुत शुक्रिया।
6: बड़ा खूबसूरत शेर है जनाब साईं सिद्दीक साहब नाम में, बड़ा प्यारा लगा
5: जी।
6: और मैं अचने मैं इसकी अच्छी साथ ही जुबानी याद कर के
5: वाह जी वाह, क्या कहने वाह।
6: खाने के जितरे रही तुख दी इचरे रही अंदरे
5: वाह,
6: जितरे रही तुख दी इचरे रही अंदरे ओए जदू बली ते सारे जहान बुझिया
5: वाह वाह वाह वाह वाह।
6: जितरे बली नहीं सी मैं भी चुप रहा
5: वाह,
6: जितरे बली नहीं सी मैं भी चुप रहा ओए पांबर मचिया ते दुश्मना आन बुझिया
5: वाह। चौधरी साहब
6: आखिया कूका निकलिया वसों बेवस होके
5: वाह,
6: कूका निकलिया वसों बेवस होके मेरे दर्दा नु जमीन आसमान बुझिया जल बल सदीक जिंद हवा हो गई
5: वाह। चौधरी साहब
6: जल बल सदीक
5: मुझे हवा हो गई
6: हवा हो गई
5: वाह,
6: ओए आले तक ने मेरे जनान बुझिया
5: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने वाह, बहुत खूबसूरत। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बस दिल दर नहीं करना, चलो कोई मसला नहीं, चलो नेक्स्ट आवर मुलाकात और फिर दोबारा, क्योंकि तुम्हें जी गैर हाजिरी लगी है ना तो वह तो मुकम्मल करनी है ना, तो तुम अपना ख्याल रखे दुआ में याद रखे तो इन शाला कोशिश करे नेक्स्ट आवर च, तो बहुत बहुत मेहरबानी शुक्रिया नवादे से आए और टाइम कटिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा
6: लगा। बहुत बहुत सलाम,
5: वालेकुम सलाम,
6: जिन्होंने याद किया
5: इंशाल्लाह, और अगले आवर भी थोड़ी गपशप होगी थोड़ा ना, ठीक है ना, कोई मसला नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत
6: शुक्रिया।
5: ये थे हमारे मोहतरम चौधरी फ़रियाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे साथ गिदन भाई हैं, हमारे भाभी जान भी हैं, यहाँ पे टाइम चेक करना है।
0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
5: Time in the studio is 46 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with Pavis Khan. Sunrise
7: Music. Have you tried Caroteno Better Ghee? The healthier, low-cost butter ghee alternative, Caroteno Better Ghee, is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caroteno Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caroteno Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
8: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
7: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
9: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
10: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
5: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, गुरु जी हमारा साथ दे रहे हैं, और वेलकम जी अनु खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
11: वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं?
5: मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, और ये आपके लिए किसी ने आपके लिए रिक्वेस्ट किया, हमारे सिमी जी हैं, उन्होंने कहा कि आपके लिए ये पेश करें। वाह जी वाह, और उन्हें उनकी तरफ से है और आपके लिए और हमारी तरफ से ये आपके लिए। और पूरी फैमिली प्रोग्राम सुन रही है आज और बैठे हुए और आपका इंतजार में है वो कब आएंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आए और बहुत अच्छा लगा गुरु जी आप क्या लेके आए हमारे लिए
11: बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना बैंड बाजा बजाया हो तो हमारा बज गया था
5: वाह जी वाह क्या कहने वाह वाह जी वाह वो खुशी खुशी खुशी के साथ वो आए ना उन्होंने कहा कि आपके लिए होना चाहिए मैंने कहा क्यों नहीं हम करते हैं और एक और हम पेश करते हैं आपके लिए और एक और कर देते कोई बात नहीं जी
11: अच्छा तो सबसे पहले मैं सलाम बोल दूं सर
5: जी जी जी गो हेड
11: तो हमारा बर्नली वाला शकील भाई है
5: जी
11: मेहर भाई है
5: जी
11: मोहम्मद सैफ भाई है साजिद भाई है
5: वाह
11: हमारा लाला उस्ताद चौधरी फरियाद भाई है
5: वाह
11: वाजिद भाई है सजाद सलवान है
5: इकबाल
11: भाई है पापा शफीक है डॉक्टर मलिक साहब है मोहम्मद रफी साहब है
5: वाह
11: कयूब साहब है हमारा नवा परवेश खान भाई है हमारी बहना सलीना खान है
5: जी
11: आतिया जी है अतिका जी सलीना जी शमा जी हमारी एसिंगटन वाली
5: जी जी वाजी शमा जी जी जी मैनचेस्टर में जी
11: मिश्रा जी अमिंदा जी सितारा जी मिश्रा मिसिस पटेल सबको हमारा बहुत बहुत सलाम
5: वालेकुम असलम
11: तो ये छोटा सा है देखे क्या होता है यार
5: जी जी गो हेड
11: तेरे प्यार की तमन्ना
5: वाह
11: गमे जिंदगी के साए बड़ी तेज आंधियां है जाग बुझ न जाए
5: वाह
11: तेरे प्यार की तमन्ना गमे जिंदगी के साए बड़ी तेज आंधियां बुझ न जाए तेरे प्यार की तमन्ना ते अजीब दास्तां कुछ ते हमारी दास्तां भी ते अजीब दास्तां कुछ ये हमारी दास्ता भी कभी तुम समझ न पाए कभी हम सुना न पाए तेरे प्यार की तमन्ना कमे जिंदगी के साए

0: की तमन्ना
1: वाह
0: ना फिजाए अपनी बस में
1: वाह
0: ना नजर में है किनारा
1: वाह
0: ना फिजाए अपनी बस में ना नजर में है किनारा
1: वाह
0: कहीं मेरे दिल की कश्ती नभमर में डूब जाए तेरे प्यार की तमन्ना जो मैं जिंदगी के साए।

की तमन्ना, कोई हाल तू ही बता दे मेरे दिल की कश्मकश का, कोई हाल तू ही बता दे मेरे दिल की कश्मकश का।

0: की तमन्ना गमे जिंदगी के साए बड़ी तेज आंधी आए आग बुझ न जाए तेरे प्यार की तमन्ना.
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह गुरु जी, क्या आवाज आपने पाई, बहुत खूबसूरत आवाज, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ट्रैक आपने चुना जी. वो उन्होंने अतिका साहब ने वो फ्लश करनी है, वो आपका शुक्रिया अदा कर रही है और वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने फोन किया है, उन्होंने गाने को पसंद किया, एंजॉय किया जी. वाह जी वाह, क्या कहने, और बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आप आए और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे कीमती वक्त दिया. और कौन सा गीत लेके आए हमारी बाबी जान.
2: हेलो जी भैया.
1: हेलो बाबी जान, हाउ आर यू, आर यू गुड? वाह जी वाह, क्या कहने, और मिल्टन कीन छा गया माशाल्लाह, और क्या कहने, मिल्टन कीन में खूबसूरत हस्ती है हमारे माशाल्लाह, और हमारे किदन भाई हैं, हमारे बाबी जान हैं, और व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह जी.
2: आपका रेडियो ही खूबसूरत
1: है. हाय हाय, क्या कहने, और हम लंदन में भी आ रहे हैं, बहुत जल्द लंदन में आ रहे हैं, लंदन में
2: बहुत लोग आएगा.
1: हाँ, फैमिली में आगे पीछे होगा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत होगा वेस्ट लंदन में, और एक और खूबसूरती आ रही है आपके लिए
2: भैया, वेमली में साउथ वर्ल्ड बहुत पॉपुलर है.
1: हाँ हाँ हाँ, आगे देखो क्या होने हमारे लिए, देखो आगे क्या क्या होने वाला है, और
2: वाह पूजा करें सब ठीक हो जाएगा.
1: सब पूरी दुनिया में हम आ रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे यूके में, और ऐसे ही होगा. और बाबी जान, ये ना हो कि हम बातें करते रहें, क्योंकि हमें 5 मिनट है इस आवर का, और ये ना हो कि आप बातें बातें में वो न्यूज ब्रेक आ जाए.
2: चलो तो मैं पहले सबको सलाम बोल दूं.
1: जी जी जी जी,
2: शकील भाई बल्ली वाला हमारा, जावेद भैया, मोहम्मद जनी भैया है
1: जी,
2: साजिद है, सुधीर फरीद भैया, सज्जाद सलमान भैया, इकबाल भैया, पापा सफीक भैया
1: जी,
2: डॉक्टर मलिक साहब है, मोहम्मद रफी भैया है
1: जी,
2: नदीम
1: मंसूर साहब जी जी जी,
2: तैयब साहब है
1: जी,
2: सबको मैं सलाम नमस्ते. शकील सहली मशन हमारा, अतिका जी है, आशिया जी है, रिश्तीना सिमी जी, रेखा जी
1: जी,
2: समीता जी ने
1: आज सिमी जी ने मुझे 2 दफा फोन किया, उन्होंने कहा कि उनको वेलकम कहें और उनको आज जानने, आज उनको जानने देना है. वो आपकी गाने को बहुत पसंद करते हैं, बहुत दोनों के गाने को पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, वो इंतजार में होते हैं कि आप कब आएंगे और गाना सुनाएंगे जी.
2: चलो थैंक यू
1: सिमी जी जी,
2: हमारे
1: जी जी जी जी जी,
2: छोटा गाना है इसलिए टाइम नहीं लगेगा
1: जी जी. कोई कोई कोई बात, आराम से, कोई बात नहीं.
2: ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, दिल तुझे कसम है,
1: हाय हाय वाह,
2: दिल तुझे कसम है,
1: वाह,
2: उल्फत के रास्ते में, उल्फत के रास्ते में मिलेंगे हजार गम, मिलेंगे हजार गम, बन जाए जान पर दी, हिम्मत न हारना, हिम्मत न हारना, ये दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है, रोने से कम न होगी, रोने से कम न होगी तेरी मुश्किलें, तेरी मुश्किलें, बिगड़े हुए नसीब को हंसकर संवारना, हंसकर संवारना, ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है, दुनिया सितम करे तो, दुनिया सितम करे तो करना गिला कोई, करना गिला कोई।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: तेरे हो चुके हैं तू उनको पुकारना, तू उनको पुकारना। ए दिल तुझे कसम है, ए दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत न हारना। जिंदगी के जैसे गुजरे गुजारना, ए दिल तुझे कसम है।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाह बाबीजान, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गीत आपने चुना है और बहुत ही अच्छा लगा। वन ऑफ माय फेवरेट गाना है। और आपने और गाना गुनगुनाना है, नेक्स्ट आवर में आप गुनगुना सकते हैं, कोई मसला नहीं। थोड़ा आप होल्ड करेंगे 2 मिनट के लिए, तो फिर मैं आपको स्टेट में लेके जाऊंगा, ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा होल्ड करें क्योंकि आप हमारी बाबी जान हैं और बाबी जान को कैसे हम के जाने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबी, थोड़ा आप इंतजार करें, 2 मिनट के लिए इंतजार करें, न्यूज़ के बाद मैं स्ट्रेट वे में आपको लेके आऊँगा, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दैट वॉज हमारी बाबी जान, ब्यूटीफुल कपल, व्हाट अ अमेजिंग कपल माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका और हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ देने। कीप इट अप।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 10. Crews are continuing to tackle 14 wildfires in South Wales as residents are warned the risk of more breaking out remains high. In Stourbridge in the West Midlands, residents are being allowed to return home after flames forced evacuations. Our correspondent Fraser Maud is there.
5: 19 houses completely destroyed, almost as many damaged by the fire. We're not sure as to the extent of that damage. Those homeowners will be finding it out today. It is absolutely incredible to see how close these properties are to each other, some undamaged, some completely destroyed.
4: 5 teenagers have died in a road crash in County Kildare involving a car travelling on the wrong side of the motorway. 3 women and a child in a second vehicle remain in hospital. A murder investigation's been launched after a 55-year-old man died following an altercation in Wakefield, during which he was bitten by a dog. Another man, who's also 55, has been arrested on suspicion of murder. The Chief Inspector of Probation says public safety could be put at risk when thousands of prisoners are released early as part of attempts to ease prison overcrowding in England and Wales. The Ministry of Justice says there's record investment in probation. It's understood a fee of over £65 million has been agreed for Rodri to join Barcelona from Manchester City. The Spain World Cup winners contract with the Premier League club ends next summer. Rodri missed today's 3-0 Community Shield defeat to Arsenal. New City boss Enzo Maresca was asked afterwards if they missed him.
6: It's not about if we miss Rodri or not. I think we can find many things after this kind of defeat. We just need to analyze in the right way, think about and focus about next one.
4: Amy Hunt has won a record 4th gold medal at a single European Athletics Championships after helping Great Britain and Northern Ireland to victory in the mixed 4x100m relay. And Belgian Sebastian Pocognoli has been appointed as the new head coach of Scotland's football team. That's the latest. I'm Daisy Steele.
7: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: राइट, वेलकम बैक लिस्टनर, यू लिस्टनर रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का जो मेरे बहन भाई साथी दोस्त अहबाब अजीज हैं, और यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ हमारे पापी जान वेट कर इंतजार में हैं। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पापी जान,
1: चलो भैया मैं दूसरा गाना गा लेती हूँ।
0: जी जी, गो हेड। जी जी,
1: चुप गया कोई रे, दूर से पुकार के, दर्द अनोखे आए, दे गया प्यार। चुप गया कोई रे, दूर से पुकार के, दर्द अनोखे आए, दे गया प्यार के। चुप गया कोई रे, आज है सुनी सुनी दिल की ये गलिया, बन गई कांटे मेरी खुशियों की गलिया। प्यार भी खोया मैंने सब कुछ हार के, दर्द अनोखे आए, चुप गया कोई रे, दिल की पुकार के, दर्द अनोखे आए, दे गया प्यार। अक्षों में नींद गई बनवा के चैन वे, चिप चिप रोए मेरे नींद गई मनवारे चैन रे, छिप छिप रोए मेरे कोई कोई चैन रे। हाँ मेरे दिन के शिंगार के, छिप गया कोई दे गया पार के, छिप गया कोई रे, दिल की पुकार के, दर्द आँखे आए, दे गया पार के।
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाए, और दोनों
1: सलाम की शिमी जी, अतिका जी, आशिया जी,
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सलाम पेश करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गाना गाया, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल गाना था, और वेरी नाइस ब्यूटीफुल। और आपका शुक्रिया अदा करना कि आपने गाने को पसंद किए, आपके गाने को पसंद करें, और सब आपका सलाम पेश करें, उन्हें इंजॉय करें। बहुत बहुत शुक्रिया का, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। राइट, दैट वॉज हमारे मोहतरम भाई दोस्त भी आ गए हैं और छा गए हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका सबका, और मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि आप हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, एम खान जी जो हमारे उस्ताद हैं मोहतरम हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, हमें अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक,
2: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 6:10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked down, keep it locked down with the power is gone. और क्योंकि आपको हम पता है कि यहाँ पे हमारा साथ है मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, और एम खान जी हमारे मोहतरम में हमारे उस्ताद हैं, और उन दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका। और मैं यहाँ पे थोड़ा जा, क्योंकि मैंने अजान पेश करनी है, और उस अजान में 3 मिनट रह गए, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी को लेके जाऊँ हवा के दोष में, तो उनको मैं कहूँ कि यार आप इंतज़ार कर लें, क्योंकि अजान का टाइम होने वाला है और ईशा की अजान हम पेश करेंगे। तो हम ये सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी हमारा साथ दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि अजान जो है ना आज सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए हैं। और फिलहाल हम क्या करेंगे, छोटा सा गीत पेश करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गप फिल करनी है, अच्छा नहीं लगता मैं कि जब मैं बातें करता रहूं। और मीन टाइम वाइल डू आई विल प्ले दिस गाना फॉर यू, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, क्योंकि कमोटी जी मुझे शौक, हाँ शुक्र अलहमदिल्ला रबी आलमीन, और ये बहुत बड़ी बात है कि अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला यहाँ पर अजान शो हो रही है, और सिस्टम में आज अजान शो हो रही है। रही है, वाह जी वाह, क्या कहने क्या कहने। और हम अजान शो हो रही है क्योंकि हमने टाइम के साथ पेश करनी है, और इसलिए क्योंकि 10:10 टाइम है तो थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे और देन वी विल गो ऑन टू द अजान। द मीन वाइल व्हाट आई विल डू, आई विल definitely play this track for you. And meanwhile, oh, you know what? I will give you a bit of information about Sunrise Radio. क्योंकि मैं गाना पेश कर दूँगा, वहाँ पर ये ना हो कि वहाँ पर वो ऑन हो जाए, क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, और वो भी बहुत ही हमने बड़ी एहतियात करनी है, क्योंकि उसको मैंने गार्ड कर दिया है और टू गो टू द ब्रेक, और ये ना हो कि मैं गाना लगाऊं वहाँ पे तो वहाँ पे साथ में अजान शुरू हो जाए, तो ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कुछ गाना पेश नहीं करूँगा क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जब क्या करूँगा कि यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। यू आर लिसनिंग टू सुनर रेडियो 100.6 FM 103.2 FM क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर, डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीज, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, Nelson, Accrington, Minton Keynes. Very soon we come into Birmingham. We're going to be launching in the Birmingham very soon. And don't forget, you can download the radio Apple Play Store and Google Play Store, and not forgetting on www.sunriseradio.fm, and you can also www.sunrise.radio. And very soon we will be launching in London, West London mein hum aapke aa rahe hain, aur yes, we are coming to London as well, aur we are going to be conquering inshallah aur all the UK and every city, every town. Ye aap doston ka pyar mohabbat halus hai ke aap hame yaad karte hain, and you love in the Sunrise Radio, kyunki number one hit music station hai Sunrise Radio hai, aur that is all about Sunrise Radio, and aapka प्यार मोहब्बत हलूस चाहिए, और माशाल्लाह अन यस एवरीबॉडी इज़ ट्यूनिंग टू द सुनर रेडियो एंड ऑल्सो ऑन डीएबी, क्योंकि जो नई गाड़ियां हैं उसमें ऑटोमेटिकली यू कैन लिसन टू द सुनर रेडियो ऑन डीएबी प्लस, बिकॉज एवरी न्यू कार माशाल्लाह इज़ ऑन डीएबी प्लस, एंड दैट इज़ वेरी अमेजिंग एज वेल, बहुत खूबसूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच, इफ़ यू वॉन्ट अस टू कम टू योर सिटी, योर टाउन, यू कैन ऑलवेज गेट टच विद अस, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू कम टू यू एज वेल, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रेडियो। और यहां पे हमने करना है अजान पेश करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
4: Right, welcome back in listening. You're listening to Radio 103.2 FM. Bob Shukriya Inka aur Hamara Saath Dein Mohammed Rafi Saab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji Hazur.
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
4: माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया, वक्त दिया और कीमती वक्त आप मुझे दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
5: कोई बात नहीं सर, आपसे मुलाकात करना हमारा फर्ज है।
4: हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया सर,
5: मजा आ जाता है,
4: मजा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे लिए दुआएं करते हैं और हम कहते हैं आमीन आमीन कहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
5: थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह जी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम। सलाम पेश करता हूँ आपको, तमाम सुनने वाले को, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमीन ता फलक जिसकी परवाज है, वही जिन पे हमको नाज है, परवेज खान जी आप ही दो आवाज।
4: हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा। और क्या कहने,
5: गीत पेश करने चला हूँ
4: जी जी,
5: आपकी खातिर मुबीन साहिल
4: जी,
5: अमीर इब्राहिम साइम
4: जी,
5: और बाबी सेबा गुरु भाई माजिद साहेब डॉक्टर पाशा और तमाम सुनने वालों के लिए गीत पेश करने चला हूँ
4: जी जी। गो अहेड।
5: दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में,
4: वाह

गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, खुशी से अपनी आँखों में मैं अशकों से भिगो

मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। सब जवां सब हसी कोई तुम सा नहीं, सब जवां सब हसी कोई तुम सा नहीं, हो गए जिसके हम वो तुम्ही हो तुम्ही। सब जवां सब हसी कोई तुम सा नहीं, देखा जो तुम्हें महसूस हुआ, पहचान है अपनी।

0: की सूरत से मिलती है तुम्हारी सूरत से, तुम वही हो वही है ये दिल को यकीन, सब जवां सब हंसी कोई तुम सा नहीं, कुछ जान के भी धोखा खाया कुछ देखे उनके इशारे भी, लो आस की बदली में चमके उम्मीद के चांद सितारे भी, उम्मीद के चांद सितारे भी, हो गई आसमां आज दिल की जमीन, सब जवां सब हसी कोई तुम सा नहीं, हो गए जिसके हम वो तुम्ही हो तुम्ही, सब जवां सब हसी कोई तुम सा नहीं।
1: ओके सर, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी मेहरबानी
1: सर, वी ऑल लव यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या गीत आपने चुना, क्या गीत आपने गुनगुनाए, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज मोहम्मद रफी साहब, हमारे यॉर्कशायर के, ब्रैडफोर्ड के, पूरे यूके के मोहम्मद रफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दैट वाज हमारे मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, इनका भी हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोजिज मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहुत ही शुक्रगुजार ममनून का, क्योंकि ये हमारे उस्ताद मोहतरम में बड़े अदब अदाब से बड़े प्यार के साथ हम उनको वेलकम कहते हैं, जिए कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, सत बिस्मिल्लाह कहते हैं, ये हमारे ब्रैडफोर्ड की रौनक है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा उनको खुश रखे, शादाबाद रखे, लंबी ज़िंदगी दे, उम्र दे उनकी, और क्योंकि हमारा साथ दे हमारे उस्ताद हैं एम खान जी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, मेरी तरफ से मिलाद मुस्तफा
1: अल्लाह
2: आखिरी नबी जो
1: सल्लल्लाहु
2: अलैहि वसल्लम दरमियान अल्लाह ने वहाँ से जाहिर किए और शहर मदीना में ऐसी हुकूमत आखिरी नबी की
1: अता
2: हो गई,
1: आमीन।
2: तो वाकया मतलब होती रहेगी। अल्लामा इकबाल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं,
1: जी जी,
2: आप इरशाद फरमाते हैं, खाली शराब इश्क से लाले का जाम हो,
1: हाय हाय हाय हाय,
2: पानी की बूंद गरियाए शबनम का
1: हो, क्या कहने,
2: पहना दौरान सीना कहीं राज हो तेरा,
1: होई होई होई होई, वाह।
2: फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, पहना दौरान सीना कहीं राज हो तेरा,
1: वाह,
2: अश्के जिगर गदाद ना गमाज हो तेरा,
1: वाह,
2: कोया जबान शायरे रंगी बयान ना हो,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह,
2: आवाज ना में शिकवाए फुरकत नहा ना हो,
1: वाह।
2: आखिरी शेर बड़े काबिले कदर है,
1: जी जी जी जी, बिस्मिल्लाह,
2: उनकी उनकी बरकत है,
1: जी जी बिस्मिल्लाह,
2: मुस्तफा चौधरी तो आपकी शफकत है,
1: जी जी,
2: तो भी आप बड़ा दिलचस्पी से टाइम देते हैं,
1: जी जी,
2: पाल फरमाते हैं ये दोर नुक्ता ची है,
1: आए आए ऐसे बेशक,
2: ये दोर नुक्ता चीन है, छुप के बैठ गए,
1: वाह,
2: जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ रहे,
1: आए हाय हाय हाय हाय हाय, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरा, वाह,
2: अल्लाह में सिवा क्या का कमाल,
1: जी उनका कमाल अपना ही कमाल है, जी
2: सरकार मियां साहब का,
1: हाय हाय, अपनी उनकी बात है, क्या बहन, वाह जी,
2: किताए कश्मीर और पूरी दुनिया,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, मियां साहब की एक और अपना रंग है, जी जी जी बिस्मिल्लाह,
2: मियां साहब ने एक दफा मुझे शरीफ थे एक मीरपुर के किसी गांव का एक जाम गया, बाबर गया,
1: जी,
2: तो मियां साहब खड़े हो गए,
1: खड़े हो गए, जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह,
2: तो उन्होंने कहा कि आज़म मियां जी क्यों खड़े हुए हो,
1: जी जी,
2: आपने फरमाया ये माड़ा जड़ा उस्ताद सी, ये उस्ताद ने घराना ये जाम है, उस्ताद ने वजह तो खड़ा हुई गया,
1: उनकी वजह से खड़ा हो गया माशाल्लाह, क्या कहने, वाह जी वाह। देखो ना वो दौर देखो,
2: हमारे बच्चे मुझसे भी पढ़ते, लोगों से पढ़ते हैं
1: जी जी।
2: आप एक आदमी दीन के साथ था मैं, तो वो उनका बेटा आगे था, तो मुझे कहने लगे अब ठहरो
1: जी।
2: मैं ठहरा तो बेटे को कहने लगे ये तुम्हारा उस्ताद है।
1: हाय हाय हाय, देखो उनकी तबीयत देखो माशाल्लाह, क्या कहने, वाह।
2: कहने लगे बेटा ये तुम्हारा
1: उस्ताद है माशाल्लाह,
2: उस्ताद के पीछे चलो और उस्ताद के कदम पर कदम ना रखना।
1: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह, देखो ना देखो वाह।
2: समझ गया
1: जी
2: कि अल्लाह करीम ने बेशक यही कहा कि मेरा मेरी कदर जानने वाली उलमाए कराम की जमात।
1: हाय हाय हाय हाय, क्या बात की आपने, वाह जी वाह, क्या क्या क्या कहने।
2: मियां साहब इरशाद फरमाते हैं
1: जी, इरशाद
2: सदा सलामत
1: माशाल्लाह, क्या कहने, वाह।
2: राज उसे दा उस दर सलामी,
1: वाह वाह वाह वाह।
2: आदम जिन मलाइक हर शे जिया जून तमामी,
1: क्या कहने, वाह।
2: आगे मियां साहब इरशाद फरमाते हैं
1: जी जी,
2: सदर नशीन
1: वो
2: सदर नशीन दीवाना हशरदार,
1: ओ
2: अफसर विच इमामा,
1: वाह क्या कहने, बहुत खूब।
2: बोल नबी मोहताज उना दे,
1: वाह।
2: ओ नफरा वांग गुलामा, नहीं मजाल असाडी अगे, ओ चमकन नूर उत जले,
1: वाह वाह वाह।
2: ऐसा कुरब तो सानू लाए, जाओ हेक कले, ओ जिते कदम तो साडा उठे होर नहीं कोई पुजदा,
1: वाह वाह वाह।
2: ऐले कमाल जलाल मुहम्मद,
1: वाह वाह वाह,
2: तू ही सुजदा
1: माशाल्लाह।

0: माशाल्लाह।
1: वत रहना जरा खिलत खिलत तोहफे हदिये लेके आए फिर मुकर्रा ऐसा नबी जिनादा वाली तो उम्मत क्यों जुर्सी ऐब गुनाह खुताया बाबत
0: वाह माशाल्लाह
1: ओ क्यों दोजक वल टुरसी ओ की कुछ ना तो तू साडी आखां
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: कलकद दे सरदारा
0: माशाल्लाह
1: लख सलात सलाम तेरे ते ओ लख दुरूद हजारा
0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह
1: आल औलाद

0: ज़ियानी।
1: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह।
0: ओ पाओ खैरो मुहम्मद
1: सलामी। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने।
0: ओ सदका शाह जीलानी।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: पाक जमाल तू सादे कारण,
1: माशाल्लाह।
0: हर दी जान तरस दी, वेख जमाल हबीब मेरे दा, सदके सदके जामन।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: ओ शरफ सहादत पावन सारे, ओ शुक्र बुझा लियावन।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: ओया सवार बरा के उते, ओ सुल्तान अरबदा।
1: माशाल्लाह।
0: आई पग मोहब्बत वाली, और तुरिया राए तलबदार।
1: माशाल्लाह जी जी।
0: ले ले नजरा मिल दे अगू,
1: माशाल्लाह।
0: और रूह तमाम नबिया,
1: माशाल्लाह।
0: खिलगत अंदर हाजिर होए,
1: माशाल्लाह।
0: बते लक
1: वलिया। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याल, आपने कलाम सुनाया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कयूम साहब, और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद अब्दुल कयूम साहब हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और शकील साहब हमारे मुर्शिद हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन साहब का, थैंक यू वेरी मच। महबूब लाइफ साहब, आप कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की, और आप फ़ोन कर सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: ऋषि'स विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062.

0: visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
5: राइट, वेलकम बैक लिसनर्स। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे अपने हैं और हमारे सज्जन हैं, और क्या कहें, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। अब्दुल कय्यूम साहब हैं, फ्राइजिंग ओर से हैं, माशा एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे यॉर्कशायर की, बराफर की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
6: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा हमारा भी ध्यान बिल्कुल आपकी तरफ रहता है, आपके प्रोग्राम की तरफ रहता है।
5: माशाल्लाह,
6: इस शादी की महफिल में वो गया हुआ था, तो पता है आपको, आपका प्रोग्राम होता है ना आज के दिन, तो इधर उधर का रुटे बदल रहा था।
5: वाह जी वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: ये डॉक्टर ने यार मुझे एक गोली दी हुई है, मैं कर भूल आया तो मुझे बहुत।
5: वाह वाह वाह वाह, देखो ये होती है प्यार की मोहब्बत की बात होती है, सुनने वाले सुन लो। और ये क्या कह रहे, वाह जी वाह, देखो ये हाजिरी लगा रहे। वाह जी,
6: वो टेबलेट मैंने खा लिया, मेरे दिल को सुकून
5: हो गया। माशाल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह जी वाह वाह।
6: तो इससे कबल के मैं कुछ पढ़ूं तमाम सुनने वालों को, जो इस वक्त घरों, बाजारों, दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, रेस्टोरेंटों, खेतों में, खलियानों में, इस पार उस पार जहाँ कहीं भी ये नशरिया सुनी जा रही है, मैं सबकी खिदमत सलाम अर्ज करता हूँ।
5: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
6: गजल से पहले एक दो शेर हैं अगर जाल।
5: जी जी, अरशाद अरशाद।
6: दिल दर्द का एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं
5: देता। हाँ हाँ, क्या कहने,
6: एक दर्द मुसलसल
5: मुझे सोने नहीं देता। वाह,
6: दिल सबर का आदि है मुझे रोने
5: नहीं देता। आय हाय हाय हाय, क्या कहने,
6: एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता।
5: वाह,
6: दिल सबर का आदि है मुझे रोने
5: नहीं देता। वाह वाह वाह वाह,
6: मैं उसका हूँ ये राज तो वो जान चुका
5: क्या है। वाह वाह,
6: पर वो किसका है ये सवाल मुझे सोने
5: नहीं देता। आय हाय हाय हाय, क्या कहने,
6: वो किसका है ये सवाल मुझे सोने
5: नहीं देता। कमाल की शायरी, वाह कमाल की, कमाल की शायरी। वाह,
6: तुम दोस्त हो मेरे सदा के लिए।
5: आहा,
6: तुम दोस्त हो मेरे सदा के लिए, मैं जिंदा हूँ तेरी वफा
5: के लिए। वाह, क्या कहने,
6: शुक्रिया जनाब, कर लेना लाखों शिकवे मगर
5: वाह,
6: नाराज ना होना खुदा के लिए,
5: खुदा के लिए नाराज ना होना खुदा के लिए। वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह,
6: चलो आदरी लगाने लगा अब।
5: जी जी,
6: एक छोटी सी गजल है पढ़ने की कोशिश करूंगा।
5: जी जी जी, अरशाद अरशाद,
6: जा सकूं तो।
5: जी जी,
6: जो महफिल से उनकी निकाले हुए हैं, जो महफिल से उनके
5: निकाले हुए हैं,
6: गमे दो जहां के हवाले
5: हुए हैं। आय हाय, क्या कहने,
6: जो महफिल से उनके निकाले हुए हैं, गमे दो जहां के हवाले हुए
5: हैं। वाह,
6: और जरा तेरे गेसू जो बिखरे हैं रुख पर।
5: वाह,
6: जरा तेरे गेसू जो बिखरे हैं रुख पर, अंधेरे हुए हैं उजाले हुए हैं।
5: वाह वाह वाह वाह वाह,
6: जरा तेरे गेसू जो बिखरे हैं रुख पर, अंधेरे हुए हैं उजाले हुए हैं।
5: वाह,
6: और तेरे वसल की आरजू तोबा तोबा।
5: हाय हाय,
6: तेरे वसल की आरजू
5: तोबा तोबा,
6: ये अरमां दिल से निकाले
5: हुए हैं। वाह, क्या कहने,
6: तेरे वसल की आरजू तोबा
5: तोबा, वाह वाह,
6: ये अरमां दिल से निकाले
5: हुए हैं। वाह,
6: और ये कौन आ रहा है कि सब अहले महफिल,
5: आहा,
6: ये कौन आ रहा है कि सब अहले
5: महफिल,
6: मताए दिलो जान संभाले
5: हुए हैं। वाह,
6: ये कौन आ रहा है कि सब अहले महफिल, मता है दिलो जान संभाले
5: हुए हैं।
6: और शेर है, फसाना है दिल का, फसाना है दिल जिनकी बेमेहरियों का, फसाना है जिनकी दिल में मेरियों का वही दर्द दिल सुनने वाले हुए हैं। फसाना है दिल जिनकी बेहमेरियों का वही दर्द दिल सुनने वाले हुए हैं। और शेरा
5: जी जी,
6: बड़ा साफ था रास्ता जिंदगी का, बड़ा साफ साफ था रास्ता
5: जिंदगी का,
6: तेरे जुल्फ ने पेच डाले हुए
5: हैं। हाय हाय हाय हाय, क्या कहने वाह, क्या क्या कहने, क्या कहने वाह।
6: बड़ा साफ था रास्ता जिंदगी
5: का, वाह।
6: बड़ा साफ साफ था रास्ता
5: जिंदगी का,
6: तेरे जुल्फ ने पेच डाले हुए हैं।
5: वाह।
6: और यहाँ सैफ हर दिन कयामत का दिन है, यहाँ सैफ हर दिन
5: कयामत का दिन है,
6: वो किस हश्र पर बात टाले
5: हुए हैं। वाह, क्या कहने,
6: शुक्रिया।
5: क्या कहने, क्या कहने।
6: यहाँ सैफ हर दिन है कयामत का दिन है, वो किस शर्त पर बात टाले हुए हैं। और तेरी वसल के आरजू तोबा तोबा,
5: वाह वाह,
6: तेरी वसल की
5: आरजू तोबा तोबा,
6: ये अरमां दिल से निकाले
5: हुए हैं। हाय हाय हाय हाय,
6: जरा तेरे गेसू जो बिखरे हैं दिल रुख पर,
5: वाह।
6: जरा तेरे गेसू जो बिखरे हैं रुख पर, अंधेरे हुए हैं उजाले हुए हैं।
5: हाय हाय,
6: शुक्रिया,
5: कमाल कर दिए, कमाल कर दिए, ब्यूटीफुल शायरी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत शायरी। वाह जी वाह, आप क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे अब्दुल कयूम साहब, और कमाल कर दिए इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा। और महबूब लाइक साहब, आप कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की, और आई डू अपोलोजाइज टू यू, आपने दो तीन दफ़ा कोशिश की है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मुदस्सर कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, और हमारे मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद आ गए हैं और छा गए हैं, और क्योंकि हार्ट ब्रेक ही आने वाली है, और यहाँ पर हमने क्या करना कि छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद मुर्शिद को कहेंगे वेलकम, जी आए खुश आमदीद, बिस्मिल्लाह कहेंगे, क्योंकि छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम लेकेंगे आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे मोहतरम दिल अजीज़ प्यारे हमारे सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, और आ गए और छा गए, और कसम से आए हाय आए हाय, सदके सदके। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी ब्रेक करनी है, उससे पहले हमने करना है टाइम चेक।
7: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
5: Ladies and gentlemen, boys and girls, according to the radio clock, it's 42 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी निक्की जी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारा धमाका होगा सुनने रेडियो में, और नालो नाल।
8: Have you tried Caroteno Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caroteno Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caroteno Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caroteno Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
9: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio. Sunrise
10: Music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
11: Yadi teri zulfon ki narm chhaon mein guzarne paati to shadab ho bhi sakti thi. Ye ranjo gham ki siyahi jo dil pe chhai hai तेरी नजर की शुआओं में।
5: और यहाँ भी हम इसको रोकेंगे, क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी में तारीफ कम है, महबूब लाइक साहब हमारा साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
12: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
5: माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम जी, अनु खुश आमदीद। और यहाँ पे हमने पकार पकार के सब ने आपको पकारते हैं, और आपने आज भी उन्होंने पकारा है, और हमने भी आपको पकारा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
12: सबकी मेहरबानी जी, खुश के, वालेकुम सलाम
5: जी।
12: प्रोग्राम सुन रहे थे, बड़ी मुश्किल कॉल कॉल मिलती है आपको।
5: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी।
12: सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा, साथ साथियों को सुना
5: जी,
12: और हमने सोचा हम भी हाजिरी लगवा लें
5: जी, क्यों नहीं जी जी।
12: तो ये सभी के नाम करना चाहेंगे, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, चौधरी फरियाद हैं, चौधरी रुखसार हैं, भाई शकील हैं, भाई जवेद मीर हैं
5: जी,
12: और जितनी लिस्ट है चौधरी रुखसार साहब और रतीका जी के पास होती हैं, सभी के नाम और भाभी और गगन जी जो
5: गगन भाई जी, हम जी मिडिल किंग से जी।
12: शायरी है, शायर लिखता है
5: जी जी, इरशाद।
12: बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं,
5: वाह।
12: बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं,
5: वाह।
12: इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं,
5: वाह।
12: इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं,
5: वाह वाह।
12: ना छेड़ ए हम नशीन कफियत साहबे के अफसाने, ना छेड़ ए हम नशीन कफियत साहबा के अफसाने,
5: वाह।
12: शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं,
5: वाह क्या कहने।
12: शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं,
5: वाह।
12: रहा करते हैं कैदे होश में ए वाए नाकामी,
5: वाह।
12: रहा करते हैं कैदे होश में ए वाए नाकामी, वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं,
5: वाह क्या कहने।
12: वो दश्त खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं,
5: वाह।
12: नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती,
5: वाह कमाल।
12: नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती,
5: वाह वाह वाह।
12: मगर जब याद आते हैं
5: वाह
12: तो अक्सर याद आते हैं,
5: आय हाय हाय क्या कहने।
12: मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं,
5: वाह।
12: हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की,
5: वाह।
12: हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर
5: याद आते हैं, आय हाय हाय क्या कहने।
12: तुझे तो अब वो पहले से
5: बढ़कर याद आते हैं, वाह।
12: बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं,
5: आय हाय हाय क्या कहने।
12: बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं,
5: वाह।
12: इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं,
5: हाय हाय हाय हाय हाय।
12: इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर
5: याद आते हैं,
12: याद आते हैं,
5: हाय हाय हाय हाय हाय। क्या खूबसूरत नजर आपने सुनाई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। ये थे हमारे महबूब लाइक साहब, और मुझे गाना भी याद आ गया क्योंकि हमारा साथ हमारे मुर्शिद हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं गाना पेश करूंगा क्योंकि हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि हमारे मुर्शिद आ गए और छा गए। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी थी विदे मेरे भाई की? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने जी।
13: तो पहले तो सुनने वाला को अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
13: नाम नहीं ले सकता
5: जी,
13: वो थोड़ा है
5: जी जी।
13: एक गजल सुना देता हूँ आपको
5: जी जी। इरशाद।
13: मोहम्मद इब्राहिम इनका नाम है,
5: मोहम्मद इब्राहिम साहब जी जी।
13: नूरी,
5: नूरी, अच्छा इब्राहिम साहब नूरी जी। जी जी।
13: वक्त मुश्किल है,
5: वाह।
13: वक्त
5: मुश्किल है
13: मगर ये वक्त गुजर जाएगा,
5: वाह जी वाह क्या कहने।
13: यारो अब यार का फैसला कर जाएगा,
5: वाह क्या कहने।
13: शुक्रिया,
5: वाह।
13: ठोकरे गर्दिशे अय्याम के घर खाएगा,
5: वाह।
13: प्यार का भूत तेरे सर से उतर जाएगा,
5: वाह जी वाह क्या कहने क्या कहने।
13: कब तक भला जब्त करेगा सूरज की तपिश,
5: वाह।
13: फूल तो फूल है एक रोज
5: मुरझाएगा, वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने क्या कहने।
13: मुद्दतों बाद भी जिंदा है बिछड़ के मुझसे,
5: वाह।
13: मुद्दतों
5: बाद जिंदा है
13: बिछड़ के मुझसे, इन मेरे उसने कहा था कि मैं मर जाएगा,
5: आए हाय हाय हाय कमाल कर दिया कमाल कमाल, वाह।
13: शिद्दते इश्क मोहब्बत में कमी आएगी,
5: वाह।
13: यार की दीद को तू रोज अगर जाएगा,
5: हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब।
13: रख के आदाबे दुआ पेशे नजर है दाई, तू दुआ कर तेरा दामन अभी भर
5: जाएगा, वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
13: इश्क मोहब्बत की लज्जत को मुयस्सर जिसको,
5: वाह।
13: जानवेदार भी वो बेखौफ हो खतर जाएगा।
5: हाँ हाँ हाँ क्या कहने,
13: फैसला होगा अदालत में उसी के हक में।
5: हाँ
13: फैसला होगा
5: अदालत में उसी के हक में।
13: हक में काजी के लिए जो लेके दौलते जर जाएगा।
5: वाह वा, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
13: कह रहे हैं तो फैलो शार फुरे के
5: जी जी,
13: ख्यालो ख्वाब की दुनिया में खो गए आखिर।
5: आए हाय हाय हाय वाह,
13: तेरी तलाश में हम थक के सो गए आखिर
5: आखिर। वाह जी वाह क्या कहने,
13: मेरी वफाओं का हासिल शिकस्त दिल ही सही।
5: वाह
13: फसाने गम के मुकम्मल तो हो गए।
5: वाह जी वाह क्या कहने,
13: सबूत मांगना हमसे सबूत मांगना हमसे वफा परस्ती का।
5: वाह
13: हम अपने बन्नस के तेरे हो गए आखिर।
5: वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
13: वो आएगी जागती आंखों में ख्वाब, वो आए जागती आंखों में ख्वाब की सूरत। सितारे सारे नजर में परो गए आखिर।
5: वाह वाह वाह वाह क्या कहने,
13: बपासे जब्त जो पलकों पे रूनमा न हुए।
5: वाह
13: इश्क दामने दिल में समो गए आखिर।
5: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
13: ये बसद नियाज जो आंसू गिरे दमे सजदा। बसद नियाज जो आंसू गिरे दमे सजदा, के बीते दागे नदामत भी दो गए आखिर।
5: आए हाय हाय क्या कहने क्या कहने, वाह
13: मिजाज दान जिन्हें समझते थे मोजे तूफान का।
5: वाह
13: मिजाज दान जिन्हें समते थे मौजे तूफान का, वो साहिलों पे सफीने डबो
5: देते। हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब वाह वाह वाह।
13: शेर करते हैं
5: जी जी,
13: जबान से जिनकी मोहब्बत के फूल जड़ते थे।
5: वाह क्या कहने,
13: जबान से जिनकी
5: मोहब्बत से फूल
13: जड़ते थे, तो फैल वो दिन में दिल में कांटे छुबो गए।
5: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
13: मेहरबानी
5: बड़ी मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी सर, मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं सर, हमारे मोहतरम क्यों शर्मिंदा करते हैं। हमने मुर्शिद आपने महफल लूट लिया, आज भी महफल लूट लिया और लूटने के लिए आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। वाह ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और मुर्शिद थे, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मीठा जी आ गए हैं, और मीठा जी छा गए, और यहाँ पर ये भी हमारे उस्ताद हैं माशाल्लाह, इनके हम सीखते हैं और सीखते रहेंगे, हमारे मीठा जी हैं। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
14: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चश्मे रोशन दिल मशा बा कमाल लाजवाब बो तला बा इज्जत बा वकार बा शौक बा शौक, हर दिल जी शख्सियत बहुत नफीस बहुत शफीक, और मेरे लिए नहायत ही मोहतरम मेरे प्यारे भाई चैंपियन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी हुजूर
14: मुझे पता है कि टाइम की बहुत किल्लत
5: है। हाय हाय हाय मैं खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा हो गया हूँ, और आप आ गए तो आप मेरे उस्ताद हैं, मैं खड़ा हो गया हूँ जी, उस्ताद हूँ की जी समझे बाजी।
14: ये तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, यकीन करें कि मैं तो आपसे सीखता हूँ, मैं तो आपका छोटा सा तालब इलम हूँ, लेकिन माशाल्लाह मुझसे पहले जो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हस्तियाँ आई थी, माशाल्लाह मैं शुरू से ही आपका प्रोग्राम सुन रहा था, क्या कहने आपके। वो कहते कि मेरे यानी कि मुझसे कहते ना कि हजार दर्जे नहीं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दर्जे मुझसे बेहतर जो माशाल्लाह।
5: सर सर सर सर फूल की जो खुशबू है जो अपनी अपनी महक है, जो फूल है ना सारे फूल कुछ अच्छे हैं खूबसूरत हैं, और उनकी हर फूल की अपनी खुशबू है, और आपकी अपनी है, आप अपने खूबसूरती अंदाज से आते हैं माशाल्लाह। देखो अब दिल बाग बाग हो गया माशाल्लाह, देखो सीना में मेरा चोरी के चोर हो गया, कहते हैं कि वो सीना जो है ना खुश हो गया, खुश बाग बाग हो गया, क्योंकि आप आए और इतनी खूबसूरत हस्ती है हमारे पूरे यूके की, और बड़ा ही अच्छा लगता है जी।
14: ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका माशाल्लाह बेलोस जो मैं
5: बेलोस मोहब्बत आपके लिए मेरे, वाह क्या कहने,
14: इतने प्यार है जो मेरे जैसे कहते हैं हकीर ना चीज इस बंदा,
5: मैं खुद एक फकीर हूँ मलंग हूँ मेरे भाई, क्या खुद एक मलंग हूँ।
14: तो मेरे बाद जो हस्ती है, क्योंकि मैं उसको ज्यादा देर नहीं करूँ, टाइम भी बहुत
5: नहीं नहीं, आपकी जो हस्ती है वो उनको मैं कहूँगा वो ड्रॉप कर दें लाइन, और क्योंकि आप हैं, नहीं नहीं नहीं नहीं आप अपने सुनाए, क्योंकि हम जो ना आपसे सुनेंगे तो वो भी अपने हैं, आप ही अपने हैं, हम आपसे सीखने के लिए आते आते हैं यहाँ पे, आप हमें सुनाएं और हम सुनने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी जी
14: अल्लाह तआला को सलाम, क्योंकि अदब इजाजत नहीं देता कि मेरे से मुझसे बेहतर माशाल्लाह मेरे बाद हो तो।
5: सर सर सर सर सर, ये एक ऐसी ये एक ऐसा घर है और खूबसूरत घर है आपकी वजह से माशाल्लाह।
14: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी काफी गैर हाजिरियां होती हैं और मेरा नाक काटे।
5: नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे जो ना वो मैं क्या कहूँगा आपको, पता है कि आप शायरी कर दो, ये ना हो कि मैं शुरू हो जाऊँ तो फिर वो बात करता रहूंगा तो फिर वो देर हो जाएगी।
14: अल्लाह ताला आपको सबसे पहले तो माशाल्लाह मैं तमाम आलम इस्लाम को चांद की आमद की मुबारकबाद देता हूँ, जिस चांद में आमना के चांद की आमद।
5: सुभानअल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने।
14: वो माँ माशाल्लाह रबीउलों का माँ जो है वो मोतबर और माशाल्लाह वो इतना मुअज्जज और मोहतरम इसलिए हुआ है कि उसमें हमारे नबी का
5: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी।
14: और मैं तमाम आलम इस्लाम के जहाँ जहाँ तक हमारे मुसलमान हमारे भाई हमारी बहनें हमारे बुजुर्ग सुन रहे हैं, ता दिल की उनको इस माह मुबारक की आ दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ।
5: खैर मुबारक और आपको भी सर, आपको भी माशाल्लाह सब सुनने वालों को भी जी।
14: माह के सदके में अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की ख्वाहिशात को पूरा करे और बीमार अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अजला फरमाए। तो ये मैं छोटी सी पोएट्री आपकी नजर करना चाहता हूँ हदिया तानी।
5: जी जी बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। जी जी बिस्मिल्लाह।
14: क्या लिखता है, हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था,
5: वाह,
14: पर इसके अलावा कोई चारा भी
5: चारा नहीं। मकर जी मकर दोबारा वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
14: हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था,
5: वाह,
14: इसके अलावा कोई चारा
5: भी नहीं था। आए हाय हाय,
14: दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मुयस्सर,
5: आहा,
14: यानी हमें तिनके का सहारा भी नहीं था।
5: आए हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
14: आखिरी शेर,
5: नहीं नहीं आखिरी नहीं करना, इसको दोबारा मुकर्रर करें, मुकर्रर करें। वाह जी वाह।
14: हिजरत का इरादा तो हमारा भी नहीं था,
5: वाह,
14: पर इसके अलावा कोई चारा
5: भी नहीं था। वाह वाह।
14: दो बोल भी मीठे नहीं थे हमको मुयस्सर,
5: वाह,
14: यानी मैं तिनके का सहारा भी नहीं था।
5: हाय हाय हाय हाय।
14: आखिरी शेर आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ।
5: जी जी।
14: उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा मुझको,
5: वाह,
14: उस शख्स ने जिंदा भी नहीं छोड़ा मुझको, हालांकि मुझे जान से मारा भी नहीं था।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब
14: सर, टाइम देने का बहुत।
5: सर सर सर, ऐसी बात ना किया करें, मुझसे ना किया करें कि आपका ये प्रोग्राम, आपका भाई बैठा हुआ है और बहुत अच्छा लगता है जब भाई फोन करता है, उजला अफजाई करता है, और मुझे अच्छा लगा आपका स्टाइल जो ना, जब मुझे पांच दफे आप मुझे फ्लश करते हैं कसम से, हाँ हाँ हाँ, वो जो पांचवा ना पांच नंबर जो है ना वो मेरे सीने के अंदर है।
14: सर हम पांच तन पाक को मानने वाले हैं, तो मैंने बोला कि पंजा दे ना दी,
5: पंजा दे ना दी, पंजा में मैं समझ गया उसी वक्त ही, मैंने कहा वाह जी वाह जी, और मैंने वही पे मैंने कहा या अली मदद माशाल्लाह, जब आपने कर किया ना,
14: बोला मौला पांच तन पाक आप सलामत रखे अपनी फैमिली के साथ, संगत साथ,
5: माशाल्लाह
14: याल के साथ, दुआ में याद रखेगा।
5: आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, और मेरा आज प्रोग्राम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए और बड़ी खूबसूरत अंदाज से, बड़े प्यारे अंदाज से माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी दुआएं में याद रखेंगे माशाल्लाह, हम ही आपको दुआएं में याद रखेंगे, और हमेशा ही दुआएं करते हैं आपके लिए, हसन करते हैं, सबके लिए करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
14: अल्लाह ताला आपको सलाम दे, क्योंकि मैं तो हूँ ही मुताजे दुआ, कहते हैं ना कि इस मामले में मैं खुद बड़ा ग्रीडी हूँ।
5: हाँ लालची, हम दोनों लालची हैं, लालची है दोनों लालची। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे भाई, जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूँ कम, हमेशा मुझे कहते हैं चैंपियन, और माशाल्लाह सब मुझे चैंपियन ही कहते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैनचेस्टर वाले और सब ब्रेडफोर्ड वाले यॉर्कशायर वाले मुझे हमेशा ही चैंपियन कहते हैं, इन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत नाम दिया हुआ है माशाल्लाह, एक बहुत खूबसूरत नाम है चैंपियन। और चैंपियन किसको कहते हैं ये सोचें समझें, और वो क्या कहते हैं किसी के पूछ लेना कि चैंपियन किसको कहते हैं माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच, जो आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह, अब आके दोष में ऑन एयर ऑफ एयर माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अल्लाह पाक मिशा को खुश रखे, शादबाद रखे। देखो ये मेरी प्यारी बहना है, जब मैं प्रोग्राम करता हूँ शुरू से ही माशाल्लाह वो फ़ोन करती हैं, उजरा अफजाई करती हैं, हमारे लिए दुआएँ करती हैं, जब मैं प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ वो भी मेरे लिए दुआएँ करती हैं। अल्लाह पाक मिशा को खुश रखे, शादबाद रखे, आपकी पूरी फैमिली को माशाल्लाह, और और जो आपके जो क्या कहते हैं वो घोड़े हैं, घोड़ों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। और आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत अंदाज़ आपका, बड़ा प्यारा अंदाज़ है। हम हे राय प्यार के बिल मिलेंगे चलते चलते ऑन डेफिनेटली वेंसडे इवनिंग बिटवीन आवर्स ऑफ 8 and 11, वेयर वी गोना बी हैविंग अ पार्टी इन द स्टूडियो एज ऑलवेज। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ ऑन शब खैर।

सुनो तुम, ये मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है, एक रास्ता है। मैं तुमसे गुजर कर ही तुम तक पहुंचने की रफ्तार हूं। मेरा आगाज तुम, मेरा अंजाम तुम। तुम्हें देखकर मैं तुम्हें सोचता हूं, तुम्हें पाके ही मैं तुम्हें खोजता हूं। तुम अपने बदन के समंदर में बरसों से पोशीदा एक

इतना मिलने का हाँ मिलने में।